0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।

0: अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को सुप्रभात। आज शनिवार 3 अक्टूबर 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए ठीक 5 बज रहे हैं।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आपकी सुबह एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ शुरू हुई होगी, और अगर अभी तक नींद पूरी तरह से नहीं खुली है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम हैं ना आपकी सुबह को थोड़ा और हंसी बनाने के लिए। 5:06 एंड इट्स अ ब्यूटिफुल सैटरडे मॉर्निंग, और वीकेंड की शुरुआत तो हो चुकी है। अक्टूबर महीने का पहला वीकेंड, कैन यू बिलीव इट, एक नया महीना, एक नया वीकेंड, और जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखने का एक और मौका कह सकते हैं। एंड आप सुन रहे हैं रेडियो मस्ती, और मैं हूँ आपकी अपनी हिरिया, लेकर आई हूँ आपकी सुबह का एक खूबसूरत सा म्यूजिकल कंपेनियन, रिलैक्स। जी हाँ, योर फेवरेट सेगमेंट। और क्या खूबसूरत अंदाज था हमारी सुबह का आगाज करने का, तेरे बिना जिया जाए ना, फिल्म घर से, लता मंगेशकर जी की वो जादुई आवाज में, वो दर्द, वो मोहब्बत, वो एहसास। कुछ गाने सिर्फ सुने नहीं जाते, दिल में ही डायरेक्टली उतर जाते हैं, और लता जी की आवाज में तो हर लफ्ज एक अलग ही कहानी कह जाता है। वेल, आज का दिन खूबसूरत होने वाला है, और क्यों ना हो, आज हमने फैसला किया है कि हम अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिविटी के साथ करेंगे, तो ऐसा ही होगा। अगर हम सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो दिन अच्छा ही जाता है। एंड आज सुबह उठकर खुद से एक वादा आप कीजिए कि छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढेंगे, जो पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहेंगे, और जो हासिल करना है उसके लिए उम्मीद नहीं छोड़ेंगे। लेट्स मैनिफेस्ट, इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल डे। दिल से कहिए कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा होगा, आज मैं खुशियों का स्वागत करूँगा, और अच्छे लोगों से मिलूँगा, और हर पल को जी भर के जीऊँगा। और हाँ, वी हैव सम ब्यूटिफुल गाने। पहले खंटी, आपको पता ही है कि हम सदा बाहर गाने चलाते हैं आपके नाम, वो गाने जो समय के साथ बढ़ाने तो नहीं होते बल्कि हर बार सुनने पर और भी प्यारे लगते हैं। तो चलिए, आप चाय एंजॉय कीजिए, कॉफ़ी एंजॉय कीजिए, इस सुबह को आप एंजॉय कीजिए, और रेडियो मस्ती के गाने एंजॉय करते रहिए। इट्स मी, आपके रिया, आपके साथ, एंड आपके डेडिकेशन मैसेजेस 5499-1294।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

Chillax with Radio Musty. रिलैक्स पर सुबह का सफर जारी है और सैटरडे की इस प्यारी सी सुबह में आपसे हम एक छोटी सी बात करना चाहते हैं। पूरे हफ्ते हम कितना कुछ करते हैं ना, ऑफिस की भागदौड़, घर की जिम्मेदारियां, डेडलाइंस, ट्रैफिक, फोन कॉल्स और पता नहीं कितनी सारी चीज़ें होती है। कभी कभी तो हम दिन के आखिर में थक कर बैठते हैं और सोचते हैं कि आज अपने लिए समय ही नहीं मिला। लेकिन आज सैटरडे है तो क्यों ना आज के दिन में से आप थोड़ा सा समय अपने लिए निकाल सके। ज़रूरी नहीं कि खुशी के लिए कोई बड़ी प्लानिंग हो, कभी सुबह की गर्मा गर्म चाय यही काफ़ी होती है। कभी बालकनी में बैठकर उगते हुए सूरज को देखना, कभी अपना फेवरेट गाना सुनना, किसी पुराने दोस्त को फ़ोन करना या घर वालों के साथ बैठकर दिल खोल के बातें करना। हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहते हैं और इस इंतजार में रोज मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं और यही पर तो हम चूक जाते हैं। वाला आज एक काम हम करते हैं कि जब भी आपको मौका मिले दो मिनट के लिए रुक जाए, गहरी सांस लीजिए और अपने आसपास देखिए। जिंदगी में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो सकते हैं। इट्स गुड टू बी टू रिमेन ग्रेटफुल। जी हाँ, ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, इट्स रियली इम्पोर्टेंट इन लाइफ। क्या है कि आप इससे हमेशा अपनी रूट्स पे स्टिक करते हैं। और याद रखिए कि आराम करना समय बर्बाद नहीं होता है, कभी कभी खुद को समय देना भी ज़रूरी होता है। और आराम शो के आप ये जानते हैं कि थोड़ा सा समय आराम के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि हमारा जो शरीर है ये थक जाता है। और ना सिर्फ शरीर बट हमारी जो मेंटल हेल्थ भी है ये भी थक जाती है। सो आप इसे थोड़ा सा आराम दीजिए एंड बी गुड, हैव अ वंडरफुल सैटरडे। और हम तो हैं ही आपके सैटरडे को और भी खूबसूरत बनाने के लिए विद रिलैक्स। बहुत ही खूबसूरत गाने हैं आपके इस सैटरडे को रंगीन बनाने के लिए। सो लेट्स हियर द नेक्स्ट वन। आप

0: सभी के लिए डेडिकेटेड।
1: Chillax with Radio Masti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Tracks with Radio Musty.
1: हाँ जी, अभी हमारे सबसे फेवरेट सेगमेंट की ओर बढ़ने का समय हो चला है, यानी कि आपके मैसेजेस की ओर हम बढ़ेंगे। सबसे पहले हम व्हाट्सएप की ओर बढ़ते हैं और देख रहे हैं कि सवेरे सवेरे जयशन जी हमारे साथ है, जुड़ चुके हैं। वेल, आप अभी काम के लिए जा रहे हैं, तो अगला गाना आप दोस्तों के नाम डेडिकेट करना चाहते हैं। तिम्बा दानू जीवन अंगुतिया आकाश शर्वन मे विन, और आपके नाम भी हम जरूर डेडिकेट करेंगे नेक्स्ट ट्रैक, अ ब्यूटीफुल वन जो हम चलाने वाले हैं। गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग आपको भी धनेश्वर जी, और साथ में आपकी पत्नी है सुनीता, साथ में रेखा, संजीव, निशा एंड द होल दावेदोस परिवार। विशिंग एवरीवन टू हैव अ ग्रेट डे। सैटरडे का दिन है, दिन बहुत ही बढ़िया जाएगा। कहा था हमने आप सभी से कि ये दिन को हम मैनिफेस्ट करेंगे कि ये बहुत ही अच्छा जाएगा, और अब देखेंगे कि ये दिन अच्छा ही जाएगा। वी हैव हमारे साथ अब्दुल और सायरा बानू जी जुड़े हुए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग आप दोनों को, एंड काम के लिए जा रहे हैं, सो वो को आज टू यू। देवानंद जी नमस्ते, आपको हैप्पी सैटरडे। वैसे यहाँ पर देवानंद जी बोल रहे हैं कि उनको खांसी हुई है, तो आप ध्यान रखिए। वेल, बदलते मौसम के साथ हो जाता है, बट आप नेसेसरी प्रिकॉशंस लेते रहिए, गर्म पानी पीजिए एंड गर्म कपड़े पहनते रहिए। वेल, नेक्स्ट ट्रैक आप डेडिकेट करना चाहते हैं आपके नाम, बबीता के नाम, दर्शनी, क्रिस्टी, नकुल, अर्शिया एंड रिया के नाम। थैंक यू फॉर दिस लवली मैसेज। यहाँ पर साधना मुकेश लालमाटी से है, और अपने बड़े भाई और पापा कुमार लोबिन के नाम एक छोटा सा मैसेज यहाँ पर, जो अभी बीमार है, तो उनको हम गेट वेल सून कहते हैं, गेट वेल सून भाई, सो ज़रूर ठीक हो जाएंगे बहुत ही जल्द। एंड वी हैव गीता सीता बलराम जो है शतबिनागर से, वेरी गुड मॉर्निंग आपको। एंड दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वी हैव प्रमिला जी जो है प्रदीप पपाई से, और गाने का जो सिलेक्शन है ये आप एंड्रॉय कर रही है। नेक्स्ट ट्रैक आप अपने पति रंजीत के नाम, परिवार के नाम डेडिकेट करती है। ऑलराइट, नेक्स्ट गाना सभी के नाम जाता है।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए घड़ी मिलाते चलिए, 6:45 बज रहे हैं अभी। समय हो चला है आपको बताने का कि आज आपका दिन कैसे कटेगा, क्योंकि थी और राशि टाइम। शुरू हम करते हैं
2: एरीज मेष राशि।
1: आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदें और पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ सकता है। काम में अपने कॉन्फिडेंस पर भरोसा रखें और नए आइडियाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। फैमिली के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज का दिन सुकून और खुशियों के नाम हो सकता है। घर परिवार के साथ समय बिताने से मन खुश रहेगा और अगर कोई काम काफी समय से पेंडिंग है तो उसे पूरा करने की कोशिश करें। आप पैसे से जुड़े मामलों में सोच समझ कर कदम बढ़ाएं। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपकी बातचीत और क्रिएटिविटी दूसरों को प्रभावित कर सकती है। किसी दोस्त या करीबी इंसान से अच्छी खबर मिलने की संभावना भी है। अपने आइडियाज को दूसरों के साथ शेयर करने में हिचकिचाए नहीं। वीकेंड पर कुछ नया करने का प्लान बन सकता है और बस एक साथ बहुत सारे काम लेकर खुद को थकाए नहीं। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज अपने इमोशंस को समझने और अपनों के साथ समय बिताने का दिन है। घर का माहौल खुशनुमा बनाने में आपकी जो भूमिका है ये बहुत ही अहम रहेगी। और अगर किसी बात को लेकर परेशान है तो शांति से सोचने की कोशिश करें। पुरानी अच्छी यादें आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकती है। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज आपका जोश और आपकी पॉजिटिव सोच दूसरों को भी मोटिवेट कर सकती है। किसी नए काम या पर्सनल गोल को लेकर अच्छा उत्साह महसूस होगा। अपने करीबियों की बातों को भी ध्यान से सुने। वीकेंड पर फैमिली या फ्रेंड्स के साथ कुछ खास प्लान बन सकता है। लकी नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज अपने कामों को व्यवस्थित करने और आने वाले हफ्ते की प्लानिंग करने के लिए समय निकाल सकते हैं। आपकी मेहनत और प्रैक्टिकल सोच आपको सही दिशा दिखा सकती है। हर छोटी बात में परफेक्शन ढूंढने से बच के रहे और फैमिली के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताना अच्छा रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज रिलेशनशिप

0: रिलेशनशिप्स में प्यार समझ और बैलेंस बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी होगा। किसी अपने के साथ दिल की बात शेयर करने से मन हल्का हो सकता है। आपके लिए वीकेंड सोशल एक्टिविटीज और खूबसूरत मुलाकातों से भरा रह सकता है। इट्स गोना बी अ गुड वन। और अगर कोई छोटा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसे बातचीत से सुलझाने की कोशिश करें। लेकिन नंबर है आज आपका 7।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: आज अपने गोल्स और पर्सनल प्रायोरिटीज पर ध्यान देने का अच्छा मौका है। किसी उलझन को सुलझाने के लिए शांत दिमाग से सोचना फायदेमंद रहेगा। अपनी बातें हर किसी के साथ शेयर करने से पहले सामने वाले को समझ ले। फैमिली या किसी करीबी दोस्त के साथ का साथ आपको अच्छा महसूस करा सकता है। लेकिन नंबर है आज आपका 8।
1: सजिटेरियस धनुराशि,
0: आज का दिन एडवेंचर ने एक्सपीरियंसेस और कुछ अलग करने का मूड लेकर आ सकता है। अगर आप कहीं घूमने या दोस्तों से मिलने का प्लान बना रहे हैं तो वीकेंड का भरपूर मजा लीजिए। किसी नए आइडिया से आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है और अपनी जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज किए बिना मौज मस्ती के लिए समय निकालिए। लेकिन नंबर है आज आपका 3।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: आज आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को लेकर कुछ नए विचार कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते के लिए प्लानिंग करना आपको ऑर्गेनाइज्ड महसूस करा सकता है। लेकिन हर समय काम के बारे में सोचना जरूरी नहीं। फैमिली के साथ समय बिताएं और अपनी पसंद की एक्टिविटीज का आनंद लीजिए। लकी नंबर है आज आपका 4।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: आज आपकी क्रिएटिव आइडियाज और अलग नज़रिया आपको कुछ नया करने की प्रेरणा दे सकती है। दोस्तों के साथ बातचीत या किसी ग्रुप एक्टिविटी में अच्छा समय गुजर सकता है। अगर कोई नया प्लान दिमाग में है तो उस पर प्रैक्टिकल तरीके से सोचना शुरू कर दीजिए। आप दूसरों की राय सुने लेकिन अपनी ज़रूरतों को भी समझें। लकी नंबर है आज आपका 7।
1: पाइसेस मीन राशि,
0: आज अपने लिए दिल को सुकून देने वाली चीज़ों के लिए समय निकालें। म्यूजिक सुनना, किताब पढ़ना या किसी अपने के साथ दिल से बात करना आपका मूड अच्छा कर सकता है। अगर कोई फैसला लेना है तो अपनी फीलिंग्स के साथ प्रैक्टिकल पहले आप प्रैक्टिकल सोचिए और फीलिंग्स को भी ध्यान में रखिए। दूसरों की मदद करते हुए अपनी ज़रूरतें को आप भूलिएगा नहीं और अपनी सैटरडे की सुबह एक मुस्कुराहट और अच्छी उम्मीद के साथ शुरू कीजिए। लेकिन नंबर है आज आपका 2। सरप्राइज ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। चलिए रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ शनिवार।
2: योर डेली हॉरोस्कोप RM2 रेडियो मस्ती।
3: You're listening to RM2 Radio Masti.

0: RM2 रेडियो मस्ती।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

0: अ वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को सुप्रभात घड़ी मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6 बज रहे हैं समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का तो आइए इसे हम टीना के साथ है सुनते हैं नमस्कार आपको टीना
1: नमस्कार संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें एसटीसी के पूर्व बोर्ड को 29 सितंबर को बर्खास्त किए जाने के बाद अब नए बोर्ड का गठन किया गया है जीगवांग जिल्बे अशु को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है जबकि जैन चिलम और वीरेंद्र मुसाय को भी बोर्ड में शामिल किया गया है इस बात का जायजा कल कैबिनेट की बैठक में लिया गया और मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है वाटर रिसोर्सेज कमीशन के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार 2 अक्टूबर को माहोवाक्वा जलाशय में पानी का स्तर घटकर 36.6% रह गया पानी के भंडार में लगातार हो रही कमी और मौसम की सूखा रहने के अनुमान को देखते हुए मंत्रिमंडल ने पानी की स्थिति पर एक क्राइसिस कमेटी बनाए जाने की भी जानकारी दी इस कमेटी की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री करेंगे और इसका काम उपलब्ध पानी के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए ज़रूरी और तत्काल कदमों पर विचार करना होगा मॉरिशस में सितंबर से कॉन्सेंट्रिक्स की गतिविधियां बंद होने के मामले में अब समाधान निकल आया है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र में काम करने वाली इस कंपनी के करीब 300 कर्मचारियों को हर साल की सेवा के बदले 2 महीने का वेतन साथ ही नोटिस के तौर पर 1 महीने का वेतन दिया जाएगा ये प्रस्ताव कल 2 अक्टूबर को श्रम मंत्री की देखरेख में कॉन्सेंट्रिक्स और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई दूसरी सुलह और मध्यस्थता बैठक के बाद सामने आया विदेश में फ्लाई दुबई विमान के पायलट पर हमले के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने

0: ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर जांच में इस हमले के पीछे ईरान का हाथ होने की पुष्टि होती है तो अमेरिका बहुत घातक जवाबी कार्रवाई करेगा। और अंत में मौसम का हाल। दक्षिण में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है। साथ ही मस्करीन के दक्षिण में पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दिन के दौरान और दोपहर बाद के समय देश की दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर वर्षा होगी और बाद में अन्य जगहों पर भी वर्षा हो सकती है। रात्रि के समय देश के दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल छाए रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी और बाद में मौसम में सुधार आएगा। तापमान सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाहरेखा के परिसमुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है, खासकर दक्षिणी लगूनों में तो समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज 5:50 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 6:06 पर होगा।
1: Your weather forecast on RM2
2: Radio Musti।
0: इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। मैं आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
3: Your news on MBC

0: Chillax with Radio Musty.
1: गुड गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद है कि सुबह की चाय या कॉफ़ी के साथ आपकी नींद अब पूरी तरह खुल चुकी होगी और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल भी आ गई होगी। अभी 6:09 हुए हैं दिस ब्यूटिफुल सैटरडे मॉर्निंग और देखिए दोस्तों, सूरज भी निकल आया है, आसमान में रोशनी है, हवा में एक अलग ही ताजगी है और दिल कह रहा है कि आज का दिन सच में खूबसूरत होने वाला है। अक्टूबर का पहला वीकेंड है तो वीकेंड वाली फीलिंग तो बनती है। नो मंडे ब्लूज की टेंशन, ना वीकडे की भागदौड़, बस अपने लिए थोड़ा समय, अपनों के साथ कुछ खूबसूरत पल और ढेर सारा अच्छा गाना। और हमारी सुबह का ये म्यूजिकल सफर जारी है सिर्फ रेडियो मस्ती पर। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी ही रिया और आप सुन रहे हैं चिलैक्स, द सेकंड आवर ऑफ चिलैक्स। वेल, अभी अभी हमने सुना दिल ही तो है फ्रॉम द मूवी द स्काई इज पिंक। एंड क्या गाना है ना, आखिर दिल ही तो है, कभी खुश होता है, कभी उदास, कभी किसी की यादों में खो जाता है और कभी बिना किसी वजह से ही ऐसे ही मुस्कुरा देता है। लेकिन आज हम अपने दिल को एक ही बात समझाएंगे कि खुश रहने के बहाने ढूंढने नहीं बस बनाने हैं। जरा अपने आसपास देखिए, सुबह की रोशनी, कप चाय घर में अपनों की मौजूदगी या फिर रेडियो पर बजता आपका फेवरेट गाना, कितनी सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे दिन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज का मंत्र सिंपल है, स्माइल मोर वरी लेस, और हर पल को थोड़ा और दिल से जिए। और आज की सुबह को और भी म्यूजिकल बनाने के लिए हमारे पास है खूबसूरत गाने, मिक्स गाने, दिस आवर मिक्स गाने, प्यारी सी बातें और ढेर सारे पॉजिटिव वाइब्स तो हम लेकर ही आते हैं। तो जहाँ पर भी हैं आप, काम के लिए जा रहे हैं या घर पर हैं, अभी तक बिस्तर में हैं या नाश्ता ले रहे हैं, आई जस्ट होप यू हैव अ गुड गुड डे एंड सैटरडे है तो इसे हम साथ में मिलकर अच्छा बनाएंगे।
0: With Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: रेडियो मस्ती।
1: चलिए इसी गाने के साथ हम विश करते हैं पति जितिन को अ वेरी हैप्पी बर्थडे। ये मैसेज आया है आपकी प्यारी पत्नी शिमला की ओर से और राम नाइक का परिवार की ओर से। हैप्पी हैप्पी बर्थडे आपको जितिन जी, और आशा करती हूँ कि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए। वैसे साथ ही हम विश करेंगे आंटी नंदा को अ वेरी हैप्पी बर्थडे और बहुत सारा प्यार कमिंग फ्रॉम राव जी एंड देव का परिवार। आपके भाई बहनों ने आपको विश किया है अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हम भी यहाँ पर विशिंग दोस्त जो आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं।

विस्तार समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज की प्रमुख खबरें। एसटीसी के पूर्व बोर्ड को 29 सितंबर को बर्खास्त किए जाने के बाद अब नए बोर्ड का गठन किया गया है। जी ग्वांग जिल्बे अशु को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है, जबकि जयन चेलम और वीरेंद्र मुसाई को भी बोर्ड में शामिल किया गया है। कॉन्सेंट्रिक्स के करीब 300 कर्मचारियों को हर साल की सेवा के बदले 2 महीने का वेतन और 1 महीने का नोटिस वेतन न मिलेगा। ये समझौता कंपनी की गतिविधियां बंद होने के बाद हुआ है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने नकली नोटों को लेकर लोगों को सतर्क किया है। बैंक ने नोटों के सुरक्षा चिन्हों की जांच करने और शक होने पर नोट स्वीकार न करने की अपील की है। विदेश में फ्लाई दुबई विमान के पायलट पर हमले के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान का हाथ साबित होने पर अमेरिका बहुत घातक जवाबी कार्रवाई करेगा। और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट ने नोट किया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के काम को नई गति देने और

0: सरकार द्वारा घोषित उपायों को तेजी से लागू करने के लिए इसके बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस पुनर्गठन में अन्य लोगों के साथ जी ग्वांग जिल्बेशु को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है। पासुरामन चिलम, जिन्हें जयन चिलम के नाम से भी जाना जाता है, को उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और वीरेंद्र मुसाई को इंडिपेंडेंट मेंबर बनाया गया है। याद रहे कि एसटीसी के पूर्व बोर्ड को 29 सितंबर को बर्खास्त कर दिया गया था। इस फैसले की घोषणा अगले दिन बुधवार 30 सितंबर को व्यापार मंत्री माइकल सिक्यून ने रेडियो प्लस पर की थी। और मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार 2 अक्टूबर को माहुवाक्वा जलाशय में पानी का स्तर घटकर 36.6% रह गया। पानी के भंडार में लगातार हो रही कमी और मौसम के सूखा रहने के अनुमान को देखते हुए मंत्रिमंडल ने पानी की स्थिति पर एक क्राइसिस कमेटी बनाए जाने की भी जानकारी दी। इस कमेटी की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री करेंगे। इसका काम उपलब्ध पानी के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए ज़रूरी और तत्काल कदमों पर विचार करना होगा। फिलहाल पानी पर लागू मौजूदा पाबंदियां जारी रहेंगी। हालात बिगड़ने पर इन पाबंदियों को और सख्त किया जा सकता है। अधिकारियों ने लोगों से पानी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है, क्योंकि पानी के भंडार लगातार घट रहे हैं और मौसम भी अनुकूल नहीं रहने का अनुमान है। कैबिनेट ने रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल नंबर 3 रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ऐसे ट्रैफिक अपराधों के फिक्स पेनल्टीज अब ऑनलाइन भरे जा सकेंगे जिनमें पेनल्टी पॉइंट्स नहीं लगते। 30 अक्टूबर 2026 से जनता सुप्रीम कोर्ट पोर्टल के जरिए ट्रैफिक का जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान कर सकती है। इस के लिए लोग अपने मोपास अकाउंट से अपनी पहचान की पुष्टि करेंगे और फिक्स पेनल्टी नोटिस एफपीएन नंबर तथा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे। भुगतान मोकास क्यूआर कोड के जरिए जूस या पब जैसे पेमेंट एप्लीकेशन से किया जा सकेगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी भुगतान किया जा सकेगा। पहले चरण में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा केवल उन्हीं ट्रैफिक अपराधों के लिए होगी जिनमें पेनल्टी पॉइंट्स नहीं लगते। इसके अलावा ऑनलाइन भुगतान तभी किया जा सकेगा जब संबंधित एफपीएन को मॉरिशस पुलिस फोर्स ने अपने सिस्टम में दर्ज कर दिया हो। दूसरे चरण में ये ऑनलाइन भुगतान सुविधा सभी ट्रैफिक अपराधों के लिए बढ़ा दी जाएगी। इसमें वे अपराध भी शामिल होंगे जिनमें पेनल्टी पॉइंट्स लगती है। इसके साथ ही तेज गति से वाहन चलाने के लिए फोटोग्राफिक एनफोर्समेंट डिवाइस नोटिस भी ऑनलाइन भुगतान के लिए उपलब्ध होंगे। ये नोटिस मॉरिशस में लगे 63 स्पीड कैमरा के जरिए पकड़े गए स्पीडिंग मामलों से संबंधित होंगे। मॉरिशस में सितंबर से कॉन्सेंट्रिक्स की गतिविधियां बंद होने के मामले में अब समाधान निकल आया है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र में काम करने वाली इस कंपनी के करीब 300 कर्मचारियों को हर साल की सेवा के बदले 2 महीने का वेतन साथ ही नोटिस के तौर पर 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये प्रस्ताव कल शुक्रवार 2 अक्टूबर को श्रम मंत्री की देखरेख में कॉन्सेंट्रिक्स और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई दूसरी सुलह और मध्यस्थता बैठक के बाद सामने आया। श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने कहा कि सस्ते श्रम के कारण मॉरिशस की तुलना में मडागास्कर ज्यादा आकर्षक बन गया है। उन्होंने बताया कि आईसीटी मंत्री अविनाश राम जोहल और उद्योग मंत्री आदिल आमिया मियाँ एक अंतर मंत्रालयी समिति का हिस्सा है। ये समिति ओटाम यानी आउटसोर्सिंग एंड टेलीकम्युनिकेशंस एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के साथ मिलकर आउटसोर्सिंग सेक्टर में मॉरिशस की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने पर काम कर रही है। मंत्री रिजा उद्दीन को सुनते हैं।
1: Il y a 307 travailleurs qui font plainte au bureau de travail. Bon, ce qui nous tombe en accord, c'est par rapport à un employé mauricien. Il y a encore 7 travailleurs expats qui est négocié avec le management, parce que tout ce temps, nous cherchons un peu différent de ben travailler mauricien. Il a aussi, nous espérons qu'ils ont trouvé un accord avec le management, mais le gros ben employé, c'est environ 300.

0: employés aujourd'hui à travers ce représentant syndical et à travers ce bon avocat. Ils tombent d'accord avec Concentrix et son avocat pour un montant d'indemnisation pour la fermeture de Concentrix.
1: बैंक ऑफ मॉरिशस ने देश में नकली नोटों के चलन को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें, नोट पर बने

0: मैं कमर्श सने लोगों से नोट लेते या इस्तेमाल करते समय ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है। मैं कमर्श के करेंसी ऑफिस के चीफ जॉन क्लोद शामारी ने बताया कि असली नोट की पहचान के तीन तरीके हैं, छूकर, देखकर और सुरक्षा चिन्हों की जांच करके। बैंक ऑफ मॉरिशस ने यह भी कहा कि कागज और पॉलीमर नोटों के सुरक्षा चिन्हों की जानकारी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो अगर किसी नोट की असलियत पर शक हो तो उसे स्वीकार न करें और तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दें। मॉरिशस के लोग अब दक्षिण अफ्रीका में बिना वीजा के 90 दिनों तक रह सकते हैं, जबकि पहले ये अवधि 30 दिन थी। ये नया फैसला तुरंत लागू हो गया है और इससे दोनों देशों के बीच यात्रा करना और आसान होने की उम्मीद है। ये फैसला पिछले कुछ महीनों से मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत के बाद लिया गया है। प्रिटोरिया में मॉरिशस के राजदूत मिहाई मौतन ने कहा कि मॉरिशस के लोगों के लिए ये नया फैसला बहुत जरूरी है। उनके बयान पर गीता सुनारान को सुनते हैं।
1: Les autorités sud-africaines ont décidé d'apporter ce changement maintenant.
2: दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों ने अब ये बदलाव लाने का फैसला किया है, क्योंकि उच्चायोग और सरकार के नाते सक्रिय रूप से दक्षिण अफ्रीका की वर्तमान सरकार के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ये कहकर कि दक्षिण अफ्रीकी लोग जो मॉरिशस आते हैं उनके पास 90 दिनों का एक वीजा होता है, इसे पारस्परिक बनाने का फैसला लिया गया क्योंकि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध हैं। अब मॉरिशियनों को भी ये सुविधा दे रहे हैं जो दक्षिण अफ्रीका आएंगे पर्यटन, चिकित्सा या उद्योग कायम करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारे संबंधों में ये एक महत्वपूर्ण प्रगति है। इससे संभावनाओं के कई द्वार खुलेंगे उन मॉरिशियनों के लिए जो दक्षिण अफ्रीका में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाना चाहते हैं।
1: Qui ouvre aussi la voie à beaucoup de possibilités pour les Mauriciens souhaitant utiliser les facilités en Afrique du Sud.
0: सुडनाक पुलिस स्टेशन में यौन संबंध के आरोप डीपीपी ने 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। सुडनाक पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखी गई लीजा लिली रोमैन से जुड़े मामले में डीपीपी ने एक कांस्टेबल और उसकी निगरानी के लिए तैनात महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की सिफारिश की है। यह सिफारिश पुलिस की ओर से पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट के बाद की गई है। कांस्टेबल पर ड्रग तस्करी के कथित मामले में हिरासत में ली गई महिला के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है। महिला पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी हिरासत में ली गई महिला की निगरानी करना था, जिसे सुडनाक पुलिस स्टेशन की सेल में रहना था। सेंट्रल पुलिस हेडक्वार्टर्स के अनुसार दोनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ पुलिस स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत कार्रवाई की जाएगी। 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन के पास कुल 363 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 167 मामले स्कूल से जुड़े थे, 63 परिवार से और 11 ऐसे बच्चों से जुड़े थे जिन्हें विशेष ज़रूरतें यानी स्पेशल नीड्स है या जो डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं। इस दौरान जांच टीम ने 20 फील्ड विजिट्स भी किए। ये आंकड़े ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन की 2025-2026 वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं, जिसे कल पोर्टवी के कुड आउट सेंटर में पेश किया गया। रिपोर्ट में मॉरिशस में बच्चों की स्थिति से जुड़ी कई चिंताएं सामने रखी गई हैं। इसमें खासतौर पर रोकथाम को मजबूत करने, संस्थाओं की जिम्मेदारियों को और स्पष्ट करने और उनकी जवाबदेही बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में बच्चों के अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने की भी सिफारिश की गई है, ताकि बच्चों के व्यवहार से जुड़े मामलों को बेहतर तरीके से समझा और संभाला जा सके। ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन अनीता गुहा ने इसकी जानकारी दी, उनको सुनते हैं।
2: सभी लोग बच्चों में व्यवहार की गंभीर समस्याओं के बारे में सुन रहे हैं। हमने उच्च स्तरीय बैठकें लगाई। हम जानना चाहते हैं कि मैदान पर काम करने वाले लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। ज्यादातर शेल्टर या ब्राउन रिकॉर्ड में रखे जाने वाले बच्चों पर काबू पाना मुश्किल होता है। उनके लिए उचित ढांचे कायम करना चाहिए। हमने इस पर ध्यान दिया। 2 चीजें पहली बार कर रहे हैं। इंटरसेक्स पर एक कार्यशाला, ये

0: समलैंगिकता से बिल्कुल अलग हैं। हम अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं क्योंकि ऐसे लोगों के भी अधिकार हैं। ये एक मेडिकल और बायोलॉजिकल समस्या है।
1: C'est un problème médical, biologique, mais Lila.
2: विदेश में फ्लाई दुबई विमान के पायलट पर हमले के मामले में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर जांच में इस मामले के पीछे ईरान का हाथ होने की पुष्टि होती है तो अमरीका बहुत घातक जवाबी कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि विमान के को पायलट के ईरान से संबंध होने की संभावना है। देश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं। दक्षिण में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है, खासकर आज सुबह के समय। साथ ही मस्करेंस के दक्षिण में पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा। दिन के दौरान और दोपहर बाद के समय देश कि दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल घिरेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। बाद में अन्य जगहों पर भी वर्षा हो सकती है। रात्रि के समय देश के दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटू पर बादल छाए रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी। बाद में मौसम में सुधार आएगा। तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण की तरफ 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंची लहरें भी उठ सकती है। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज 5:50 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 6:08 पर होगा। तो इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें यूसुफ, कोविला और गीता का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
3: Your news on MBC Play and MBC.mu.
2: स्कूल लेन कालबास में 94 साल की 94 years old की श्रीमती ज्ञानती इमहरिट पैदाशी नाम ननकू और जो सतवंती नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके बेटे श्री कवि इमहरिट के घर स्कूल लेन कालबास से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस सचिवले की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM पेलकाइन रोड सेबास्टोपोल में 60 साल के 60 years old के श्री प्रदीप कुमार गोपल जो कौटे मिलिटर की श्रीमती इंदिरा गांधी SSS के एजुकेटर थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 3 बजे उनकी पत्नी श्रीमती धीमावती गोपल के घर पेलकाइन रोड सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंडमास की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM दुदु स्ट्रीट बुवालू में 72 years old के श्री विजय महादू जो प्रेमनाथ नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के दो बजे उनके घर दुदु स्ट्रीट बुवालों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोम्बोलेन में बग की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 2 PM कोई रातिलेन लेस्कालिये में 81 years old के जनाब बशीर कोईराती जो बशीर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु का इंतकाल हो गया। उनका जनाजा आज दिन के दस बजे उनके घर कोईराती लेन लेस्कालिये से निकाल कर दफनाने के लिए लासोजिन लेस्कालिये

कि कब्रस्तान ले जाया जाएगा फ्यूनरल टुडे एट 10 AM पॉम्पलमुस रोड लाफ्लोरामी 21 महीने की 21 मंथ की बेबी चार्वी नंदू जो येशनी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके दादा श्री प्रीतम कुमार नंदू के घर पॉम्पलमुस रोड लाफ्लोरा से उठाकर दफनाने के लिए खांबुआ की शमशान भूमि ले जाया जाएगी फ्यूनरल टुडे एट नून बाल्मिक रोड सैन मिशेल बेलियामी 43 साल की कुमारी जयश्री जगेसर जो स्वीटी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े ग्यारह बजे उनके पिता श्री प्रेम नाथ जगेसर के घर बाल्मिक रोड सैन मिशेल बेलिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM न्यू रोड रोशनवामी 53 साल के श्री अभिचंद किस्तो जो बाचन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु होगी उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उनके घर न्यू रोड रोशनवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमोंग गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 10 AM रॉय रोड तायाक में विष्णु मंदिरम के पास 85 साल के श्री दीनारायण बंगसी जो देव नारायण नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु होगी उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे उनकी बेटी श्री अश्विन बंगसी के घर रॉय रोड तायाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तायाक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 11 AM रूट 20 नंबर 2 वाक्वामी 90 साल की श्रीमती मदोदरी शिबू पैदाइश नाम मधु और जो शांति नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु होगी उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े दस बजे उनकी बेटी श्रीमती बाबीता शिबू के घर उद्वांता नंबर 2 वाकवा से उठाकर सिर्फ अग्नि नंबर 5 बैलेंस की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM Kuni Road, Réunion Morel, Petit Raffremé, 74 years old, Shri Dharmadev Daya, जो विजय नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु होगी उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर कुनी रोड रेन्यू मोरेल पे चिराफा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दाहुल सी की शमशान भूमि ली जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 9:30 नंबर 62 NHC बैलेंस प्लान मान्योमी नंबर 62 NHC बैलेंस 69 years old के श्री आनंद बालचन जो राजन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के दस बजे उनके घर नंबर 62 NHC बैलेंस प्लान मान्यों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए प्लान मान्यों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 10 AM 66 years old के श्री धीरेन्द्र वीरा गादू जो गौसो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो बेगुनिया C01 NHDC कौन लो व्यू रहते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे बबासा के लियनसन से उठाकर दफनाने के लिए सैम होता है कि शमशान भूमि ले जाई जाएगी फ्यूनरल टुडे एट 11 AM टुकू रोड हाईलैंड्स फिनिक्स में 88 साल की श्रीमती केसरी राम गुलाम पैदाइशी नाम अकू और जो विद्वंती नाम से

0: ज्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज इनके 10 बजे आज इनके 10 बजे उनके घर टुकू रोड हाईलैंड फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौफुको की शमशान भूमि ले जाई जाएगी कमीशन टुडे एट 10 AM रॉय रोड सिनेमा का से ट्रियोलेमी रॉय रोड सिनेमा का से ट्रियोलेमी 59 साल की 59 years old की श्रीमती साबिना देवी सुखदावो श्रीमती साबिना देवी सुखदावो पैदाशी नाम राजा राम सिंह पैदाशी नाम राजा राम सिंह जो रीदी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे आज दिन के 1 बजे उनके पति श्री कृष्ण सुखदावो के घर रोड सिनेमा का से ट्रियोले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टर्मिनस ट्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 1 PM ब्रांच रोड पति वेर्जे सैं पियामे ब्रांच रोड पति वेर्जे सैं पियामे 27 साल के 27 years old के श्री वितिश शर्मा रामासो श्री वितिश शर्मा रामासो जो व्यास नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे आज दिन के 1 बजे उनके पिता श्री विपिन हमासो के घर ब्रांच शोधपति व्याजे सैं पिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिया कौंसा सैं पिया की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 1 PM रॉय रोड बुबासामी रॉय रोड बुबासामी 78 साल की 78 years old के श्री योगेंद्रनाथ सिंह हुकुम सिंह श्री योगेंद्रनाथ सिंह हुकुम सिंह जो विनेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे आज दिन के 11:30 बजे रॉय रोड बुबासामी की लाश पहले औदों के लिए अनसन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेटू का थोबोन की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM रॉय रोड ब्रह्मस्थान में रॉय रोड ब्रह्मस्थान में 76 साल के 76 years old के श्री भोज भातु जो भोज नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे आज दिन के 11 बजे उनके घर रॉय रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए ब्रह्मस्थान के शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रमिशन टुडे एट 11 AM 66 साल के 66 years old के श्री हरिस्कर बिजादौ जो माहियो नाम से ज़्यादा जाने जाते थे और जो SSU के सब इंस्पेक्टर थे की मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे आज दिन के 12 बजे रॉय रोड पति थ्रिविया की राशा पहला दौंत दमुहा से उठाकर सबसे पहले प्रार्थना सभा के लिए कैथोबोन के नथोदाम जीरो से गिरजाघर ले जाई जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा कैथोबोन की शमशान भूमि क्रिमेशन टुडे एट नून कामापू नंबर एक अंगेता में 80 साल की 80 years old की श्रीमती मुनी मोहन जो चंपा नाम से ज़्यादा पैदाशी नाम चंपा और जो मुनिया नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 11 बजे आज दिन के 11 बजे उनके घर कामापू नंबर एक आऊँ येता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थामा मेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रिमिशन टुडे एट 11 AM Résidence Troquetia, Bonne Miami. Résidence Troquetia, Bonne Miami. 67 साल की 67 years old की श्रीमती भगवंती सालिक पैदाशी नाम सुका और जो वीना नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे आज दिन के 12:30 बजे उनके घर रेजिडेंस रोकेचिया बन मिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कॉन्दमास की शमशान को ली जाई जाएगी क्रमिशन टुडे एट 12:30 PM बेल्टियर रोड हाईलैंड्स में 83 साल की 83 years old की श्रीमती देवज नानी बसावन पैदाशी नाम सीरस और जो देवयानी नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई उनकी अर्थी आज इनके 10 बजे आज इनके 10 बजे उनके बेटे श्री विकास बसावन के घर बेल्टिया रोड हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाई जाएगी क्रमिशन टुडे एट 10 AM शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है
1: on NBC Play and NBC.mu.
2: You're listening to RM2, a Radio Must See.

0: गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात, घर मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 7 बज रहे हैं।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: Once again, a very good morning आप सभी को। चलिए हाल चाल हम पूछ लेते हैं, तो क्या है आज आपके दिल का हाल। 7:05 on this beautiful Saturday morning और अब तो weekend वाली feeling पूरी तरह से है आ जानी चाहिए। सूरज निकल चुका है, दिन की शुरुआत हो चुकी है और उम्मीद है कि आप सब अभी एकदम fresh, energetic और happy mood में होंगे। And आप अभी सुन रही है Radio Musty और मैं हूँ आपकी अपनी ही रिया। वेल, लेकर आई हूँ आपके लिए Chillax का थर्ड आवर। और क्या मस्त गाना हमने अभी अभी सुना, दिल का जो हाल फ्रॉम द मूवी बेशरम। एंड दिल का हाल तो कभी गाने बयां करते हैं, कभी आंखें और कभी एक छोटी सी स्माइल ही सब कुछ कह देती है। लेकिन लेट मी टेल यू दैट आज दिल का हाल एकदम मस्त होना चाहिए, क्योंकि आज तो सैटरडे का दिन है, वीकेंड टाइम, तो इसे हम और भी खूबसूरत बनाएंगे। अगर आपका साथ मिले तो क्या कुछ नहीं कर सके। तो चलिए, वी हैव गॉट द नेक्स्ट ट्रैक यहाँ पर, एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल वन, हमारे सभी लिसनर्स के नाम जाता है। एंड लेट मी टेल यू दैट यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने हम लेकर आए हैं। वीकेंड वाइब्स फुल ऑन जारी यहाँ पर, सो आपकी डेडिकेशंस, आपके मैसेजेस आप हम तक जरूर पहुँच जाएगी। नंबर है 5499-1294।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: अक्टूबर का पहला वीकेंड और वीकेंड का मतलब है थोड़ा आराम, थोड़ी मस्ती और अपनों का साथ और अपनी फेवरेट चीज़ों के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम। और आज हमारा तो मोटो बिल्कुल सिंपल है, चिलिंग एंड रिलैक्सिंग, यही तो है रिलैक्स। एंड यस, अगर आप घर पर है तो अपनी चाय या कॉफ़ी के साथ आप आराम से बैठिए। अगर किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी चल रही है तो काम के साथ हम म्यूजिक का मजा भी लीजिए। और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या काम पर जा रहे हैं तो सफर को बनाएं म्यूजिकल रेडियो मस्ती के साथ। आज हम बातें भी करेंगे, मुस्कुराएंगे भी और सुनेंगे ऐसे ऐसे गाने जो आपके वीकेंड को और भी खूबसूरत बना देंगे। और एक बात आप याद रखिए कि वीकेंड सिर्फ सैटरडे और संडे का नाम नहीं है, बल्कि अपनी एनर्जी रिचार्ज करने का एक मौका भी है। तो टेंशन को थोड़ा साइड में रखिए, स्माइल को थोड़ा वाइड कीजिए और वॉल्यूम को थोड़ा अप। एंड इसी के साथ लेट्स गेट टू योर मैसेजेस। यहाँ पर एक दो मैसेजेस हम देख लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं बदबाग विदेशी जी और आपके नाम नेक्स्ट ट्रैक ज़रूर डेडिकेट करेंगे। एंड आज सीला जी का जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे आपको सीला, बहुत सारा प्यार। एंड गुड विशेस कमिंग फ्रॉम सुनीता भुजावन, एंड हमारी ओर से भी आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे। जाना जी कैसी हैं आप, नमस्ते आपको, फ्लैग से साथ निभा रही है। और एक गाना आप सुनना चाहते हैं फ्रॉम द मूवी अंदाज़, ऑलराइट है, देखेंगे अगर हो सके तो हम ज़रूर चलाएँगे। और आप डेडिकेट करते हैं गाना फॉर आपकी बेटी, यहाँ पर आपकी बेटी का नाम है रीमा, जिनीता, श्रेष्ठा, अंशनी, सल्विया, योवी, कृषि, द होल सी सरण परिवार जो फ्लैग से है, आरती, विशाल, अवनीश, शौव, लालमाटी, विशिंग ऑल हैप्पी सैटरडे, दल्तमन, जादू, दियाल, लालमन, नीलम्बर, सिचुन, हरमदयाल, गोकुल सिंह, अम्पतुब, सिचुहल, भगवान और गनु परिवार भी है। आप सभी के नाम नेक्स्ट ट्रैक जाता है, विशिंग यू ऑल हैप्पी सैटरडे।
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the Flow Expert.
1: Sports News.
2: Radio Musti in the mix.
3: राइट घर मिलाते चलिए 7:31 एंड वी हैव स्टूडियो में विकास जी लेकर आए हैं चटपटी स्पोर्ट्स खबरें सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है. वेरी गुड मॉर्निंग आपको विकास जी.
4: गुड मॉर्निंग रिया एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस. मॉरिशस की जय हो. कुड्डो कल जगमगा उठा. स्थानीय फुटबॉल फिर जाग उठा. क्लब एम ने श्रीलंका को 3-0 से हराकर लोकल फुटबॉल में नई जान फूंक दी. हार्दिक बधाई. बड़े दिनों बाद इतनी खुशी मिली. स्टेफान दे रोबिया, विलियम फ्रांसवा और ओगेलियम फ्रांसवा ने बारी बारी 3 गोल दागकर दिल खुश कर दिया. और क्लब एम के कोच रुई पेड्रो इतना खुश हुआ कि उसकी सेलिब्रेशन श्रीलंकन कोच को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए कुछ मिनटों के लिए मैच को रोकना भी पड़ा. कुछ झड़पें भी हुई लेकिन अंततः जब मैच जारी रखा गया तो फाइनल स्कोर मॉरिशस 3-0. हार्दिक बधाई. अब इसका दूसरा राउंड एक और मैच खेला जाएगा इन दो देशों के बीच इसी सोमवार रात, मंडे की रात 7:00 को जो के नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही, मॉरिशस वर्सेस श्रीलंका. सेकेंड राउंड सोमवार रात 7:00. देखते रहिए और सुनते रहिए. फुटबॉल की ही बात करें पर इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूईएफए नेशंस लीग में कल जिनेदिन जिदान के फ्रांस ने इटली के स्क्वाड्रा अजूरा के साथ मैच ड्रॉ किया 1-1. जिदान का ये पहला मैच था स्टाद दे फ्रांस में, यानी कि अपने ही घर में, और मैच ड्रॉ गया. मिकाएल ओलिजे का एक पहला गोल खेल के 55वें मिनट पर, सुपर गोल ओलिजे की ओर से. और उसके बाद

68वें मिनट पर अलेसांड्रो बास्टोनी ने इक्वलाइज किया इटली के लिए। फ्रांस एक, इटली एक। इसी ग्रुप एक में बेल्जियम ने तुर्की को 3-0 से तोड़ा। केविन डे ब्रून का एक डबल, रोमेलु लुकाकू आल्सो ऑन टारगेट। बेल्जियम 3, तुर्की 0। ग्रुप दो में हंगरी ने जॉर्जिया को 1-0 से हराया, तो यूक्रेन की हार हुई। नॉर्दर्न आयरलैंड ने एवजाकर यूक्रेन को 3-0 से हराया। ब्राउन का एक डबल, प्राइस का भी एक गोल। यूक्रेन 0, नॉर्दर्न आयरलैंड 3। ग्रुप चार में बोस्निया 1, स्वीडन 1, गोल कर्टिसी ऑफ विक्टर ग्योकरेस इधर से, अलाबेद जोगोविच उधर से। बोस्निया 1, स्वीडन 1। पोलैंड ने इसी में रोमेनिया को 6-0 से पछाड़ा। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की की एक शानदार हैट्रिक, अनुभवी खिलाड़ी ने एक पेनाल्टी भी स्कोर की। लेवांडोव्स्की 3, बाकी 3 और गोल। पोलैंड 6, रोमेनिया 0। ग्रुप दो में साइप्रस 2, आर्मेनिया 0, लेटविया 1, मोंटेनेग्रो 2। तो ग्रुप तीन में कजाकिस्तान की हार हुई, कजाकिस्तान 1, मोल्दोवा 2, फारोवे आइलैंड्स 1, स्लोवेकिया 1। अब आज रात भी कई महत्वपूर्ण मैच खेले जाएंगे इसी यूएफए नेशंस लीग में। उल्लेखनीय है कि आज रात 8 बजे, सेव द टाइम, आज रात 8 बजे इंग्लैंड के द 3 लायंस क्रोएशिया में होंगे, जहां वे लुका मोड्रिच और साथियों से लोहा लेंगे। आज रात 8 बजे क्रोएशिया वर्सेस इंग्लैंड, और 11:45 बजे 10:45 PM इसी ग्रुप तीन में स्पेन का मुकाबला चेक रिपब्लिक से। बाकी फिक्चर्स इस प्रकार हैं: नॉर्थ मैसेडोनिया वर्सेस स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड का मुकाबला स्लोवेनिया से, फिनलैंड खेलेगा आज दिन के दौरान, आज शाम 5 बजे ही फिनलैंड वर्सेस अल्बेनिया, और रात 8 बजे बेलारूस का मुकाबला सान मैरिनो से। ग्रुप चार में एस्टोनिया खेलेगा रात 8 बजे लुक्जमबर्ग के विरुद्ध, आइसलैंड वर्सेस बुल्गारिया। अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैचों में बता दें कि आज सुबह ही पराग्वे ने कोलंबिया को 1-0 से परास्त किया। बाकी फ्रेंडली मुलाकातों में दक्षिण कोरिया और वेनेजुएला ने मैच ड्रॉ किया 0-0, तो पैलेस्टाइन ने चाइना को 5-0 से परास्त किया। अब आज रात महत्वपूर्ण मुकाबले, खासतौर पे भारत और ब्राजील के बीच कई सालों बाद पहली बार इन दो देशों के बीच एक पहला अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडली मैच खेला जा रहा है। आज शाम 6 बजे ये मैच भारतीय सरजमीं पे खेला जाएगा, इंडिया वर्सेस ब्राजील, जिसका फुटबॉल प्रेमियों का कई सालों से इंतजार था, और इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। आज शाम 6 बजे इंडिया वर्सेस ब्राजील ये मैच विवेकानंदा युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत का मुकाबला ब्राजील से है। आज ही फुटबॉल यूनियन ऑफ रशिया का मुकाबला नमीबिया से। कनाडा खेलेगा पेरू के विरुद्ध, आइवरी कोस्ट वर्सेस कमेरून, तो चुनिजिया और माली वाला मैच बर्खास्त कर दिया गया है। फुटबॉल में ही बता दें कि मैनचेस्टर सिटी ने सजा के सामने, आरोपों के सामने अपील करने की बात कही है। सिटी के चेयरमैन ने कल इस बात की पुष्टि की कि वे इन सब के विरुद्ध अपील करेंगे, क्योंकि इन लो उनके मुताबिक जो भी कहा गया है उसमें कोई तथ्य नहीं है, और वे उनको पूरा भरोसा है कि टीम इससे सफल इसमें साबित होकर ही निकलेगी। इस बारे में भी सुनते रहिए। बात करें अब टेनिस की, जो आजकल चाइना में खेला जा रहा है। टेनिस चाइना ओपन के राउंड ऑफ 64 में कल कई मैच खेले गए, और आज भी कुछ मैच रखे गए हैं। बता दें कि आज के मैचों में कोई बड़े बड़े मुकाबले तो नहीं है, लेकिन अभी राउंड ऑफ 64 है, और ऐसे में ये मैच जारी रखे जा रहे हैं। आज कोको गाउफ का मुकाबला इसी समय ओजोरियो से हो रहा है, और गाउफ पहला सेट 5-2 से जीत रही है। लड़कों में रूबलेव का मुकाबला आज ही साफियोलिन से है, जबकि डैनियल मेडवेदेव आज रात खेलेगा स्ट्रॉफ के विरुद्ध। कल के मैचों में काशानोव की जीत हुई, मुचोवा ने बाउल्टर को 7-6 और 6-1 से परास्त किया, और नाओमी उसाका की भी कल जीत हुई। सो आज भी चाइना ओपन के अंतर्गत कई मैच खेले जा रहे हैं। टेनिस की के बाद फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की बात करें, बहरेन ग्रां प्री रेस कल रविवार को लगने वाली है, और कल शुक्रवार की रात जो सेकंड प्रैक्टिस रन हुई उसमें शार्ल

क्लेयर की जीत हुई। उल्लेखनीय है कि अभी जनरल स्टैंडिंग में किमी एंटोनेली पहले स्थान पर है 302 अंकों के साथ, जॉर्ज रसेल दूसरे स्थान पर 236 अंक, तो लेविस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर है 199 अंकों के साथ। क्रिकेट में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच आज दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। चंडीगढ़ के महाराजा यदविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट

0: टीम में कह सकते हैं सेमीफाइनल में है, दो मेन सिंगल में और दो मेन्स डबल में। सो लड़कों में जोनाथन निंगविंगलित नियानेश चांगिया सेमीफाइनल में है, जबकि लड़कियों में एल्जा हाउहोंग और उसकी बहन कियारा हाउहोंग क्वार्टर फाइनल में ही हार गई। मेंस डबल में प्रणव भागीरथी न्यानेश चांगिया जोड़ी ने इजिप्ट को 15-9 और 15-7 से हराकर सेमीफाइनल के लिए अपना टिकट बुक किया। तो वुमेन्स डबल में हाउहोंग बहनें भी सेमीफाइनल में है, अल्जीरिया को 15-9 और 15-9 से परास्त करने के बाद। उल्लेखनीय है कि कल रात कुज्जो में मॉरिशस से फुटबॉल की जीत हुई, क्लब एम ने श्रीलंका को 3-0 से परास्त किया। अब एक दूसरा मैच खेला जाएगा इसी सोमवार रात 7 बजे यहीं पर कुड्डो नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। देखते रहिए और सुनते रहिए, नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच विकास जी, और शुभ दिन आपको भी।
2: दिस मैगजीन वॉज ब्रॉट टू यू बाय क्वालिटी डेकोर, द फ्लो एक्सपर्ट।
3: Pour donner vie à vos projets de rénovation, choisissez Quality Décor. Carrelage, quartz, granit, ardoise, slab, tout est là pour vous dans nos 12 showrooms répartis sur toute l'île. Besoin d'un petit coup de pouce? Nous offrons des facilités de crédit pour rendre vos rêves accessibles et un service de transport pour vous livrer à la maison. Venez découvrir nos produits de qualité tout en profitant des conseils de nos experts. Suivez-nous sur Facebook, Quality Décor, pour ne pas manquer nos offres exclusives. Radio Mastic.

0: Chillax with Radio Musty,
1: your number one Bollywood radio station.
2: रेनू जी हमारे साथ है, जुड़ी हुई है पिछले काफ़ी से, और आज आपके बेटे नितलेश का जन्मदिन है, सो हैप्पी बर्थडे नितलेश को, एंड आप उनको बहुत सारा प्यार भेज रही है, सो नितलेश हैव अ वंडरफुल डे एंड अ वेरी हैप्पी बर्थडे वंस अगेन।

चलिए अभी जाने का समय हो चला है, आपको हम बाय कहते हैं और बहुत सारा प्यार छोड़ कर जाते हैं। दिव्या का साथ आपको मिलेगा इन योर टाइमलेस तड़का, तब तक यू टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।

नमस्ते भोजपुरी में समाचार सुना जा। कैबिनेट ई नोट करलन के स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के काम के नवा गति देवे खातिर और सरकार दिने घोषित उपाय के तेजी से लागू करे खातिर इकर बोर्ड के पुनर्गठन कर जाता। ये पुनर्गठन में जी ग्वांग जिल्बे शूट के पाउट टाइम चेयरपर्सन बनावल गलबाते सुहामैन चिलन जे के जयन चिलन के नाम से भी जानल जाला। उनका उपभोक्ता लोग के हित के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करल गल बाते और वीरेंद्र मुसाई के इंडिपेंडेंट मेंबर बनावल गल बाते। एसटीसी के पुराना बोर्ड के 29 सितंबर के बर्खास्त कर दी वल गल रहल। ये फैसला की घोषणा एक दिन बाद बुधवार 30 सितंबर के व्यापार मंत्री माइकल सिक्यूएन रेडियो प्लस पर कर दे रहलन। मॉरिशस में पानी के भंडार के लिए की स्थिति अभी ले चिंताजनक बनल बाते। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के आंकड़ा के मुताबिक कल 2 अक्टूबर के महोवाकुआ जलाशय में पानी के स्तर घट के 36.6% के रहल। पानी के भंडार में लगातार जो कमी आवता और मौसम के सूखा रहे के जो अनुमान बाती करा देख के मंत्रिमंडल पानी की स्थिति पर एक क्राइसिस कमेटी बनावे के जायजा लेलन। ई कमेटी के अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री करियन। एकर काम उपलब्ध पानी के संसाधन के जस्ती निमन प्रबंधन खातिर जरूरी और तत्काल कदम पर विचार करे के बाद अभी पानी पर लागू मौजूदा पाबंदी जारी रही और यदि हालात जस्ती बिगड़ी तो ई पाबंदी की जस्ती सख्त कर जाए। अधिकारी लोग जनता से पानी की जिम्मेदारी से इस्तेमाल करे की अपील करता। कहे कि पानी के भंडार लगातार कमती होता और मौसम भी अनुकूल नहीं रहे के अनुमान बातें। मॉरिशस में सितंबर से कॉन्सेंट्रिक्स की गतिविधि बंद होने के मामला के बाद अब समाधान मिल गल बाते। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र में काम करे होलाई कंपनी के कुनो 300 कर्मचारी की हर बरिस के सेवा के बदले 2 महीना के वेतन एकर संगी नोटिस के तौर पर 1 महीना के वेतन देवल जाए। ये प्रस्ताव कल 2 अक्टूबर के श्रम मंत्री की देखरेख में कॉन्सेंट्रिक्स और कर्मचारी के प्रतिनिधि के बीच हो दूसर बैठक के बाद सामने आल बाते। श्रम मंत्री रेजा उद्दीन बोलन के सस्ता श्रम खातिर मॉरिशस की तुलना में मडागास्कर जस्ती आकर्षक बन गलवाते। वो बोलन के आईसीटी मंत्री अविनाश राम दोहल और उद्योग मंत्री आदिल अमिया मियाँ एगो अंतर मंत्रालयी समिति के हिस्सा हवन। ई समिति ओताम यानी आउटसोर्सिंग एंड टेली कम्युनिकेशन एसोसिएशन ऑफ मॉरिशस के संगे मिलकर आउटसोर्सिंग सेक्टर में मॉरिशस की प्रतिस्पर्धा बढ़ावे पर काम करता। बैंक ऑफ मॉरिशस देश की में नकली नोट के चलन के लिए की चेतावनी देवता। बैंक ऑफ मॉरिशस जनता से नोट लेवे या इस्तेमाल करे बखत जस्ती सावधानी बरते की अपील करत।

0: Bank of Murcia's currency office ke chief Jean-Claude Chamary bolen ki asli note ki pehchan ke teen gotare ka baate chuke dekh ke aur us suraksha chain ki jaanch karke agar kono note ki asliyat par shak hoye to uske swikar nahi karege chahiye aur turant nazdeeki police station mein ekar jankari dewe ke chahiye videsh mein fly dubai viman ke pilot par hol hamla ke mamla mein adhikari अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान की चेतावनी दिलन ट्रंप बोलन कि यदि जांच में इम हमला के पीछे ईरान के हाथ हुई की पुष्टि हुई तो अमरीका बहुत ही घातक जवाबी कार्रवाई करी हुई भी बोलन के विमान के को पायलट के ईरान से संबंध होने की संभावना बातें तो यह रहा भोजपुरी समाचार आप लोग की जानकारी धन्यवाद
1: on NBC Play and NBC.mu.
2: Timeless Tarka.
3: RM2.
2: Timeless Tarka.

0: सीमलेस तड़का
1: RM2।
2: क्या बात है, छोड़ दो आजकल जमाना क्या कहेगा भाई, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और उनको कहते रहने देना चाहिए और आप वही करिए जो आपका दिल आपसे कहता है। चलिए अभी के लिए सुबह सुबह हमारे दिल ने कहा कि चलो भाई उनसे आज मुलाकात कर ही लेते हैं जो हमारे दिल में है और जिन्होंने हमारे दिल में एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई है और वो लोग आप है, यानी कि हमारे रेडियो मस्ती लिसनर्स। थैंक यू सो मच इतने प्यार से हमारा साथ देने के लिए। सुबह के 8:09 हो चुके हैं। विशिंग यू ऑल अ लवली लवली गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक ठाक है और ऐसा लगता है कि बरसों बाद सुबह सुबह हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, वरना ऐसे तो रात को ही हमारी मुलाकात होती है 7 से 9 बजे के बीच, लेकिन आज अर्ली मॉर्निंग आपसे मिलकर इतना अच्छा लग रहा है कि क्या कहें। वेल, हमने किक स्टार्ट कर लिया है ये शो एक बहुत ही खूबसूरत गीत साथ एंड विल कीप यू वेल एंटरटेन्ड टिल 11 AM। यस, दिन के 11 बजे तक हमारा और आपका साथ रहने वाला है, सो यू स्टे राइट कनेक्टेड एंड ड्रॉप इन योर मैसेजेस ऑन 5499-1294। कल हमने एक बात कही थी कि द बेस्ट काइंड ऑफ हैप्पीनेस इज नोइंग दैट कि आप रात को सोने जाओ ये जानकर कि सुबह को आपको अलार्म सेट नहीं करना पड़ेगा। टू ऑल दोस्त जो भी सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, आपको हम जगाने के लिए आए हैं, एंड टू ऑल दोस्त जो उठ गए हैं, आपको हम सर्व कर रहे हैं आपका म्यूजिकल ब्रेकफास्ट। ऑफ कोर्स ऑल्स हैपनिंग राइट हियर राइट नाउ ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती जहां पर दिव्या का साथ है। चलिए अभी के लिए हम जानेंगे कि दिन के दौरान मौसम का क्या हाल रहने वाला है।
0: इट्स द वेदर ब्रॉडकास्ट विद विनर्स।
3: On est tous winners.
4: दक्षिण में पाए जा रहे सक्रिय बादलों का असर हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ रहा है, साथ ही मस्करीन सके दक्षिण में पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान, आज सुबह देश भर में मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन दिन के दौरान और दोपहर बाद के समय देश की दक्षिणी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर रह रहकर वर्षा होगी और बाद में अन्य जगहों पर भी वर्षा हो सकती है। रात्रि के समय देश के दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर बादल छाए रहेंगे और रह रहकर वर्षा होगी और बाद में मौसम में सुधार आएगा। तापमान, सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। प्रवाह रेखा के परिसमुद्र खराब रहेगा और समुद्र में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर तक ऊंच लहरें भी उठ सकती है, खासकर दक्षिणी लगूनों में, तो समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। सूर्योदय आज 5:50 पर हुआ और अब सूर्यास्त शाम के 6:06 पर होगा।
0: Your weather forecast on RM2.
1: Radio Musti.
5: Les prix malins débarquent chez Winners. Du 25 septembre au 8 octobre, profitez de super offres sur une sélection de produits du quotidien dans votre Winners préféré. Le litre d'huile de soja Alpa à 67,95 € et les 3 kg de lessive machine en poudre blanc et couleur à 159,95 €. De nombreuses offres vous attendent dans nos rayons. Alors remplissez votre caddie à prix malin et profitez-en chez Winners. Retrouvez notre brochure sur winners.mu.
6: On est tous Winners.
7: Music all day

0: Timeless Tadka.
1: RM2.
2: आप बिल्कुल अकेले नहीं है, धुआं धुआं इस तन्हाई में तो हम नहीं चाहते हैं आप रहें। और कहते हैं ना कि कभी कभी मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें किया करते हैं कि तुम होते तो ऐसा होता, लेकिन हम इतना सोचते नहीं हैं क्योंकि हम अगर मगर नहीं करते हैं, बिकॉज

0: वेरी श्योर कि आप हमारे साथ हैं और ऐसा ही हो रहा है जैसे हमने सोचा था, मतलब पूरा माहौल एकदम सेट हो चुका है. आपके मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं टेलिंग अस दैट यू आर लविंग द सॉन्ग सिलेक्शंस. यही हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होता है अर्ली मॉर्निंग. सो चलिए यहाँ पर अगला गाना गुजार फॉर रितेश शर्मा, रानी, आदर्श, तनिष, निष्ठा, जयश, युश्रा, वशिष, शकील, सभी जीबन फैमिली ऑफ बेलिया. डेडिकेशन गोज ऑल्सो टू द एंटायर डिजर्विंग क्रू ऑफ रेडियो मस्ती. क्या बात है, इतने प्यार से आप लोग मैसेजेस भेजेंगे तो हाई मैं गुड़ खा के मर जावा. इतना स्वीट आप लोग बन रही है ना कि हमें बस यही मौका मिलता है आपके मैसेजेस देखकर हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और हम ग्रेटफुल फील करते हैं कि आप लोग इतना प्यार करते हैं हमसे. So keep showing your love and support to Radio Masti team. And यहाँ पर एक और मैसेज आया है. नमस्ते दिव्या जी, प्लीज नेक्स्ट गाना गोज आउट फॉर मेधा, मनीष, श्रिया, अरियान, नील, शीतल, विक्की, रितिना, नितिन, संगीता, उमोता, एब्लॉश. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. और यहाँ पर किसने कहा है, गुड मॉर्निंग परी, हाउ आर यू डूइंग. परी नहीं बल्कि दिव्या साथ रही है. परी बाद में आएगी 2 से 4 के बीच, लेकिन आपका ये मैसेज उन तक हम जरूर पहुँचाएंगे. फिलहाल के लिए दिव्या का साथ है टिल 11 AM. शो इज वेरी नाइस ऑन रेडियो मस्ती. Thank you so much. Wishing all a happy Saturday. And aapko bhi have a nice weekend from Yalesh Sham of Suriname and Sham family ke liye hum dedication kar rahe hai. And especially to all those jo aapko sun rahe hai aur aapko jante hai. To chaliye isi ke saath hum barhte hai kuch aur khubsurat geet ki aur.
1: Timeless Tadka.
2: RM2.
1: Timeless Tadka.

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: अब ये दिल मजबूर हो जाता है बार बार, it keeps falling in love with you. आप लोग इतने प्यारे हैं कि क्या करें. चलिए यहाँ पर आपके प्यारे प्यारे मैसेजेस तो हम तक पहुँच ही रहे हैं. वेरी गुड मॉर्निंग माई लवली बहना दिव्या. हेलो बहना जी, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ एंड आई जस्ट होप दैट यू आर डूइंग गुड एज वेल. प्यारी सी ललिता जीतन जी आ गई हैं RM2 रेडियो मस्ती की लहरों पर. नेक्स्ट गोज आउट टू श्याम एंड कुमार देवी चन ऑफ पेहबे, और साथ में हमारी प्यारी सी वीना जगेसर ऑफ बेलवी मोगैल कहती हैं हैप्पी सैटरडे आपको. और अगला गाना आपके बच्चों के नाम और आपके परिवार के नाम और रेडियो मस्ती के नाम भी. दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू. एंड वी आल्सो हैव गीता सीता बलुराम ऑफ शातो बनारस. और नेक्स्ट ट्रैक गोज आउट फॉर हस्बैंड रवि, बेटी दुशिका एंड ट्विशा फ्रॉम वीना ऑफ मोहताबा. वीना जी थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यार से हमारा साथ दे रहे हैं. कभी ऐसा होता है ना कि आप काम पर नहीं जाते हैं सैटरडे संडे को, लेकिन फिर भी सुबह सवेरे आपकी आंख खुल जाती है और सबसे पहला काम आप यही करते हैं कि बस रेडियो ऑन कर लेते हैं और कहते हैं कि गुड म्यूज़िक के बिना ज़िंदगी फीकी पड़ जाती है. और इसी के चलते आप लोग रेडियो डाल देते हैं और हमारे साथ जुड़ जाते हैं. थैंक यू सो मच कि आप सुबह सवेरे उठते ही हमारे बारे में सोचते हैं, हम भी आपके बारे में सोचते हैं. इसीलिए तो ऐसे अच्छे अच्छे गाने लेकर आए हैं आप लोगों के लिए टू कीप यू इन द गुड मूड अर्ली मॉर्निंग. एंड चल रहा है आपका टाइमलेस तड़का जहाँ पर दिव्या का साथ है टिल 11 AM.
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

Well, it's taken from the movie चुरा लिया है तुमने and चलिए यहाँ पर किसने कहा है कि मोहब्बत है मिर्ची भाई. मोहब्बत तो वो चीज़ है जो एक बार ज़िंदगी में आ जाए तो इससे ज़िंदगी सवर ही जाती है. आपकी क्या राय है इसके बारे में? Definitely do let us know on 5499-1294. फिलहाल के लिए अगर आप अपना ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ म्यूजिकल ब्रेकफास्ट, क्योंकि हम यहाँ पर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक से बढ़कर एक गाने टू कीप यू इन द गुड मूड. और चलिए सुबह सवेरे आपकी जो हंसी है वो वाइड एंड ब्रॉड होना चाहिए. और वैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह जो आप करते हैं वो दिन भर वही आप करते हैं, सो वाई नॉट स्माइलिंग एंड पुटिंग अ स्माइल ऑन अदर्स फेस एज वेल. भाई देखिए हमारी तरफ से हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको थोड़ा हंसाने की, थोड़ा अच्छा फील कराने की कोशिश कर रहे हैं. तो चलिए आई जस्ट होप कि सुबह सवेरे यू आर फीलिंग पॉजिटिव और इसी पॉजिटिविटी के साथ आपको अपने इस सैटरडे को स्पेंड करना है.

0: तड़का
1: RM2
0: टाइमलेस तड़का वेल 8:55 हो चुके हैं, कुछ ही देर में हम बढ़ने जा रही है 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों की ओर. स्टे वाइल्ड कनेक्टेड, पक्का प्रॉमिस कि आपके साथ साथ हम रहेंगे टिल 11 AM. इट्स योर टाइमलेस तड़का जहां पर दिव्या का साथ है. एंड कीप सेंडिंग यू मैसेजेस ऑन 5499 1294. फिलहाल के लिए लता जी और सुरेश जी की आवाज लहरा चुकी है ऑन द वेव्स ऑफ RM2. तो चलिए, अगर आपको भी याद नहीं है तो एक बार फिर से आपको याद दिला देते हैं. दैट्स योर कनेक्टेड टू रेडियो मस्ती. थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. आपके मैसेजेस हमें ज़रूर मिल रहे हैं. तो चलिए, नेक्स्ट आवर में विल बी इंक्लूडिंग योर मैसेजेस ऑन 5499 1294.

0: समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने नोट किया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के काम को नई गति देने और सरकार द्वारा घोषित उपायों को तेजी से लागू करने के लिए इसके बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है और इस पुनर्गठन में अन्य लोगों के साथ जीगुआंग जिल्बेर शू को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है। पोजुहामेन चेलन, जिन्हें जयन चेलन के नाम से भी जाना जाता है, उनको उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और वीरेंद्र मुसाई को इंडिपेंडेंट मेंबर बनाया गया है। याद रहे कि एसटीसी के पूर्व बोर्ड को 29 सितंबर को बर्खास्त कर दिया गया था। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार 2 अक्टूबर को महोबाक्वा जलाशय में पानी का स्तर घटकर 36.6% रह गया। पानी के भंडार में लगातार हो रही कमी और मौसम के सूखा रहने के अनुमान को देखते हुए मंत्रिमंडल ने पानी की स्थिति पर एक क्राइसिस कमेटी बनाए जाने की जानकारी दी। इस कमेटी की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री करेंगे और इसका काम उपलब्ध पानी के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए ज़रूरी और तत्काल कदमों पर विचार करना होगा। मॉरिशस में सितंबर से कंसेंट्रिक्स की गतिविधियां बंद होने के मामले में अब समाधान निकल आया है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र में काम करने वाली इस कंपनी के करीब 300 कर्मचारियों को हर साल की सेवा के बदले 2 महीने का वेतन, साथ ही नोटिस के तौर पर 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये प्रस्ताव कल शुक्रवार 2 अक्टूबर को श्रम मंत्री की देखरेख में कंसेंट्रिक्स और कर्मचारियों के प्रतिनिधि के बीच हुई दूसरी सुलह और मध्यस्थता बैठक के बाद सामने आया। बैंक ऑफ मॉरिशस ने देश में नकली नोटों के चलन को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें, नोट पर बने सुरक्षा चिन्ह, उभरे हुए निशान, नोट को झुकाने पर दिखने वाले बदलाव और यूवी लाइट में नजर आने वाले खास निशानों से इसकी पहचान की जा सकती है। और बैंक ऑफ मॉरिशस ने लोगों से नोट लेते या इस्तेमाल करते समय ज़्यादा सावधानी बरतने की अपील की है। और आज की चर्चा प्रोग्राम में चर्चा का विषय होगा इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग सीजन 2026 और आज किरण जानकी के मेहमान होंगे एमओए के टेक्निकल ऑफिसर लेखराम जगेसर। तो आज की चर्चा कार्यक्रम 9 बजे के इन समाचारों के बाद दिन के 10 बजे तक रेडियो मॉरिशस पर। विदेश में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से उत्तर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ शनिवार की सुबह न्यूकासल नाइट्स टीम के इलाके में रग्बी फैंस की भारी भीड़ के बीच एक कार के घुस जाने से 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई प्रेस के मुताबिक पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए, हमें आगे दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
2: Timeless Tarka.
3: RM2.
2: Timeless Tarka.

0: is तड़का
1: RM2
2: आंखों में बस प्यार का नशा ही होना चाहिए और प्यार के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। जिंदगी में प्यार ही प्यार हो तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। अब आप इमेजिन कीजिए, उतने ही प्यार से आप उठते हैं, अच्छे मूड में होते हैं और आपके सराउंडिंग में जितने भी सारे लोग हैं उनसे आप प्यार से मिलते हैं, जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है ना। इसीलिए रोज रोज दूसरों से प्यार से मिला करो और प्यार से बात किया करो। चलिए हम तो प्यार से ही बात कर रहे हैं। 9:09 हो चुके हैं, परफेक्ट टाइमिंग, और इस परफेक्ट टाइमिंग में हमारे परफेक्ट गाने भी आ चुके हैं आपको एकदम मूड को टकाटक बनाने के लिए एंड साथ में टू कीप यू इन द पॉजिटिव वाइब्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह सवेरी कभी कभी हम इतने स्ट्रेस में पड़ जाते हैं और हम याद करने लग जाते हैं कि कल हमारे साथ क्या हुआ था, मूड खराब हुआ था, किसी ने डांट दिया था या फिर किसी ने कुछ कह दिया था, कल की बात

0: को आप कल में ही रखिए और कहते हैं ना कि रात गई बात गई और इसी के चक्कर में हम अपने मूड को ख़राब क्यों करें। आप देखिए आगे, जब आप आगे देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके आगे में एक पूरा दिन पड़ा हुआ है, एक पूरी रात पड़ी हुई है। सो वाई आप बिना वजह अपने मूड को ख़राब करते रहे। तो चलिए जस्ट चीयर अप, जो भी हुआ है लाइफ में अजय के लिए ही होता है। एंड बस अपने आप में डाउट मत रखिएगा एंड जस्ट कीप ट्रस्टिंग द परफेक्ट टाइमिंग। जो परफेक्ट टाइमिंग पे ट्रस्ट करते हैं ऑटोमेटिकली उनके साथ अच्छा ही होता है। एंड जस्ट कीप ऑन बिलीविंग कि आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा और आप देखेंगे सच में अच्छा ही हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर किसी का मैसेज आया है, गुड मॉर्निंग दिव्या जी एंड थैंक यू सो मच माधवी जी फॉर केयरिंग सो मच। आप हैं सैं फ्रांसवा कालोजिन से एंड धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, बस आपका प्यार है आपका सपोर्ट है तो हम और भी ठीक ठाक हो जाएंगे। Listening to Radio Masti and as usual सिलाई कर रही है एंड चलिए आपने हमें अपना अच्छा दोस्त माना है तो दोस्ती की खातिर ये दोस्ती को हम निभाएंगे और भी अच्छे अच्छे गाने आपको सुनाएंगे। Keep us entertained while moving ahead. Thank you so much माधवी जी, आप इस वक्त सैं फ्रांसवा कालोजिन से हमारा साथ दे रही हैं। तो चलिए ये अगला गाना गुजार टू ऑल दोस्त जो आपको जानते हैं और आपको बों को आज आपकी सिलाई के लिए एंड जितने भी सारे लोग इस वक्त शायद काम पर पहुँच चुके हैं आपको हम विश करेंगे बों को आज।
1: Timeless Tadka.
2: RM2.
1: Timeless Tadka.

0: без тарка.
1: RM2.
2: Well, 9:22 हो चुके हैं. Welcoming you once again. अगर आपने अभी अपना रेडियो ऑन किया है, so reminding you that you're connected to Radio Masti, जहां पर चल रहा है आपका टाइमलेस तड़का दिव्या के साथ till 11 AM. तो चलिए, to all those जो अभी कनेक्टेड हैं हमारे साथ, thank you. And किसी ने हमें कहा प्रणाम, नमस्ते, good morning दिव्या जी, your energetic vibes for a Saturday so good, thank you so much, means a lot. And thank you आपके इस compliment के लिए, it means a lot and it means the world to us जब आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं. फाइनली आपने हमारा सैटरडे बना दिया विद द सॉन्ग माहिया. चलिए, ये गाना मुझे पूरा यकीन है कि इसके साथ बहुत सारे लोगों के खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं एंड गाना ही इतना प्यारा है. सो वी हैव नितिश रामदिकल एंड गोज आउट फॉर मामा मीला रामदिकल, टू ऑल दोज जो आपको जानते हैं, थैंक यू सो मच हमारा साथ देने के लिए. और हमारी प्यारी सी लक्ष्मी जी फ्रॉम गुडलैंड्स कनेक्टेड है हमारे साथ, कहती हैं कि प्लीज प्ले अ नाइस सॉन्ग फॉर माई हस्बैंड एंड बेटा जो अभी मेरी मदद कर रहे हैं टू डू अ डीप क्लीनिंग एट होम. क्या बात है, सैटरडे का दिन यानी कि घर की साफ सफाई. और देखते ही देखते अभी दुर्गा नवमी भी आने वाली है और सब लोग इसके चलते घर की साफ सफाई कर रही है एडवांस में. तो आपको बो कुहाश टू ऑल दोज जो इस वक्त सुबह सवेरे उठकर साफ सफाई कर रहे हैं, और साफ सफाई करने के बाद भी आप लोग सोच रहे हैं कि किचन में जाना है, क्या बनाना है दोपहर को या फिर रात को. ओ माई गॉड, इतना कुछ करना होता है. इसीलिए हम कहते हैं ना कि रूटीन को थोड़ा सा ब्रेक कीजिए. कभी कभी बस ब्रेक लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. एंड आप थोड़ा सा रिलैक्स करें, खुद के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें. एंड चलिए, थोड़ा बहुत आप

0: घर की साफ सफाई कर रहे हैं तो हमारी गीतों को एंजॉय करते करते थोड़ा बहुत डांस भी कर लीजिएगा।
1: Timeless तड़का।
2: RM2
1: Timeless तड़का।

0: без тарка.
1: RM2.
2: चले बढ़ते हैं आपके कुछ और ब्यूटीफुल मैसेजेस की ओर। किसी ने हमें ये मैसेज बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। तेरे इश्क का नशा कुछ इस तरह छाया है, हर खुशी ने भी तेरा ही नाम दोहराया है। फ्रॉम आकाश चेतन मनसुख ऑफ बॉम्बू। हे आकाश, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल मैसेज। चलिए यहाँ पर आप विश कर रहे हैं सभी लिसनर्स को लवली गुड मॉर्निंग and a lovely musical selection in this beautiful Saturday morning means a lot. Next gana goes out to all Mansukh family of Bamboo jo is waqt hame sun rahi hai. To chaliye to all those jo is waqt connected hai, maybe you're driving right now, have a safe and a musical drive with Radio Masti aur Divya ka saath dete rahiyega kyunki hamara aur aapka saath rehne wala hai till 11 am.
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

0: टाइमलेस तड़का
1: और एम टू
0: टाइमलेस तड़का
2: Time is flying, time is fleeting. Oh my God, I just can't believe. अभी तो 8 बजे आई थी और देखते ही देखते 9:50 भी हो चुके हैं. Oh my God, how is this possible? चलिए जितना हो सके हम हर एक मोमेंट को ऐसे ही ब्यूटीफुल मेमोरेबल बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं विद दिस ब्यूटीफुल गाने. एंड लगे हाथ ये गाना स्पेशली गोज आउट फॉर आशा जानू ऑफ कॉटेज. गुड

0: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से. नमस्कार आपको.
1: नमस्कार. संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें. कैबिनेट ने नोट किया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के काम को नई गति देने और सरकार द्वारा घोषित उपायों को तेजी से लागू करने के लिए इसके बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है. इस पुनर्गठन में अन्य लोगों के साथ जी क्वांग जिलबेशु को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है. परसुरामन चिलन, जिन्हें जयन चिलन के नाम से भी जाना जाता है, को उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और वीरेंद्र मुसाई को स्वतंत्र सदस्य यानी इंडिपेंडेंट मेंबर बनाया गया है. याद रहे कि एसटीसी के पूर्व बोर्ड को 29 सितंबर को बर्खास्त कर दिया गया था. मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. वाटर रिसोर्सेज कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार 2 अक्टूबर को महोवाकुआ जलाशय में पानी का स्तर घटकर 36.6% रह गया. पानी के भंडार में लगातार हो रही कमी और मौसम के सूखा रहने के अनुमान को देखते हुए मंत्रिमंडल ने पानी की स्थिति पर एक क्राइसिस कमेटी बनाए जाने की जानकारी दी और इस कमेटी की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री करेंगे. इसका काम उपलब्ध पानी के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए जरूरी और तत्काल कदमों पर विचार करना होगा. बैंक ऑफ मॉरिशस ने देश में नकली नोटों के चलन को लेकर चेतावनी दी है. लेकिन असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें, नोट बनने पर बने सुरक्षा चिन्ह, उभरे हुए निशान, नोट को झुकाने पर दिखने वाले बदलाव और यूवी लाइट में नजर आने वाले खास निशानों से इसकी पहचान की जा सकती है. बैंक ऑफ मॉरिशस ने लोगों से नोट लेते या इस्तेमाल करते समय ज्यादा सावधानी बरतने की अपील की है और अगर किसी नोट की असलियत पर शक हो तो उसे स्वीकार न करें और तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी दें. 1 जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन के पास कुल 363 शिकायतें दर्ज की गई. इनमें से 167 मामले स्कूल से जुड़े थे, 63 परिवार से और 11 ऐसे बच्चों से जुड़े थे जिन्हें विशेष जरूरतें यानी स्पेशल नीड्स है या फिर डिसेबिलिटी के साथ रह रही है. इस दौरान जाँच टीम ने 20 फील्ड विजिट भी किए. ये आंकड़े ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन की 2025-2026 वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं से कल पोटवी के कोडा आर्ट सेंटर में पेश किया गया. विदेश में मध्य पूर्व में तनाव अभी भी जारी है. इस बीच शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कुवैती झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर पर हमला किया गया. इस टैंकर पर 5 भारतीय मौजूद थे. ओमान में भारतीय दूतावास ने जानकारी दी है कि ये भारतीय नागरिक एमटी काजी महा पर सवार थे जो इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरते समय हमले का शिकार हुआ. सभी 5 लोगों को सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया गया है. तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई. थोड़ी देर में शोक समाचार. जोहरी रोड बुनाकर में 56 साल के 56 years old के श्री उमेश एकबाव जो राजेश नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई. उनकी अर्थी आज दिन के ढाई बजे उनके घर जोहरी रोड बुनाकर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुनाकर की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM. रॉयल रोड पोंपाला में 86 साल की 86 years old की मिसिज बीबी फातमून बिहारी पैदाइशी नाम पांचू और जो फातमून नाम से ज़्यादा जानी जाती थी का इंतकाल हो गया है. उनका जनाजा आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे जनाब रियाज अली बिहारी के मकान रॉयल रोड पोंपाला से निकालकर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए पोंपाला की मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए बुआ मौशों के कब्रस्तान यूनिवर्सिटी. रॉयल रोड मेलरोज में 86 साल की 86 years old की श्रीमती रमावती मोती पैदाइशी नाम गुदा और जो मामा आदिप नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई. उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री आदिप मोती के घर रॉयल रोड मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटाय ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे 3:00 PM.

0: बुदाईली निस्काल यमी बुदाईली निस्काल यमी 72 साल के 72 इयर्स ओल्ड के श्री नमेसर सिंह रामफल श्री नमेसर सिंह रामफल जो मामू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके घर बुदाईली निस्कालिये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए निस्कालिये की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:30 PM शोक में डूबे सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play and NBC.mu.
2: Timeless Tadka.
3: RM2.
2: Timeless Tadka.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: शादी के खरीदारी खातिर अलग अलग जगह जाए के सोचत हवा तो भूल जा, एकर जरूरत नहीं पड़ी। काहे कि हलकोड़ी फैशन के हिया पूरा परिवार खातिर एक ही छत के नीचे सब कुछ मिली। डिजाइनर लहंगा, लच्छा साड़ी, जोधपुरी क्रॉप टॉप, शेरवानी, सूट, ब्लेजर और वो भी सस्ता दाम में। हलकोरी फैशन, रॉयल रोड, पॉम्पली मिसेस गार्डन के सामने। फोन नंबर 5799-3782। हलकोरी फैशन, परंपरा, एलिगेंस और क्वालिटी।
3: La fin d'année des costés, tu ne parais?
4: Pas ici l'année, et ta dépense aussi.
3: Mais Rogers Capital la même! Tansa, jusqu'à 31 décembre, tout nouveau client côte Rogers Capital pégaye 500 roupies rabais, l'osote premier mensualité.
4: Financement, et te paye 500 roupies en moins, top net ça.
3: Application facile! Zis avec ton code identité.
4: Astez à mon faire l'année sans tracas.
3: Attendez, fais ou application premier crédit côte Rogers Capital. Offre valable jusqu'à 31 décembre. Conditions applicables. Rogers Capital Credit. Opère sous licence de la FSI.
0: RM2
1: Radio Musty.

यहां खलरी धीरे-धीरे बात बढ़ी और यहां पर बातों का तो पता नहीं लेकिन वक्त धीरे-धीरे आगे बढ़ ही रहा है और इससे हम बातों को भी आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि हम देखिए वक्त के खिलाफ रेस नहीं लगाना चाहते हैं हम वक्त के साथ-साथ चलना चाहते हैं और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ-साथ चलना चाहते हैं गाना गुनगुनाना चाहते हैं और चलिए उम्मीद करते हैं कि आप भी यू हैविंग अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू रेडियो मस्ती द स्विंग एंड स्वे वाला मूड हमेशा रहना चाहिए भाई आज सैटरडे मॉर्निंग है और पूरा एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए और आपका वॉल्यूम भी Welcoming you once again in the third hour of your timeless tarka jahan par Divya ka saath hai till 11 AM. So once again a lovely, lovely good morning to all of you jo abhi abhi uthe hai. ऐसा होता है सैटरडे के दिन में जब आपका मन चाहे तभी आप उसी वक्त को उठते हैं अभी अंगड़ाइयाँ भरते भरते सोच रहे हैं कि सैटरडे है क्या करना है लेकिन वहीं पर कुछ लोगों के ऑलरेडी प्लान्स बने हुए हैं तो चलिए आई जस्ट होप दैट यू हैव द ग्रेट ग्रेट टाइम एंड यू हैव अ ग्रेट सैटरडे

0: Shameless Tadka.
1: RM2.
2: बिल्कुल सैटरडे मॉर्निंग है और ऐसे में देयर शुड बी नो अगर मगर नो किंतु परंतु आपको डांस करना ही है मेरी जान और इस तरीके से डांस करना है एज इफ नोबडी इज वाचिंग. ये तो आपने सुना ही होगा कि हमेशा यू नीड टू डांस एज इफ नोबडी इज वाचिंग, लेकिन डांसिंग टू योर ओन रिदम इसका मजा ही कुछ और होता है. और चलिए उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारे हर एक गीत को एंजॉय कर रहे हैं एंड यू आर डांसिंग टू योर ओन रिदम. और सैटरडे का भी एक अलग रिदम होता है. इस रूटीन को थोड़ा सा अलग बनाने के लिए, थोड़ा सा ब्रेक करने के लिए खुद को ब्रेक की ज़रूरत है और ये ब्रेक आपको ज़रूर मिलता है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मस्ती, जहाँ पर हम गिने चुने गाने लेकर आते हैं आप लोगों के लिए टू मेक यू फील गुड. एंड आई जस्ट होप कि आपका मूड भी अच्छा है. एंड टू ऑल दोज जो

0: अभी ऑलरेडी काम पर पहुंच चुके हैं या फिर आप काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं या फिर आपका नाइट शिफ्ट बाद में शुरू होने वाला है, बस आपको हम ऐसे ही साथ साथ लेकर चल रहे हैं और एवरी टाइम वी हैव अ स्पेशल थॉट फॉर ईच ऑफ यू, स्पेशली जो लोग मेहनत से काम करते हैं वीकेंड के दौरान। तो चलिए आपको बो कुआज एंड टू ऑल दोज ड्राइविंग, जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं, जो बस ड्राइवर्स हैं, जो बस पैसेंजर्स हैं, जितने भी सारे लोग इस वक्त सफर में हैं और हमें सुन रहे हैं, हैव अ सेफ सेफ जर्नी विद RM2 रेडियो मस्ती एंड आई जस्ट होप दैट यू आर स्टेइंग म्यूजिकल। एंड सैटरडे मॉर्निंग है तो बिल्कुल आपको म्यूजिकल भी रहना है और पॉजिटिव भी। सो चलिए इट्स योर टाइमलेस तड़का जहां पर दिव्या का साथ है टिल 11 AM।
1: टाइमलेस तड़का RM2 टाइमलेस तड़का।

0: Shameless Tadka. Fashion tips powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Timeless Tadka.
1: RM2.
2: चलिए के लिए एज यूजुअल हर सैटरडे की तरह एक फैशन टिप्स लेकर आए हैं ज़रूर आप लोगों के लिए, और अभी हम बात करेंगे उन मिस्टेक्स के बारे में जो आपको बिल्कुल अवॉइड करना है. सो कभी कभी हम क्या करते हैं, हम फैशन तो कर लेते हैं लेकिन वी डोंट रियलाइज़ कि इसमें शायद कुछ गलती बची हुई है. तो आप ये गलती ना करें इसलिए आपको कुछ टिप्स दे रहे हैं. कभी भी आपने डिसाइड किया कुर्ती डालने के लिए विद जीन्स, तो इसको आपको एक वाइड जीन्स के साथ पेयर अप करना चाहिए या फिर एक प्लाजो के साथ और स्ट्रेट पैंट्स के साथ. यू डोंट नीड टू पेयर इट अप विद स्किनी जीन्स, इसका ट्रेंड आजकल नहीं चल रहा है. तो कभी भी आपने कुर्ती डाली है तो इसको आप प्लाजो के साथ या फिर वाइड जीन्स के साथ इसको पेयर अप कीजिएगा. कभी भी आपने कोई ओवरसाइज्ड टी शर्ट या फिर आउटफिट डाला होगा तो इसको कभी भी आप नीचे ओवरसाइज्ड वाइड लेग जीन्स डोंट पुट दैट. आपको डालना है एक बैलेंस लूज विद फिटेड. यहाँ पर ज़रूर आपको थोड़ा सा स्किनी पैंट्स चाहिए विद लूज शर्ट. और कभी भी अगर आपने साड़ी डाली है या फिर आप शादियों में जा रहे हैं तो आपको ओवर एक्सेसराइज करने की ज़रूरत नहीं है. बस एक स्टेटमेंट झुमका या फिर एक स्टेटमेंट चोकर डाल दीजिए, इट वर्क्स वंडर्स और बहुत ही क्लासी भी लगता है. और आजकल लो राइज जीन्स का फैशन नहीं ला रहा बल्कि हाई वेस्टेड एंड वाइड लेग जीन्स का ज़माना है आजकल. तो कभी भी आप कहीं पर जा रही हैं कैजुअल या फिर फॉर्मल, आप हाई वेस्टेड वाइड लेग जीन्स को ही चूज़ कीजिएगा. सो चलिए यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट यू नीड टू बिल्ड योर सिग्नेचर स्टाइल. और कभी भी अगर आपने शॉर्ट्स डाला है तो शॉर्ट्स के साथ आपको एक बाले फ्लैट या फिर एक सैंडल पेयरअप करना चाहिए, ना कि शॉर्ट्स में आप हैवी बूट्स डालें क्योंकि इसका ट्रेंड भी आजकल चला गया है. तो जितना आप सिंपल रहेंगे उतना ही आपका स्टाइल स्टेटमेंट खिलके आएगा. एंड हमेशा आपको यही याद रखना है कि लेस इज़ मोर एरा चल रहा है, तो जितना ही आप कम डालेंगे उतना ही ज़्यादा लगता है. सो आई जस्ट होप कि आप अपने स्टेटमेंट स्टाइल को या फिर अपने सिग्नेचर स्टाइल को बिल्डअप कर पाएंगे. इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे एंड मेक श्योर दैट यू डू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक नेक्स्ट टाइम.
0: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments. Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka.

0: Timeless Tadka.
1: RM2.
0: Timeless Tadka. चलिए 10:55 हो चुके हैं और इसी के साथ इट्स अ टाइम फॉर मी टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू. हमारे बाद नीलमणि ऑल सेट है आपको एंटरटेन करने के लिए. तब तक के लिए दिव्या को दीजिए इजाजत. हमारी और आपकी मुलाकात होने वाली है फॉर योर मंडे इवनिंग, जहां पर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए

0: जो सुनते हैं संक्षिप्त समाचार, आपसे तीना नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरिशस में पानी के भंडार को लेकर स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। वाटर रिसोर्सेज कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार 2 अक्टूबर को माहोवाका जलाशय में पानी का स्तर घटकर 36.6% रह गया। पानी के भंडार में लगातार हो रही कमी और मौसम की सूखा रहने के अनुमान को देखते हुए मंत्रिमंडल ने पानी की स्थिति पर एक क्राइसिस कमेटी बनाए जाने की जानकारी दी। इस कमेटी की अध्यक्षता ऊर्जा मंत्री करेंगे। इसका काम उपलब्ध पानी के संसाधनों के बेहतर प्रबंधन के लिए जरूरी और तत्काल कदमों पर विचार करना होगा। फिलहाल पानी पर लागू मौजूदा पाबंदियां जारी रहेंगी। हालात बिगड़ने पर इन पाबंदियों को और सख्त किया जा सकता है। अधिकारियों ने लोगों से पानी का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील

0: की है क्योंकि पानी के भंडार लगातार घट रहे हैं और मौसम भी अनुकूल नहीं रहने का अनुमान है। मॉरिशस में सितंबर से कंसेंट्रिक की गतिविधियां बंद होने के मामले में अब समाधान निकल आया है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग क्षेत्र में काम करने वाली इस कंपनी के करीब 300 कर्मचारियों को हर साल की सेवा के बदले 2 महीने का वेतन, साथ ही नोटिस के तौर पर 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। ये प्रस्ताव कल श्रम मंत्री की देखरेख में कंसेंट्रिक्स की कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई दूसरी सुलह और मध्यस्थता बैठक के बाद सामने आया। श्रम मंत्री रिजा उद्दीम ने कहा कि सस्ते श्रम के कारण मॉरिशस की तुलना में मडागास्कर ज्यादा आकर्षक बन रहा है। मॉरिशस के लोग अब दक्षिण अफ्रीका में बिना वीजा के 90 दिनों तक रह सकते हैं, जबकि पहले ये अवधि 30 दिन थी। ये नया फैसला तुरंत लागू हो गया है और इससे दोनों देशों के बीच यात्रा करना और आसान होने की उम्मीद है। ये फैसला पिछले कुछ महीनों से मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों के बीच चल रही कूटनीतिक बातचीत के बाद लिया गया है। प्रिटोरिया में मॉरिशस के राजदूत मिहाई मौतन ने इसकी जानकारी दी। सिडनाक पुलिस स्टेशन में यौन संबंध के आरोप डीपीपी ने 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। सिडनाक पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखी गई लीजा लिली रोमन से जुड़े मामले में डीपीपी ने एक कांस्टेबल और उसकी निगरानी के लिए तैनात महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की सिफारिश की है। ये सिफारिश पुलिस की ओर से पेश की गई अंतरिम रिपोर्ट के बाद की गई है। कांस्टेबल पर ड्रग्स तस्करी के कथित मामले में हिरासत में ली गई महिला के साथ यौन संबंध बनाने का आरोप है और महिला पुलिसकर्मी की जिम्मेदारी हिरासत में ली गई महिला की निगरानी करना था, जिसे सुदनाग पुलिस स्टेशन की सेल में रहना था। विदेश में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से उत्तर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शनिवार की सुबह न्यूकासल नाइट्स टीम के इलाके में रग्बी फैंस की भारी भीड़ के बीच एक कार के घुस जाने से 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई प्रेस के मुताबिक पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। नारद रोड पथियाफ्रेमी 89 साल के 99 साल के श्री चंदोदत्त गुहाऊ जो चंदर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री कृष्णा गुहाऊ के घर नारद रोड पथियाफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पथियाफ्रे की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। रॉय रोड पोंपालमी 86 साल की 86 साल की मिसिस बीबी फातमुन बिहारी पैदाशी नाम पांचू और जो फातमुन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, का इंतकाल हो गया है। उनका जनाजा आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके बेटे जनाब रियाज अली बिहारी के मकान रॉय रोड पोंपालम से निकाल कर सबसे पहले नमाज जनाजे के लिए पोंपालम की मस्जिद ले जाया जाएगा और दफनाने के लिए बुआमौशां के कब्रस्तान। फ्यूनरल टुडे 9:30। रॉय रोड मेलरोज में 86 साल की 86 साल की श्रीमती रमावती मोती पैदाइश नाम गुदौर जो मामा आदिप नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री आदिप मोती के घर रॉय रोड मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोंटा ब्लांश की श्मशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। बुदाई लेन लिस्काली में 72 साल के 72 साल के श्री नमेसर सिंह रामफल जो मामू नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके घर बुदाई लेन लिस्काली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिस्काली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 3 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: On NBC Play and NBC.mu.
2: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: हमारी ब्रांच
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: गहरा हुआ रंग आशिकी। हेलो गुड मॉर्निंग नमस्ते। 11:11 हुए हैं मेक विश और अब वक्त है ब्रंच का सफर है। लेकिन ऑर्डिनरी वाला ब्रंच नहीं, बॉली ब्रंच। इस नलमिनी और अगले 3 घंटे होंगे फुल बॉलीवुड, फुल मस्ती और फुल फिल्मी वाइब्स के साथ। एंड आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग है, आपको जल्दी बताने वाले हैं उनके बारे में। अभी के लिए बैक टू द गुड म्यूजिक दैट्स हैपनिंग राइट नाउ आपके ही RM2 रेडियो मस्ती पर।
0: Body Branch
1: RM2 Radio Masti.

0: Brunch RM2 Radio Masti.
1: And yes, Bolly Brunch में निर्मली कह रही थी आज का दिन इंटरेस्टिंग है, उसका कारण wait बताती हूँ. Well, आज है वर्ल्ड कार्ड मेकिंग डे, मतलब वो हैंड रिटन कार्ड्स, छोटी छोटी मैसेजेस और दिल से लिखी हुई फीलिंग्स जो व्हाट्सएप के हे और हार्ट इमोजी से थोड़ी ज्यादा स्पेशल होती है. एंड अपेरेंटली आज है बॉयफ्रेंड डे जो बहुत से लोग मना रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड्स आज बॉयफ्रेंड को कार्ड मिल रहा है या बस एक हैप्पी बॉयफ्रेंड डे का व्हाट्सएप मैसेज. अगर हाँ, देन यू डूइंग इट रॉन्ग. ऐसे बहुत सारे आइडियाज हैं जो आपको दे सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको रहना है कनेक्टेड. कहाँ? अरे RM2 रेडियो मस्ती पर ही.
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: बल ब्रंच के सफर में अभी बॉयफ्रेंड डे गिफ्ट टिप्स हाजिर हैं। एंड यस, अगर बस व्हाट्सएप मैसेज से विश करने की सोच रहे थे आप, वेल आई हैव सम टिप्स जो कि काम आ सकता है। एंड पहला वाला है हैंडमेड कार्ड। जैसे कि हमने बताया था, आज है वर्ल्ड कार्ड मेकिंग डे, तो अपने हाथों से एक छोटा सा नोट लिखो, सिंपल लेकिन पर्सनल। दूसरा टिप है, या फिर आप रेडियो पर डेडिकेट कर सकते हो उनके लिए मैसेज या एक स्पेशल सा गाना 5491294 पर। एंड तीसरा टिप है, उसके प्लेलिस्ट से कुछ गाने आपको चुराने हैं और आपको स्टोरी पर डालना है एक फोटो, बोथ ऑफ यू जो साथ में है और उसका फेवरेट गाना जो कि उसे रिमाइंड करवाता है स्पेशल मोमेंट्स का। तो अभी चलिए रोमांटिक गाना हो जाए टू ऑल दोस सेलिब्रेटिंग द बॉयफ्रेंड डे।
0: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Body Brunch RM2 Radio Masti.
1: And yes, good vibes ongoing है अभी Body Brunch में with Nilmani. कुछ देर में होने वाला है संक्षिप्त समाचार, तो साथ देते रहिए RM2 Radio Masti पर ही.

0: दिन के 12 बजे है। चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे तीना। नमस्कार।
1: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। कैबिनेट ने नोट किया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के काम को नई गति देने और सरकार द्वारा घोषित उपायों को तेजी से लागू करने के लिए इसके बोर्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस पुनर्गठन में अन्य लोगों के साथ जी क्वांग जिलबेशु को पार्ट टाइम चेयरपर्सन बनाया गया है। पासुहामन चिलन, जिन्हें जयन चेलम के नाम से भी जाना जाता है, उनको उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और वीरेंद्र मुसाई को स्वतंत्र सदस्य यानी इंडिपेंडेंट मेंबर बनाया गया है। कैबिनेट ने रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट ऑफ शेड्यूल नंबर 3 रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत ऐसे ट्रैफिक अपराधों के फिक्स पेनाल्टीज अब ऑनलाइन भरे जा सकेंगे जिनमें पेनाल्टी पॉइंट्स नहीं लगते। 30 अक्टूबर 2026 से जनता सुप्रीम कोर्ट पोर्टल के जरिए ट्रैफिक जुर्माने का ऑनलाइन भुगतान कर सकेगी। इसके लिए लोग अपने मोपास अकाउंट से अपनी पहचान की पुष्टि करेंगे और फिक्स पेनाल्टी नोटिस यानी FPN नंबर तथा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करेंगे। भुगतान मोपास QR कोड के जरिए जूस या पॉप जैसे या पेमेंट एप्लीकेशन से किया जा सकेगा। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से भी भुगतान किया जा सकेगा। बैंक ऑफ मॉरिशस ने देश में नकली नोटों के चलन को लेकर चेतावनी दी है, लेकिन असली और नकली नोट की पहचान कैसे करें? नोट पर बने सुरक्षा चिन्ह, उभरे हुए निशान, नोट को झुकाने पर दिखने वाले बदलाव

0: और यूवी लाइट में नजर आने वाले खास निशानों से इसकी पहचान की जा सकती है। बैंक ऑफ मॉरिशस ने लोगों से नोट लेते या इस्तेमाल करते समय ज़्यादा सावधानी बरतने की अपील की है। पहली जुलाई 2025 से 31 जुलाई 2026 के बीच ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन के पास कुल 363 शिकायतें दर्ज की गई। इनमें से 167 मामले स्कूल से जुड़े थे, 63 परिवार से और 11 ऐसे बच्चों से जुड़े थे जिन्हें विशेष ज़रूरतें यानी स्पेशल नीड्स है या जो डिसेबिलिटी के साथ रह रहे हैं। इस दौरान जांच टीम ने 20 फील्ड विजिट्स भी किए। आंकड़े ओम्बुड्समैन फॉर चिल्ड्रन की 2025-2026 वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं जिसे कल पोर्ट वीक के कोडा आर्ट सेंटर में पेश किया गया। और विदेश में फ्लाई दुबई में हुई घटना ने इसराइल की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चैनल 12 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली अधिकारियों से कड़े सवाल पूछे जा रहे हैं कि ओमानी पायलट तेल अवीव कैसे आ पाए। इसराइल की एयरलाइंस में उन देशों के पायलटों पर रोक है जिनके इसराइल के साथ राजनयिक संबंध नहीं है, तो फिर आखिर फ्लाई दुबई फ्लाइट में ओमान का पायलट कैसे आ पाया। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। नारद रोड पर चिरा फ्रेमी 89 साल के 89 years old के श्री चंदोदत्त गुहाऊ जो चंदर नाम से ज़्यादा जाने जाते थे कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री कृष्णा गुहाऊ के घर नारद रोड पर चिराफे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पर चिराफे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। रॉयल रोड मेलरोज में 86 साल की 86 years old की श्रीमती रमावती मूर्ति पैदाइशी नाम गुदो जो मामा आदिप नाम से ज़्यादा जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे श्री आदिप मूर्ति के घर रॉयल रोड मेलरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मोहनताब लॉन्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
2: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Bali Brunch RM2 Radio Masti.
1: And we're back Bali Brunch ke is beautiful safar mein jahan par music bhi hai masti bhi hai 2 baje tak namani ke saath and agar aap yahi par rahenge connected to aapke liye sundar sundar gaane chalayenge zarur beautiful songs that you Express your love. So, अगर आपके पास है कोई dedication 549912294 पर do send us your messages, dedications और कौन से गाने चलाने वाले हैं आप अपने loved ones के लिए let us know.
0: Bali Brunch RM2 Radio Masti.

0: मॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: दूरी से ही जाए ना, लेकिन दिल में वो तो पास में ही है। बीएफ हो पास या लॉन्ग डिस्टेंस, से क्यूट सा मैसेज तो बनता है आज। और अगर आपके बॉयफ्रेंड को आज कोई गिफ्ट मिला है, हमारे साथ भी शेयर करो कि क्या मिला है। फ्लावर्स, चॉकलेट, परफ्यूम, ज्वेलरी या फिर वो क्लासिक आई लव यू वाला मैसेज। और जो कुछ भी आपको मिला है व्हाट्सअप करके शेयर करो यार, मैं भी तो देखूँ कि आज की गर्लफ्रेंड्स ने कितनी एफर्ट्स किए हैं। व्हाट्सअप मैसेज के जरिए रोशनी जी का मैसेज है, रिक्वेस्टिंग गाना रात भर अपने लव्ड वंस के लिए। अरे ये गाना तो पहले से ही प्लेलिस्ट में था, तो चलिए दिस वंस फॉर यू एंड टू ऑल दोस जो साथ दे रहे हैं ऑन दिस ब्यूटीफुल सैटरडे आफ्टरनून।
0: बॉडी ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: RM2
1: रेडियो मस्ती
0: भविष्य खातिर हमनी लगे हरमेशा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तोहरा तोहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर को से ये करी। आर जब रिटायर होए के बखत आए त सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पड़ाव के नवा सांस दे। तोहर भविष्य तोहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाही। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाय ह। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
2: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
1: रेडियो मस्ती।

0: ओली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: वैसे आतिफ असलम की आवाज में वो मैजिक है ना, जो बस गाना नहीं सुनाते, सीधा किसी और ही दुनिया में टेलीपोर्ट कर देती है। एक सेकंड में मूड बदल जाता है, यादें फ्रेश हो जाती है और दिल कहता है बस थोड़ा और सुना दो यार, ले जा तू मुझे, ऐसा ही खूबसूरत गाना। तो चलिए, और भी अमेजिंग गाने ऑन द वे है आपके लिए, आप बस से जुड़े रहिए RM2 रेडियो मस्ती के साथ में ही।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: सी टीवी, रंगीन प्रोग्रामों का खजाना।
1: वो बिल्डिंग अच्छी लग रही है, फ्लैट है उसमें?
2: एक फ्लैट है उसमें। वो क्या है साहब, यहाँ रहने वाली एक औरत बालकनी से गिर के मर गई थी।
3: मंजीत का भूत, मैं उसकी आवाज़ पहचानती हूँ।
4: मौत हमें उस

0: विशाल अंधेरे में ले जाती है जो हमारे चारों तरफ छाया हुआ है और हम अपनी जिंदगी की छोटी सी रोशनी में रहकर उसकी हकीकत को भूल जाते हैं।
1: हजारों नरकों में
2: शनिवार 3 अक्टूबर को NBC 3 पर रात के 9 बजे हिंदी फीचर फिल्म भूत 2003 की मूवी उर्मिला मातोंडकर और अजय देवगन पर फिल्म आई गई भूत।
3: भूत है यहाँ।
4: RM2
5: Radio Masti

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: हाय दिल थाम के बैठे हैं, कहीं आना जाना भूल गए हैं। कुछ गाने ना बस ऐसे ही होते हैं, सुनते ही लगता है कि वक्त थोड़ा सा रुक जाए तो और भी अच्छा हो जाता। ना कोई जल्दी ना कोई फिक्र, बस इसी सुकून के साथ कुछ पल और गुजार ले। तो अगर आप अभी इस वक्त कहीं खो गए हैं तो कहीं मत जाइए, बॉली ब्रंच के साथ ही बस कुछ पल और इसी सुकून में रहने दीजिए। आपके लिए बॉली ब्रंच हाजिर है, ना आपके मैसेजेस का भी इंतजार है 5499194 पर।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: प्रोग्राम्स की झलकियाँ।
1: अब हराम की तो सभी खाते हैं सेठ।
2: मन्नू
1: पहचान लिया ना, तुम्हारा पुराना साथी मन्नू। तू या मैं, तो तू मुझे जेल भेज कर मेरे पैसों से, हराम से।

0: यहाँ टीवी देख रहा है।
1: रविवार 4 अक्टूबर को NBC 3 पर दिन के 12 बजे हिंदी फीचर फिल्म ड्यूप्लीकेट डबल रोल का मजा, शाहरुख खान और जूही चावला पर फिल्माई गई हिंदी फीचर फिल्म ड्यूप्लीकेट।

0: And yes, c'est vrai, hein? Tu l'as senti, c'est un petit samachar, c'est Sumaira. Namaskar.
1: Namaskar, Radab. Association des consommateurs de l'île Maurice, Asim Sarkar, se mang karta hai ki wo petroli paidawaron ki qeematon ko 2 rupaye se ghatae. Kal Bali Village mein ek press sammelan ke dauran sangathan ke mahasachiv Jayant Chilam ne prati liter petrol aur diesel ke damon par lage tax par jankariyan di. Unka kehna hai ki chawal, आटा और घरेलू गैस तथा बस सब्सिडी के लिए जो टैक्स हैं वो जायज हैं लेकिन 2 रुपए का टैक्स सरकार की आमदनी में चला जाता है जो अच्छा नहीं है जिससे उसे इतना बड़ा फर्क नहीं होता है ये ईंधन के कुल 15% टैक्स में सिर्फ 0.69% हैं कल कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की प्रशासनिक परिषद का पुनर्गठन किया जाए जिलबिया शूप और टाइम अध्यक्ष की हैसियत से नामजद हुए हैं और जयंत चिलम उपभोक्ताओं के फायदों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के तौर पर बोर्ड मेंबर होंगे जबकि वीरेंद्र मूसा ये आजाद सदस्य के रूप में इस टीम का हिस्सा बने हैं जून में एक पहले चरण के बाद अब माइटी लर्न ने एक नया मरहला शुरू किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर शैक्षिक प्लेटफॉर्म का एक बेहतर वर्जन मुहैया कराया गया है 12 कॉलेजों में ग्रेड 9 के करीब 1200 तलबा यानी छात्र इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे विदेश में कीव यूक्रेन में रूस ने एक बड़े पुल पर हमला किया ये सबसे गंभीर मूलढांचा हमलों में से एक है आज सुबह सवेरे इस घटना के कारण पुल पर बहुत ट्रैफिक पैदा हो गया शहर के मेयर ने कहा कि इन हमलों से कीव नष्ट होता जा रहा है तो अभी के लिए बस इतना ही शोक समाचार सुनिए Quand le vieux Okule mi 74 saal ki 74 years old, Shri Lakshmi Etwarowa, Shri Lakshmi Etwarowa, jo dup ke naam se zyada jane jate the ki mrityu ho gayi hain, arthi, aaj 3 baje inke ghar, Quand le vieux Okule se utha kar antim sanskar ke liye bhi kaha ki shamshan bhumi le jai jayegi, cremation today at 3 pm. Shok mein dube is parivar se hame hamdardi hain.
2: On NBC Play and NBC.mu.
3: Body Brunch RM2 Radio Masti.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।
1: 1:08 हुए हैं, तीसरे और आखिरी आओ में हमने ले लिया है एंट्री। गुड आफ्टरनून नेस नमनी, और 2 बजे तक आज यू नो बॉली ब्रंच का सफर जारी है। एंड आपके लिए आज स्पेशल दिन भी है, क्योंकि आपके मैसेजेस डेडिकेशंस को जल्द ही पढ़ने वाले हैं हम 5499124 पर। फॉर नाउ वो गुड म्यूजिक को जारी रखते हैं आपके ही RM2 रेडियो मस्ती पर।
0: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती।

0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: चलिए बॉली ब्रांच में थोड़ी बॉलीवुड बातें भी कर लेते हैं। वैसे बॉलीवुड में एक टैलेंट सबके पास होना चाहिए, एविडेंस हाइड करने का नहीं, अपने एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को भूलने का है। और दृश्यम द कंक्लूजन की बात करें तो भाई ये ओपनिंग बिल्कुल फिल्मी अंदाज में हुआ है। फिल्म ने D1 पर इंडिया में 66.75 करोड़ रुपए नेट कलेक्ट किए हैं और वर्ल्ड वाइड ओपनिंग डे कलेक्शन रिपोर्टेडली 95.10 करोड़ रुपए का है। अब उसी सवाल आपके लिए, आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में आप बस कहना चाहते हो ढोक ढोक को कुछ हुआ ही नहीं था, कोई एम्बरेसिंग मोमेंट, कोई राज, कोई ऐसी स्टोरी जिसका एविडेंस आपने पहले से ही डिलीट कर दिया है? व्हाट्सएप करो, नाम छुपा लेंगे हम, कहानी नहीं। तो चलिए इसी मूवी का एक गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू।
0: बॉली ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: Welcome to Radio Musti. भविष्य खातिर हमनी लगे हर मेसा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तोहरा तोहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर को से ये करी। आर जब रिटायर हुए के बखत आए त सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पड़ाव के नवा सांस दे। तोहर भविष्य तोहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाही। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जय हा। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: ही आंखों में बातों ही बातों में तूने चुराया जिया।
1: जान तुम्हें तो लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कोई वैल्यू ही नहीं। 3 साल से इंपोर्टेड कार्स का बिजनेस कर रहा हूँ, कुछ तो वैल्यू मेरी भी होगी नहीं?
2: अब तुम कहोगे तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाओगे, ऊंचे से ऊंचे पहाड़ कूद जाओगे, यहाँ तक कि मेरे लिए अपनी जान भी दोगे।

0: Holly Branch,
1: RM2, Radio Mastee.
2: And that's that was a boyfriend special mashup. क्योंकि आज का दिन तो dedicated है आप सभी लोगों के नाम इस Saturday afternoon में I'm sure. अभी हमारे कुछ listeners काम के बाद finally आराम से lunch करने बैठे होंगे. कुछ लोग घर पर हैं, किचन में कुछ special cook कर रहे हैं. कहीं पर बिरयानी की खुशबू आ रही है तो कहीं पर पुलाव और कहीं पर मम्मी या दादी का special weekend वाला खाना. और जो लोग अभी भी किचन में busy है आपको भी सलूट यार, क्योंकि सैटरडे का लंच बनाना किसी बॉलीवुड एक्शन सीन से कम नहीं है. तो जो भी आपकी प्लेट में है एंजॉय कीजिए, टेक इट स्लो और वीकेंड को थोड़ा फील भी कीजिए. बॉन अपेटी टू यू.
0: बॉली ब्रंच,
1: आरएम2, रेडियो मस्ती.

सैटरडे को अगर मस्त बनाना है तो वाइब करना पड़ेगा. खाना हो, घर की सफाई हो, कुकिंग हो या बस सोफा पे आराम, बैकग्राउंड में एकदम परफेक्ट बॉलीवुड गाना होना चाहिए. तो चलिए वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, मूड को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं और गाते हैं साथ में.

0: चले इसी गाने के साथ सच्चाई में चला है फॉर मी एंड मैंने से बाय एंड फॉर परी टू कम इन एंड से हाय. अब वो आ चुकी है स्टूडियो में और आपके साथ वो रहने वाली है पॉली प्लग एंड प्ले शो में. सो यहीं पर रहना आप कनेक्टेड. हैव अ ग्रेट सैटरडे अहेड.
1: बॉली ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.

0: टाइम चेक एग्जैक्टली 2 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गए हैं सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
1: नमस्कार और आदाब. जून में एक पहले चरण के बाद अब माइटी लर्न ने एक नया मरहला शुरू किया. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर शैक्षिक प्लेटफॉर्म का एक बेहतर वर्जन मुहैया कराया गया. 12 कॉलेजों में ग्रेड 9 के करीब 1200 तलबा यानी छात्र इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे. एसोसिएशन दे कंसोमेटर दे लिल मोरिस असीम सरकार से मांग करता है कि वो पिट्रोली पैदावारों की कीमतों को 2 रुपए से घटाए. कल बेल विलेज में एक प्रेस सम्मेलन के दौरान संगठन के महासचिव जयंत चिरम ने प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगे टैक्स पर जानकारियां दी. उनका कहना है कि चावल आटा और घरेलू गैस तथा बस सब्सिडी के लिए जो टैक्स हैं वो जायज हैं, लेकिन 2 रुपए का टैक्स सरकार की आमदनी में चला जाता है जिससे उसे इतना बड़ा फर्क नहीं होगा. ये ईंधन के कुल 15% टैक्स में सिर्फ 0.69% है, इसलिए इन्हें इसे घटाना मुनासिब है. कल कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन की प्रशासनिक परिषद का पुनर्गठन किया जाए. जिलबिया शू पार्ट टाइम अध्यक्ष की हैसियत से नामजद हुए हैं और जैन चिरम उपभोक्ताओं के फायदों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के तौर पर, जबकि वीरेंद्र मुसाई आजाद मेंबर के रूप में इस टीम का हिस्सा बने हैं. विदेश में कीव यूक्रेन में रूस ने एक बड़े पुल पर हमला किया. ये सबसे गंभीर मूल ढांचा हमलों में से एक है. आज सुबह सवेरे इस घटना की वजह से पुल पर बहुत ट्रैफिक पैदा हो गई. शहर के मेयर ने कहा कि इन हमलों से कीव नष्ट होता जा रहा है. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. रामकिशन लेन जेबिया रोड रोजबेल में 77 साल की 77 years old श्रीमती सांता कुमारी जिलोल, श्रीमती सांता कुमारी जिलोल जो तारा के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई है. अर्थी कल सुबह 10 बजे की बेटी सुबह रोशनी के घर रामकिशन लेन जेबिया रोड रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 10 AM. श्री मेलागौ नोत्रदाम में 38 साल के 38 years old श्री बिनेश कुमार बसावन, श्री बिनेश कुमार बसावन जो बेंजोले के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे इनकी माँ बिदेसी माला के घर श्री मेलागौ नोत्रदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की शमशान भूमि ली जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 9 AM. रॉयल रोड पिटी राफ्रे में 84 साल की 84 years old श्रीमती सत्यावती बंधु पैदाइशी नाम बहन जो सत्यावती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे इनके घर रॉयल रोड पिटी राफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिटी राफ्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो 1 PM. कौन लिव्यू ओकुले में 74 साल के 74 years old श्री लक्ष्मी एतवा रोवा जो दुख के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं. अर्थी आज सुपहर तीन बजे इनके घर कौन लिव्यू ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बीकावा की शमशान भूमि ले

0: लगाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 3 पीएम शोक में दुबे परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: योर न्यूज़ ऑन एमबीसी प्ले एंड mbc.mu
2: Plug and play.
3: RM2.
2: Plug and play.

0: Plug and Play
1: RM2।
2: और जी हाँ दोस्तों, इश्क की ये बारिश लेकर हम तो आपके पास आ ही गए हैं आपका साथ निभाने ऑन RM2 रेडियो मस्ती। अभी के लिए 2:08 एंड आई डू होप यू एंजॉयिंग योर वीकेंड। आपका ये वंडरफुल सा सैटरडे जो लेकर आया है बहुत सारी खुशियां। सो मैं हूँ फिर आपके साथ, इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले। अभी से लेकर दिन के 4 बजे तक कुछ ऐसे गाने जो आपके मूड को सेट रखेंगे। आज मौसम नॉट दैट ऑसम, लेकिन स्टिल इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल टाइम जहाँ पर आप जो भी

0: के प्लान्स हैं उन्हें आज पूरा तो कर सकते हैं और जो भी आराम के पल आपको मिले हैं उन्हें आप खास एंड स्पेशल बना सकते हैं। सो यहाँ पर हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे गाने जिन्हें सुनते हुए आप अपना वीकेंड ऑफ फील ले सके और जो भी है आपके प्लान्स, नॉट टू फॉरगेट हम तो आपके साथ हैं। मॉरिशस में तो हम जानते हैं हर जगह डिफरेंट मौसम रहता है और अभी इस वक्त यहाँ मोका में थोड़ा सा क्लाउडी वेदर, हल्की हल्की रिमझिम बारिश। और आपके वहाँ मौसम का क्या हाल, आप अपनी अपडेट्स हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं। इंतजार रहेगा 5499-1294 पर फॉर योर मैसेजेस, फॉर योर डेडिकेशन। अभी के लिए इट्स योर प्लग एंड प्ले टिल 4 PM। मैं हूँ परी आपके साथ।
1: RM2 Radio Musti. Feel the Musti.

0: 92
1: रेडियो मस्ती।
0: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
2: RM2
1: Radio Musti.

0: plug and play.
1: RM2.
2: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 2:17 हो चुके हैं एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल सॉन्ग सोनू निगम अलिशा चिनॉय की आवाजों में ये गाना था आप सभी के लिए जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं। सैटरडे आफ्टरनून और आफ्टरनून टाइम में हम आपके लिए ये वीकेंड के रंग लेकर आए हैं जिन्हें आप एंजॉय कर पा रहे हैं। वीक की भागदौड़ से थोड़ा सा साइड हटकर शोल्डर्स थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए बस इस आफ्टरनून को आपको एंजॉय करना है। आज का मूड तो काफी सिंपल है दोस्तों, अच्छे गाने, हल्का सा सुकून और वीकेंड वाली फीलिंग। कहते हैं ना दोस्तों कि खुश रहने के लिए बस छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है और छोटी बातें जो जिंदगी को सिंपल तो रखती है लेकिन लाइफ को और भी ब्यूटीफुल बनाती है। तो बस ऐसे ही पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद जब वीकेंड आता है तो वही हैप्पी वाली फीलिंग लेकर आता है। अभी के लिए यहाँ पर विजया जी हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं दैट उनके वहाँ मौसम थोड़ा सा सनी एंड थोड़ा सा रेनी और इस मिक्स्ड वेदर को आप भी एंजॉय कर रही हैं। सुबह विजया जी, अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम। थैंक यू फॉर द मैसेज एंड थैंक यू साथ देने के लिए। सुनीता जी हमारा साथ दे रही हैं आप भी और कहती हैं एंजॉइंग द सॉन्ग्स, एंजॉइंग अ वीकेंड। आज शाम को परिवार घर पर आ रहा है सो यू आर मेकिंग समथिंग स्पेशल उनके लिए, किचन में है एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो मस्ती। थैंक यू जी, आप हमारा साथ दे रही हैं और आई एम श्योर के फैमिली के साथ यू आर गोइंग टू एंजॉय योर इवनिंग। सो बनाएंगे उसे खास क्योंकि शाम हो या सवेरा हम तो आपके लिए गाने चलाते रहते हैं ऑन रेडियो मस्ती। यहाँ पर अश्विन जी अभी हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं इट्स ब्यूटीफुल सैटरडे और आज के सैटरडे में आपका प्लान है दोस्तों के साथ घूमने फिरने का। अभी इस वक्त आप गाड़ी में हैं, गानों को एंजॉय कर रहे हैं एंड जा रहे हैं सी साइड, सो हैव अ वंडरफुल टाइम। सभी दोस्त जो इस वक्त गाड़ी में, हेलो, आपके लिए होगा अगला गाना। फॉर एवरीवन हु इज कनेक्टेड आरएम टू रेडियो मस्ती के साथ, दिस वन गोज आउट फॉर यू। चलिए दोस्तों, खूबसूरत गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं और आप तो जानते हैं आपको क्या करना है। यस, आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, योर दिल का हाल ऑन 5499-1294। परी का साथ है दिन के 4 बजे तक, कनेक्टेड है आप हमारे साथ राइट हियर ऑन
0: आरएम2 रेडियो मस्ती।

0: टू रेडियो मस्ती। भविष्य खातिर हमनी लगे हरमेशा कोनो न कोनो योजना रहेला। लैका के पढ़ाई, एगो वायाज, घर के रेनोवेशन, यानी एगो पूरा जीवन जिए के। सिकुम अपन प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट प्लान्स के माध्यम से तोहरा तोहर आर्थिक भविष्य के विस्तार पर कोसे ये करी। आर जब रिटायर हुए के बखत आए तब सिकुम के निजी पेंशन योजना से सकबा जीवन के ई नवा पड़ाव के नवा सांस दे। तोहर भविष्य तोहर आज पर निर्भर करेला, इनकरा आज ही से तैयार करे के चाहे। जस्ती जानकारी खातिर हमनी के प्रतिनिधि से संपर्क कर या sikkim.mu पर जाय। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकुम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
1: सिकुम ग्रुप, ए लाइफ टाइम कमिटमेंट।
0: RM2
2: रेडियो मस्ती।

0: plug and play.
1: RM2.
2: और जी हाँ दोस्तों, सैटरडे आफ्टरनून में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि सैटरडे आफ्टरनून्स का एक अलग ही मैजिक होता है, ना मंडेज की जल्दी ना वीकडे वाली कोई क्लॉक टिकिंग की टिक टिक, जहां पर आपको हर वक्त स्ट्रेस रहता है कि इस घड़ी आपको ये करना है, उस घड़ी आपको वो करना है। अभी के लिए तो आपको मिले हैं आराम के कुछ पल, और बस इन्हीं आराम के पलों को आपको एंजॉय करना है। वक्त भी आज आराम से बीत रहा है, सो डू मेक द मोस्ट ऑफ इट। और आज जो भी काम कल तक रुक सकता है तो उसे आप कल के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, बिकॉज इट्स वीकेंड। सो अपना ख्याल रखिए, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जो चीज़ आपको खुशी देती है, वो चीज़ें ज़रूर करें। बी इट वॉचिंग अ मूवी, या फिर बस घर पर रिलैक्स चिलैक्स करना, या फिर बाहर जाकर थोड़ा सा शॉपिंग एंजॉय करना। जो भी हो रहे हैं आपके प्लान्स मन में, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, उन्हें आज कंप्लीट कीजिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी को खुलकर जीना जरूरी होता है। लाइफ तो मिलती है एक बार, और इसे स्पेशल तो आपको बनाना ही है। सो वेल, अभी के लिए इट्स 2:31, कनेक्टेड हैं आप हमारे साथ ऑन RM2 रेडियो मस्ती। मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM। यहां पर तनुजा हमारा साथ दे रही हैं, आप लवली नेम तनुजा जी हमारे साथ कनेक्टेड हैं आप फ्रॉम काटरबोन, यू एंजॉयिंग द सॉन्ग्स, थैंक यू जी। जानकर अच्छा लगा था इस वक्त आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, सो गाना होगा आपके लिए। लक्ष्मी यहां पर आई हैं अपना स्वीट सा एक संदेशा लेकर, और कहती हैं गाना हो जाए फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ रेडियो मस्ती सुबह से लेकर शाम तक। एक चीज जो आप कभी नहीं मिस करती वो है रेडियो मस्ती के साथ कनेक्ट होना, इट्स रियली स्पेशल। सो थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, गॉट योर स्वीट स्वीट मैसेज, और पढ़कर हमें काफी अच्छा लगा। माधवी यहां पर आप भी हमारा साथ दे रही हैं, और कहती हैं कि आज प्यारी दोस्त वीना अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं, सो आज 3rd October इट्स हर बर्थडे, सो उन्हें विश करेंगे अ वेरी हैप्पी बर्थडे, उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज। साथ ही यहां पर रेनू जी कहती हैं गाना हो जाए फॉर पति रितेश, काम कर रहे हैं आज और उन्हें आप मिस कर रही हैं, लेकिन उनके लिए कुछ स्पेशल तैयार हो रहा है यू आर इन किचन, और उनकी फेवरेट रेसिपी आज आप तैयार कर रही हैं, सो आई गेस इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल वीकेंड आप दोनों के लिए। शाम को जब वो साथ आएंगे घर पर तो साथ में आप एंजॉय कर पाएंगे योर वंडरफुल डिनर, उनकी फेवरेट रेसिपी आज तैयार हो रही है। तो बस ऐसे ही स्वीट मैसेजेस आप हम तक पहुंचाते रहिए, बिकॉज आपकी जिंदगी की खुशियां जब हम तक पहुंचती है तो हमें दुगनी खुशी होती है। सो वंस अगेन विशिंग यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड, परी का साथ है ऑन RM2 रेडियो मस्ती।

0: Plug and play.
1: RM2.
2: तो चलिए यहाँ पर दोस्तों आप हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती और जैसे हमने कहा कि कुछ लेटेस्ट ट्रैक्स भी यहाँ पर शामिल होते हैं दैट्स योर प्लग एंड प्ले जहाँ पर आपकी सैटरडे आफ्टरनून को हम खास और स्पेशल बनाते हैं एंड वेल थोड़ी ही दिनों में वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट नवरात्रि और सेलिब्रेशंस तो शुरू हो ही जाती हैं जैसे हमने कहा द फेस्टिव सीजन अब धीरे धीरे यहाँ पर फेस्टिविटीज शुरू होंगी और आप तो हमारे साथ कनेक्टेड हैं जहाँ पर आपकी लाइफ के जो भी फेस्टिविटीज़ हों जो भी हैप्पीनेस हो उन्हें हमें शेयर करना काफ़ी अच्छा लगता है और कहते हैं ना कि खुशियाँ जब आप बांटते हैं तो खुशियाँ दुगनी हो जाती है सो यहाँ पर कोशिश यही है कि हैप्पी सॉन्ग्स के साथ आपके मूड को हम सेट रखें सो द नेक्स्ट वन इज़ द लेटेस्ट ट्रैक And that's a beautiful indie pop navratri aa rahi hai and we are all set to welcome hamari pyari si maa aur jab wo aati hai to lekar aati hai sabke liye bahut sari good wishes bahut sara pyar bahut sara aashirwad so the next one goes out for everyone jo hamara saath de rahe hain and specially is waqt sabhi panchal parivar hamara saath de rahe hain sabhi rajpati parivar hamare saath connected hai so the gaana hoga aapke naam we have yanita jo is waqt hamare saath judi hui hai यवनी है प्रीशा है और साथ ही साथ यहाँ पर सभी फैमिलीज एंड फ्रेंड्स जो इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड रहते हैं ऑन सैटरडे आफ्टरनून सो इट्स योर प्लग एंड प्ले गाना होगा आपके नाम विमल भाई आप भी हमारा साथ दे रहे हैं एंड मामा इज हियर यस आपकी मामी जी आई हैं सो आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू स्पेंड सम वंडरफुल टाइम जब नवरात्रि की बात हुई है तो चलिए यहाँ पर द नेक्स्ट वन गोज आउट फॉर यू इक्वली गोज आउट फॉर एवरीवन जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं सो हैव अ वंडरफुल टाइम RM2 रेडियो मस्ती के साथ
1: RM2
0: Radio Musty
1: Feel the Musty
0: Plug and play
1: RM2
0: Plug and play
2: So everyone, जिस वक्त हमारे साथ connected है बस कोशिश यही है कि

ओके, सो आई डू होप कि जो भी वो स्पेशल पर्सन है उन्हें ये गाना पसंद आए। लता जी आप भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सो गाना होगा आपके लिए और आपकी ओर से फॉर योर लवली डॉटर निर्मा जो है इन कनाडा, उन्हें आप मिस कर रही हैं। सो वेल सेंडिंग लोड्स ऑफ लव फ्रॉम मॉरिशस उनके लिए एंड फॉर ऑल द लिसनर्स ऑफ आरएम टू रेडियो मस्ती, दिस वन गोज आउट टू यू।

0: और चलिए दोस्तों, विद दिस ट्रैक टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन और इसी गाने के साथ हम बढ़ने वाले हैं आपके समाचारों की ओर। उसके बाद प्लग एंड प्ले कंटिन्यूज ऑन RM2 रेडियो मस्ती और आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस, आपके दिल का हाय 5499-1294 पर लेकर आएंगे इसे नेक्स्ट आवर में। अभी के लिए ये प्यारा सा गाना आप सभी के नाम, मैजिकल वॉइसेस ऑफ लता मंगेशकर एंड हरिहरन फ्रॉम द फिल्म लम्हे। और जैसे हमने कहा दोस्तों, हर लम्हे को खास बनाना जरूरी है। So live each and every moment, make it very special. It's weekend और उम्मीद करते हैं दादा ये weekend आपका अच्छे से बीत रहा है। अभी के लिए मैं हूं परी आपके साथ till 4 p.m. on RM2 Radio Masti. Enjoy this one.
1: सपना मेरा

0: टाइम चेक एग्जैक्टली 3 PM. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
1: नमस्कार और आदाब. आज प्रेस को संबोधित करते हुए मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट FMP के लीडर पॉल बेरांजे ने देश की आर्थिक स्थिति पर बात की, खासतौर पर जिंदगी की महंगाई को लेकर रुपए मुद्रा का घटता भाव और पेट्रोली पैदावारों की कीमतों पर. उन्होंने वर्तमान चुनौतियों पर भी बात की, जिनमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और नेशनल क्राइम एजेंसी का क्याम शामिल रहा. समुदाय में नौजवानों को कटिबद्ध नागरिक और राजदूत बनाना ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन प्रोग्राम के मकसदों में से एक है. प्रधानमंत्री दफ्तर की पहल पर ग्रेड 8 के 200 छात्र 2 हफ्तों के दौरान प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे. एक पहला सत्र आज सुबह रूपनाथ रामफल कालबास यानी Zone 1 में लगाया गया, जिसमें माता पिता ने भी भाग लिया. जून में एक पहले चरण के बाद अब माइटी लर्न ने एक नया मरहला शुरू किया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर शैक्षिक प्लेटफॉर्म का एक बेहतर वर्जन मुहैया कराया गया है. 12 कॉलेजों में ग्रेड 9 के करीब 1200 तलबा यानी छात्र इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे. विदेश में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि वे डीजल के निर्यात को रुकवाएंगे और इस फैसले के चलते G7 के नेताओं ने ऐलान किया है कि वे 100 मिलियन बैरल यानी डीजल के बैरल को जारी करेंगे, वो भी 20 दिनों के अंदर अंदर. इस कदम के जरिए निर्यात को ज़्यादा आसानी मिलेगी और विभिन्न आयातक देशों को भी राहत पहुंचेगी. तो अभी के लिए बस इतना ही. शोक समाचार सुनिए. सिबुरत लेन रोड नंबर 1 वाकवा में 71 साल की 71 years old श्रीमती देविका सिबुरत जो सुदेवी यानी एक्स मोशन जासो के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके घर सिबुरत लेन उलेहुद नंबर 1 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोमामेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. परमिशन टुमारो एट 11 AM. लिम्बियातू वाकवा में 75 साल के 75 years old श्री महादेव बापू जो बाबू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं. अर्थी कल साढ़े बारह बजे इनके घर लिम्बियातू वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फेरिनो की शमशान भूमि ले जाई जाएगी. क्रिमेशन टुमारो एट 12:30 PM. शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है.
2: On MBC Play and MBC.mu.
3: Plug and play.
4: RM2.
3: Plug and play.

एंड वेल फ्रेंड्स, भाग दौड़ भरी जिंदगी में मौका किसके पास है, टाइम किसके पास है कि खैरियत पूछ ले। लेकिन ये तो हम हमेशा कहते हैं कि भाई थोड़ा सा वक्त निकाल लिया कीजिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो आपका ख्याल रखते हैं, जो आपके बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब आप आगे चलकर देखेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे, तब लगेगा कि शायद सही वक्त इन्हीं को देना चाहिए था। वरना जिंदगी तो चलती रहती है और जिंदगी को हमें चलाना नहीं, हमें जिंदगी काटना नहीं बल्कि जिंदगी को जीना है। सो एंजॉय ईच एंड एवरी मोमेंट दोस्तों। इस आवो में आपका हम स्वागत कर रहे हैं। 3:08, मैं हूं परी आपके साथ। गुड म्यूजिक लेकर आए हैं ऑन RM2 रेडियो मस्ती, एंड आई एम श्योर यू आर एंजॉयिंग द वंडरफुल टाइम। एग्जैक्टली, आप भी एंजॉय कर रहे हैं, हम भी एंजॉय कर रहे हैं। सैटरडे आफ्टरनून परी का साथ है, एंजॉय दिस वन।

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे ही कुछ वंडरफुल ट्रैक्स आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं, बिकॉज इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले, जहाँ पर हम आपके लिए कुछ ऐसे गाने प्लग एंड प्ले करते हैं जिन्हें सुनते हुए आप अपने सैटरडे को एंजॉय कर सके। अभी इस वक्त सी साइड एंजॉय कर रही हैं और आप है हमारी प्यारी सी ललिता जी, और डेडिकेट कर रही हैं गाना पूरे परिवार के नाम, सरोज, गीता, ज्ञानती, वीना, कुमारी, ललिता और सभी जीतन परिवार के नाम, संजय, विजय और कुमार देवीचंद जो इस वक्त पैबे से हमारा साथ दे रहे हैं। ये गाना आपके नाम भी एंड एवरी वन हुज कनेक्टेड हमारे साथ। आई डू होप दैट यू एंजॉयिंग द ट्रैक्स। अभी के लिए ये जो प्यारा सा गाना है आप सभी के नाम, साथ निभाते रहिए। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499-1294।

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: और चलिए यहाँ पर मिस्टर रवि आपके लिए ये गाना हम डेडिकेट कर रहे हैं ऑफ कोर्स फॉर ऑल द लिसनर्स और इसी ट्रैक के साथ इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय आ रही है हंसनी लेकर आपके लिए गुड म्यूजिक म्यूजिक टक टका टक जहाँ पर आप उनका साथ निभा सकते हैं शाम के 7 बजे तक तो चलिए अभी के लिए ऐसे ही कुछ प्यारे गाने आप भी एंजॉय करें और एक के बाद एक ऐसे ही कुछ वंडरफुल प्रोग्राम्स आपके लिए चलते रहेंगे बिकॉज ये है आपका अपना RM2 रेडियो मस्ती फॉर नाउ इट्स परी साइनिंग ऑफ मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक इन योर टाइम लिस्ट का तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड That's your RM2 Radio Masti. Enjoy your Saturday. Enjoy your weekend.

0: Wishing you all a very good afternoon. Check your time. शाम के ठीक 4 बजे हैं. आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार सुमेहरा के साथ. आपको नमस्कार और आदाब.
1: नमस्कार आदाब. आज प्रेस को संबोधित करते हुए फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस एफएमपी के लीडर पॉल बेरांजे ने देश की आर्थिक स्थिति पर बात की, खासतौर पर जिंदगी की महंगाई, रुपए मुद्रा का घटता भाव और पेट्रोली पैदावारों की कीमतों पर. उन्होंने वर्तमान चुनौतियों पर भी बात की जिनमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और नेशनल क्राइम एजेंसी का क्याम शामिल रहा. समुदाय में नौजवानों को कटिबद्ध नागरिक और राजदूत बनाना ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन प्रोग्राम के मकसदों में से एक है. प्रधानमंत्री दफ्तर की पहल पर ग्रेड 8 के 200 छात्र 2 हफ्तों के दौरान प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे. आज कालबासक के रुद्रनाथ रामफल कॉलेज में एक पहला सत्र लगाया गया जिसमें वालिदैन ने हिस्सा लिया. एसोसिएशन ऑफ कंज्यूमर्स द लिल मॉरिस असीम सरकार से मांग करता है कि वो पेट्रोली पैदावारों की कीमतों को 2 रुपए से घटाए. संगठन के महासचिव जैन चिलम ने प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगे टैक्स पर जानकारियां दी. उनका कहना है कि चावल आटा और घरेलू गैस तथा बस सब्सिडी के लिए जो टैक्स हैं वो जायज हैं, लेकिन 2 रुपए का टैक्स सरकार की आमदनी में चला जाता है जिससे उसे इतना बड़ा फर्क नहीं होगा. ये ईंधन के कुल 15% टैक्स में सिर्फ 0.69% हैं. विदेश में G7 ने 100 मिलियन बैरल तेल जारी करने का ऐलान किया है, यानी पेट्रोल और डीजल को जारी करने का दावा किया है. ये फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद आया है जिन्होंने कहा है कि वे डीजल के निर्यात पर पाबंदी लगाएंगे और इसके चलते G7 के सदस्य देशों ने फौरन ये फैसला लिया है. तो अभी के लिए बस इतना ही. इजाजत दीजिए. नमस्कार और आदाब.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: हेलो दोस्तों, विशिंग यू ऑल अ ग्रेट आफ्टरनून। यहाँ पर सैटरडे का जो आफ्टरनून है बस अच्छा गया है ऑल अराउंड, और बेशक वीकेंड जो है ना इट्स ऑफिशियली ऑन। तो यहाँ पर म्यूजिकल सफर जारी है सिंस मॉर्निंग। यहाँ पर इतने सारे गुड शोज हुए हैं सुबह से लेकर अब तक। यहाँ पर आपका जो एंटरटेनमेंट वाला डोज है बिल्कुल हम उनको पहुँचाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। दैट्स आवर रेडियो स्टेशन RM2 रेडियो मस्ती, और हम तो बस आए हैं आप लोगों का स्वागत करने के लिए, टू बी ऑफ कोर्स इन द म्यूजिकल वर्ल्ड, और यहाँ पर टू बी पार्ट ऑफ आज का बॉलीवुड टकटकाटक। आ गई है आपके साथ हंसनी, और मिलकर हम इस म्यूजिकल जर्नी को सेट करने वाले हैं। सो चाहिए आपकी तरफ से कुछ आपका साथ और आपकी तरफ से कुछ आपके मैसेजेस। ये इंटरेक्शन होने वाला है तब और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट? ये जो कनेक्शन है हमारा इट्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनको टाइम टू टाइम और भी स्ट्रॉन्ग तो बनाने ही पड़ता है। इसीलिए आपकी तरफ से जो आपकी फीलिंग्स आते हैं, आपकी बातें आते हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, इससे ऑफकोर्स जो हमारा दिल का रिश्ता है वो कुछ और खास बन ही जाता है। सो विल बी वेटिंग, आपका इंतजार यहाँ पर रहने वाला है ऑन अ 5 4 9 12 94। That will be all about music, all about fun, musty and lots of great गाने जो आपके इंतजार में है up till 7 PM। So join us, आप सभी का दिल से welcome हम करेंगे। और हमारे जो प्यारी सी परी है she is actually on her way back home। 2 बजे से वो यहाँ पर थी आज फॉर आज का प्लग एंड प्ले शो। दैट वॉज ग्रेट विद ग्रेट सॉन्ग्स, और इसी के साथ यहाँ पर आई गॉट सम मोर एनर्जी टू कम टू वर्क। सो थैंक यू परी एंड हैव अ सेफ ड्राइव बैक, मिलेंगे जल्द। तो यहाँ पर अभी अगर आप भी अपनों को याद करना चाहेंगे, वी आर जस्ट लाइक फैमिली, तो फैमिली का जो स्पेशल फीलिंग्स है आप भी शेयर करें हमारे साथ होना 5 4 9 12 94।
0: Music, Tak Tak Tak.
1: RM2, Radio Musti.

वहां पर दिल से हम चला रही है एक से बढ़कर एक गाने. म्यूजिकल राइट है आप लोगों के लिए. इट्स बॉलीवुड टकटकाटक फॉर दिस वंडरफुल आफ्टरनून टू सेट द मूड इन द करेक्ट वे. मे भी कुछ ऐसा हुआ है जिससे दिल टूट गया है, तो कोई बात नहीं जी. यहां पर आपको तो पता है ना, दिल टूटा हुआ है तो आपका रेडियो मस्ती आपके साथ मरहम लगाने के लिए, टू बी विद यू एंड टू मेक श्योर यहां पर कि जल्द से जल्द वापस आए आपकी मुस्कुराहट, तो इसी कोशिश में लगी हुई है आपकी और जी हम सुनी और रहेंगे संग कुछ बातें शेयर करने के लिए. बिल्कुल हम है तैयार. कहते हैं दिल की बातें शेयर करने से दिल हैप्पी हो जाता है, खुश रहता है एंड हल्का हो जाता है. यकीन अगर आप मानते हो तो जल्दी से आप मोबाइल फोन उठाइए एंड सेंड अ टेक्स्ट, सेंड अ मैसेज ऑन 5499124.

0: म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: यहाँ पर आफ्टरनूनर शो को सजाती हुई आपके साथ हंसनी और बिल्कुल जो हफ्ते भर का स्ट्रेस है उनको साइड में रखेंगे आज. नो टाइम फॉर स्ट्रेस, नो जगह फॉर स्ट्रेस आज, क्योंकि अब टाइम है टू चिल आउट. और बताएंगे आप कि सैटरडे जो है वो कैसा जा रहा है. कुछ लोग तो अभी घर पर आराम कर रहे हैं. मौसम की बात करें तो कई जगहों पर बारिश हो रही है, मौसम बदल गया है और थोड़ी सी ठंड भी महसूस हो रही है. तो इसी मौसम में आपने सोचा है व्हाई नॉट टू स्टे इंडोर और थोड़ा सा आराम भी हो जाए. बिल्कुल सही सोचा है. अगर रेडियो साथ में है तो यहाँ पर दैट विल बी अ ग्रेट टाइम टू स्पेंड. यहाँ पर कुछ ऐसे गाने जो बिल्कुल आपको एंटरटेनमेंट देने वाला है. और कई तो फ्रेंड्स के साथ गए थे लंच के लिए, निकले थे फॉर द लंच और अभी भी कुछ गपशप बाकी है, कुछ नाइस टाइम जो आप बिता रहे हो. सो लगे रहो जी, ये तो है, कुछ टाइम बिताना भी ज़रूरी है टू हैव अ ब्रेक, टू हैव सम मी टाइम. और कई लोग तो आज काम भी करते हैं. सो सैटरडेज और जस्ट लाइक वर्क डेज और वर्क इज वर्शिप आज वे से, तो यहाँ पर काम जारी है. तो कुराज आप सभी को और रेडियो मस्ती इज हियर एनी हाउ. यहाँ पर जैसे भी हो हालात, जहाँ पर भी आप साथ निभाते हो, हम तो चले आते हैं जी आप लोगों का साथ निभाने के लिए. ऑल इन फॉर बॉलीवुड टक टकाटक, जहाँ पर जबरदस्त म्यूजिक हम लेकर आएंगे ऑफकोर्स टू एंटरटेन यू. सो यहाँ पर बारी आपकी रहेगी टू बी इन, यहाँ पर आपका साथ, आपका प्यार और आपके डेडिकेशंस. राइट, वी आर हियर टू सेलिब्रेट द फर्स्ट सैटरडे ऑफ अक्टूबर महीना, जो एक नया सिलसिला शुरू हो गया है. एंड सितंबर महीने को हमने गुड बाय तो कह लिया है और जो आ गया है इट्स अक्टूबर, जो लेकर आया है कुछ और चैलेंजेस, कुछ और लवली कमिटमेंट्स, कुछ और यू नो सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, लव, हैप्पीनेस, ये सब गुड विशेस लेकर आए हैं अपने संग. सो मिलकर हम उन सभी को बधाइयाँ देना चाहेंगे जो आज जन्मदिन मना रहे हैं. सो अगर उनका नाम पता लगाएंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा. ये तो आपका काम रहेगा टू बी इन एंड शेयर योर मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5111294 पर. वी आर वेटिंग फॉर यू.
0: म्यूजिक टक टकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: म्यूजिक टक टक टक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: टॉकिंग अबाउट पीस एंड हार्मनी प्रेम शांति अमन तो यही हम गुड विशेस लेकर आते हैं ताकि जो हमारा देश है मॉरिशस हमारा पैराडाइस आइलैंड इसमें हमेशा पीस एंड हार्मनी रहे हमेशा प्रेम रहे सम्मान रहे और हम ये मानते हैं जहां पर प्रेम और सम्मान होता है वहां पर सच्ची शांति तो होती रहती है क्योंकि हमारा ये मानना है कि जो नफरत होती है ना वो दूरियां बढ़ाती है जबकि प्रेम प्यार और जो सच्चा दिल होता है ना वो बस करीब ले आते हैं तो मिलजुल कर रहना है और सब को रिस्पेक्ट देना है जहां पर रिस्पेक्ट रहने वाला है वहां पर प्यार रहेगा भाईचारा रहेगा एंड वी डू बिलीव कि जब सब मिलकर रहेंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी peace and harmony all around. So we are here लेकर some good vibes. ये तो है Radio Masti RM2 जहाँ पर हम अच्छी बातें तो कर ही लेते हैं आपके साथ और इसी उम्मीद में रहते हैं कि आप भी भेजेंगे कुछ अच्छी बातें and some great messages. चलिए अभी time for me to have your dedications. जना का साथ है from Flag. इस समय वो काम से आई है घर वापस. So wish you a safe टाइम अभी घर पर और रेडियो मस्ती का जो प्यार भरा सफ़र है बस उनके साथ जारी आप बस जुड़ गए हो और जारी है ये सफ़र दैट्स वेरी नाइस यहाँ पर गाना फॉर बेटी रीमा के लिए वाओ दैट्स नाइस वी हैव जनीता शिस्ता अंशनी सिल्विया यूवी कृषि और सभी सुसरन परिवार जो फ्लक्स से है कनेक्टिंग विद रेडियो मस्ती थैंक यू सो मच यहाँ पर रेखा जी का साथ है एंजॉयिंग द नाइस शो वेरी नाइस जी आपका दिल से थैंक यू तो कहेंगे और आपके बेटे हैं अंश वो भी तो जुड़े हुए हैं फ्रॉम पोंबोंजे और खासकर मेरे लिए भी और सभी अर्जे के लिए भी जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं रेडी होप कि सब ठीक है कभी मिलते नहीं है लेकिन हाँ हम सब साथ रहते हैं ऑलवेज अ फैमिली टुगेदर Hi Hansini, hello ji, hope you're doing well. Yes, bilkul theek hoon. Thank you. Yahan par cocktail to ka ek gana, Marsho ka song. Ye to hum koshish karenge to play it aapke liye and for all the listeners jo yahan par strongly connected hai in the world of music.

0: RM2.
1: Radio Musty.
2: Histoire gagnante de l'Auto Plus. 22 avril 2026, ticket gagnant 11,4 millions, Maïbourg.
3: Mon fait travail social, moi aide beaucoup société, bonne camarade, n'importe qui race qui couleur. Mais moi, je vais prendre ça l'argent là, je vais aider maximum du monde qui a les besoins.
2: Des histoires gagnantes, des histoires vraies. Ferez-vous partie de la prochaine histoire gagnante du loto? Ceci est un communiqué de l'Autotech, le jeu peut créer une dépendance, jouez responsablement.
0: RM2
1: Radio Musty.
4: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musty.
5: बचपच कर सोलमनट हो गया है एंड यस वी आर बैक, हम वापस आ गए हैं. वेलकम जी, वेलकम इन द सेकंड आवर ऑफ आवर म्यूजिकल शो. इट्स बॉलीवुड टकटकाटक. तो दोस्तों, अगर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, सो इट्स अ वार्म वेलकम टू एवरीवन. और जो लोग पहले आवर में बस साथ निभा रहे थे और अभी भी साथ दे रहे हैं, इट्स ऑल ट्यून इन टू रेडियो मस्ती. तो थैंक यू यहाँ पर हमारा साथ निभाने के लिए. इट्स सैटरडे वाला टाइम, आफ्टरनून का ये मूड छा गया है ऑल अराउंड सुपर चिल. और ये जो मूड है उनको थोड़ा सा और म्यूजिकल बनाने के लिए हमारा जो शो होता है अप टिल 7 PM, ये तो हम सजाने वाले हैं. उम्मीद है कि जो हमारे गाने हम लेकर आ रहे हैं बस आपको पसंद आएंगे. एंड डेफिनेटली ये जो फील गुड वाला सफ़र है, वाइब से एकदम मस्त, थोड़ी सी और मस्ती और बहुत सारे म्यूजिकल सॉन्ग्स जो हम लेकर आएंगे, पेश करेंगे टू एंटरटेन यू. तो वॉल्यूम जो है ना थोड़ा सा आप अप कर लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि फेवरेट गाने जो चलने वाले हैं आपके. This is all about music and full fun of hamara jo Bollywood taktakatak show ho raha hai. It's connecting you with the best of songs on Radio Musty. To yahan par hai aapke saath Hansini aur milkar hum is din ko aur bhi super duper banane wale hain with your messages as well. Jahan par aapka saath rehta hai wahin par hum bas chale aate hain aur energy level thoda sa up ho hi jata hai jab humko pata chal jata hai ki aap log saath nibhate ho. So in for the best, aap sabhi ka welcome on Radio Musty.
4: Music Taktakata.
1: RM2 Radio Musty.

0: Alright, welcome in the musical world, जहाँ पर हो रही है ढेर सारी मस्ती और बस हम चला रही है एक से बढ़कर एक सुपर डुपर गाने. तो मिलकर अब हम आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच यहाँ पर हमारा साथ निभाने के लिए ऑन 5499 1294. एंड वी हैव युवराज जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है विद द रेडियो मस्ती. हाय युवराज, वेलकम ऑन द रेडियो मस्ती. यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर एक गाना तो बनता है ना आपके लिए, राइट? Wishing you a happy Saturday and thank you so much for loving the collection in Radio Masti in aaj ka Bollywood tak tak tak. To yahan par we have Reshma. Hi, welcome in the show. Really hope ki sab theek thak. Aur abhi you are in the kitchen, khana aap bana rahi ho, so wish you a very nice cooking time. Gana please mere liye ho jaye for my love रोशन के लिए, एक्चुअली जो इस समय काम कर रही हैं, ही इज़ वर्किंग राइट नाउ. सो कुराज टू हिम. और एक गाना जो बस हम चलाएंगे आप दोनों के लिए, फॉर हिम टू हैव अ सेफ टाइम. वी हैव उदित. हेलो जी, कैसे हो? यहाँ पर आप तो हो फ्रॉम पोर्ट लुइस, और गाना मेरे लिए प्लीज़ चला दीजिए हमारे लिए और फॉर माय लवली वाइफ अनुराधा के लिए. शी इज़ सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज. अनुराधा जी, हैप्पी बर्थडे आपको. Lots of good wishes हम लेकर आए हैं आपके लिए. Wishing you a zabardast time. और कुछ तैयारियाँ हो रही है at home, very nice. तो इससे में वो डबल मस्ती, आपका रेडियो मस्ती बिल्कुल आपके पास आया है to make it a special event. We have Karuna. Hi, hello and welcome to the show. यहाँ पर please एक गाना. जी हाँ, ये please क्यों, यहाँ पर ये तो आपका हक है to have your messages और गाना जो हम लेकर आते हैं आपके लिए. So ये जो रेडियो स्टेशन है बस आप लोगों के लिए ही होता है. We have it for you. और आपकी प्यारी सी नीस तनुश्री के लिए, she is already 3 years आज. बिल्कुल धूमधाम से मनाएंगे जन्मदिन को. Happy birthday to your sweet angel. और जो आपके परिवार है वो सब आएंगे आपके यहाँ to have some fun. ये तो बहुत अच्छी बात है. Let us celebrate your special day और वो भी रेडियो मस्ती के साथ.
1: Music, टक टक टक.
2: RM2, Radio Musti.

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स म्यूजिक टकटकाता
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती. ऑलरेडी 5:42 PM और इस समय आप स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हो विद रेडियो मस्ती. तो यहाँ पर टाइम हो चला है अब फॉर सम फैशन टिप्स. तो माय क्यूट लेडीज, यहाँ पर आजकल तो मलमल सारीज का जो क्रेज है छा गया है ना ऑल अराउंड. तो चलिए इसी के साथ वी हैव गॉट सम इजी टिप्स आपको देने के लिए. तो अगर आपको समर में चाहिए एक ऐसा लुक जो हो स्टाइलिश भी और सुपर कंफर्टेबल भी, तो मलमल साड़ी इज अ परफेक्ट चॉइस. तो यहाँ पर मलमल की जो सॉफ्टनेस है, एकदम लाइट वाला फील, ये तो बिल्कुल फिट होता है समर वाले सीजन में. इसको पहनने के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है मूड को. फैशन टिप नंबर वन, पास्टल शेड से ट्राई करें. अगर आपने चूज कर लिया है मलमल साड़ी मे बी एक स्पेशल इवेंट के लिए, तो यू कैन चूज पास्टल शेड्स वाले, जैसे कि पाउडर ब्लू वाले, ब्लश पिंक, मिंट ग्रीन या सॉफ्ट येलो. ये कलर्स जो है ना आपके लुक को और भी फ्रेश और एलिगेंट बना देंगे. और अगर आपको थोड़ा ट्रेडिशनल टच चाहिए, तो सिल्वर वाले जो झुमकेस है इसमें बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं, या फिर सिंपल वाले जो सिल्वर ज्वेलरी होते हैं ना उनके साथ बिल्कुल आप पेयर कर सकते हैं. और आपका जो ब्लाउज है ना थोड़ा सा सिंपल रखने के लिए बिल्कुल आप तैयार रहें सिंपल मलमल साड़ी के साथ. यहाँ पर आपका जो ब्लाउज है वो तो एकदम सिंपल होना चाहिए, प्रिंटेड हो सकते हैं लेकिन सिंपल लुक, ये तो बिल्कुल आपको और भी एलिगेंट लुक देने वाला है. और ड्रेपिंग के बारे में बात करें तो एकदम नीट वाली प्लीट्स आप कर लीजिए अपने मलमल साड़ी के साथ, और एकदम लाइट वाले पल्लू. बस और क्या चाहिए टू मेक यू लुक मोर क्लासी. और फुटवेयर के बारे में बात करें तो आप कोल्हापुरी के साथ इजी है, तो ये आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं कोल्हापुरी जूटीज या सिंपल फ्लैट जैसे जो फुटवेयर होता है ना, आप इनको आप इस्तेमाल कर सकते हो टू वेयर एंड टू मेक इट लुक मोर एलिगेंट. कंफर्ट भी रहेगा और देसी वाइब भी रहेगा. तो यहाँ पर स्टे स्टाइलिश, स्टे कंफर्टेबल एंड कीप रॉकिंग. यहाँ पर 6 yard का जो मैजिक है वो बस अच्छा ही जाता है.
0: फैशन टिप्स वॉज पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स.
1: RM2
3: रेडियो मस्ती,
1: फील द मस्ती.

0: Thank you for connecting with the Radio Masti. This is Bollywood Tak-Tak-Tak with the best blend of music. चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे कुछ ही पल में समाचार बुलेटिन की तरफ. इसके बाद बिल्कुल हमारी मुलाकात जारी रहेगी इन द थर्ड आवर ऑफ द म्यूजिकल शो. कहीं मत जाइए. स्टे वेल कनेक्टेड.
1: Radio Masti. The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.

पेश है समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने महोवाकों में जल स्तर पर चेतावनी जारी की है। कल सिर्फ 36.6% पानी भरा था। आमतौर पर महोवाकों लामारी ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ रोजाना 110 क्यूबिक मीटर पानी की सप्लाई करता है, लेकिन अब जरूरत पड़ने पर नई पाबंदी। कंसेंट्रिक्स और उसके पूर्व कर्मचारियों के बीच आखिरकार एक समझौते पर रजामंदी। एक अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी इस पर काम कर रही है। बैंक ऑफ मॉरिशस देश में जाली नोटों के इस्तेमाल के सिलसिले में चेतावनी जारी कर रहा है। बैंक ने पैसों के नोटों की ऑथेंटिसिटी का निरीक्षण करने और जनता से किसी भी तरह के शक की मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करने की मांग की। और विदेश में G7 नेताओं ने 100 मिलियन पेट्रोल

0: पेट्रोल और डीजल के बैरल्स जारी करने का किया ऐलान। नमस्कार और आदाब। सेंट्रल वाटर अथॉरिटी ने महोवाकवा में जल स्तर पर चेतावनी जारी की। कल सिर्फ 36.6% पानी भरा था। आमतौर पर महोवाकवा लामारी ट्रीटमेंट प्लांट की तरफ रोजाना 110 क्यूबिक मीटर पानी की सप्लाई करता है। आज जलाशय 71,000 क्यूबिक मीटर की आपूर्ति करता है। CWA पानी का जिम्मेदाराना संचालन और इस्तेमाल करने की मांग करता है। जरूरत पड़ने पर नई पाबंदियां जारी की जाएंगी। एक इमरजेंसी प्लान पर काम किया जा रहा है। जोना तेरेविजे में CWA से शाम तानू स्टूडियो में आज लाइव होंगे। कई हफ्तों के बातचीत सत्रों के बाद कंसेंट्रिक्स ने 300 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए एक समझौते पर सहमति जताई। कंसेंट्रिक्स के बंद होने से बीपीओ सेक्टर के भविष्य पर कई सवाल उठ रहे हैं। एक अंतर मंत्री स्तरीय कमेटी फिलहाल नई चुनौतियों के मद्देनजर सेक्टर को मजबूत करने पर जोर दे रही है। बैंक ऑफ मॉरीशस देश में जाली नोटों के इस्तेमाल के सिलसिले में चेतावनी जारी कर रहा है। कागज के नोटों का प्रयोग किया जा रहा है। केंद्रीय बैंक ने पैसे के इन नोटों की ऑथेंटिसिटी का निरीक्षण करने और आवाम से किसी भी तरह के शक की मामले की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करने की मांग की है। समुदाय में नौजवानों को कटिबद्ध नागरिक और राजदूत बनाना ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन प्रोग्राम के मकसदों में से एक है। प्रधानमंत्री दफ्तर की पहल पर ग्रेड 8 के 200 छात्र 2 हफ्तों के दौरान प्रशिक्षण में हिस्सा लेंगे और आज जोन 1 में कैलबास स्थित रूपनाथ रामफल कॉलेज में माता पिता के लिए एक पहला सत्र लगाया गया।
1: कुछ अभिभावक पहले से ही अपने बच्चों के लिए प्रस्तावित इस अनुभव को लेकर आश्वस्त हैं। करीब 50 अभिभावक कैलबास स्थित रूपनाथ रामफल कॉलेज में एकत्र हुए। ये बैठक नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन कार्यक्रम के बारे में आयोजित पहले सूचना सत्र के लिए थी। ये उनके लिए ये जानने का अवसर था कि अगले नवंबर महीने में उनके बच्चों के लिए क्या क्या गतिविधियां और अनुभव निर्धारित किए गए हैं। 16 से 20 नवंबर तक प्रतिभागी 4 प्रशिक्षण केंद्रों में सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वे देश के दक्षिण हिस्से में कार्यक्रम के रेजिडेंशियल चरण की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में खेल गतिविधियां, शारीरिक व्यायाम, जल संबंधी गतिविधियां, साथ ही व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित अभ्यास भी शामिल होंगे। ओहोला क्रश कहती है, ये एक मानसिक तैयारी है जिसे अभी से शुरू करना जरूरी होगा। बच्चे आत्मनिर्भर बनना सीखेंगे। अच्छी बात यह है कि उन्हें उचित मार्गदर्शन और सहयोग दिया जाएगा। उनके साथ टीम लीडर भी होंगे। इस दौरान बच्चे अपनी क्षमताओं को विकसित करेंगे और अपने व्यक्तित्व में सुधार लाएंगे। नरसिंह जयदेव कहते हैं, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज उनका मार्गदर्शन अच्छे से हो रहा है। मुझे याद है मैं जब 6 कक्षा में थी तब औसलागे में कैंपिंग पर गया था। अभी तक वो पल मुझे याद है। मेरी बेटी भी खुश होगी। फिदुली लोधारी कहती है, मेरा बेटा इसमें भाग ले सका है। ये मात्र 2 या 3 सप्ताह की एक शिक्षा नहीं, जीवन भर ये बच्चों के हित के लिए है। इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे का व्यक्तिगत विकास होगा। कुल मिलाकर ग्रेड 8 के 200 युवा इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य उनमें जिम्मेदारी की भावना, सामुदायिक भावना और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करना है। निरंजन बीगन कहते हैं, इन नौजवानों में स्कूली एम्बेसडर, स्कूल के चैंपियन की झलक है। दूसरों को ये प्रेरित कर सकते हैं। ये एक ऐसी पहल है जिसके द्वारा कल भविष्य में ये बच्चे सही कदम उठाने में सक्षम होंगे, अच्छे निर्णय ले सकेंगे, समाज की ओर एक जिम्मेदाराना रवैया अपनाएंगे। कैलबास के बाद अगले कुछ हफ्तों में 3 अन्य जोन के अभिभावकों के लिए 3 और सूचना सत्र आयोजित किए जाएंगे। नवंबर महीने में शुरू होने वाले कार्यक्रम की ये तैयारी की एक प्रक्रिया है। इस कार्यक्रम में 200 युवाओं को सीखने, अपनी क्षमताओं को चुनौती देने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि वे अपने समुदाय में अपनी जगह बनाने और सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार होंगे।
0: आज प्रेस को संबोधित करते हुए फ्रॉम मिलिटेंट प्रोग्रेसिस एफएमपी के लीडर पॉल बेरांजे ने देश की आर्थिक स्थिति पर बात की, खासतौर पर जिंदगी की महंगाई, रुपए मुद्रा का घटता भाव और पिछोली पैदावारों की कीमतों पर। उन्होंने वर्तमान चुनौतियों पर भी बात की, जिनमें

0: चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और नेशनल क्राइम एजेंसी का कयाम शामिल रहा। किशन सिंह की रिपोर्ट पर यह विवरण।
1: प्रेस के समक्ष पॉल बेरांजे ने देश की आर्थिक स्थिति और जीवन लागत पर बात की। फ्रों मिलिटेंट प्रोग्रेसिस्ट के लीडर ने जनवरी से अगस्त 2026 के बीच रुपए के भाव में 4% की गिरावट का उल्लेख किया। ईंधन के हालिया वृद्धि के संबंध में उनका मानना है कि जनता के बेहतर रक्षा के वास्ते हालिया बजट में कुछ फैसलों पर ध्यान दिया जाना चाहिए था।
2: L'essence et diesel. Toute qualité de taxe que tu es capable de diminuer ou même retirer. Tellement, nous bien guettons les choses en face. Si diminuer ou retirer cette taxe-là, lui affecter déficit budgétaire du gouvernement et la dette publique aussi. Mais un garde ça en tête. C'est pourquoi sa question-là est visée à considérer dans le cadre budget.
1: चर्चा के अन्य मुद्दों में भावी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का तरीका और नेशनल क्राइम एजेंसी की स्थापना शामिल हैं। पॉल बेरांजे ने जिसके खिलाफ अपनी स्थिति दोहराई, इसकी जगह पर वे एक नेशनल पुलिस सर्विस की स्थापना का प्रस्ताव रख रहे हैं जो पुलिस कमिश्नर की भूमिका को मजबूत कर सके।
0: जून में एक पहले चरण के बाद अब माइटी लर्न ने एक नया मरहला शुरू किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर शैक्षिक प्लेटफॉर्म का एक बेहतर वर्जन मुहैया कराया गया। 12 कॉलेजों में ग्रेड 9 के करीब 1200 तलबा यानी छात्र इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकेंगे। ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन दफ्तर ने 2025-2026 की रिपोर्ट आम की। करीब 200 पन्नों वाली इस रिपोर्ट में कई ऐसे चैप्टर हैं जो बच्चों के हक और शिशुओं के अधिकारों के सिलसिले में हैं। ओम्बुड्स पर्सन अनिता गुरा की इच्छा है कि सभी सिफारिशों को अमल में लाया जाए। सिंचा मुटू करुणा लालू।
1: जुलाई 2025 से जुलाई 2026 के बीच ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन के दफ्तर में कुल 363 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 6 रोड्रिक से हैं। 167 मामले स्कूल से जुड़ी समस्याओं के हैं, जिनमें बुलिंग भी शामिल हैं। 63 मामले पारिवारिक समस्याओं से संबंधित हैं, जबकि 11 दिव्यांग बच्चों से जुड़े। अपने वार्षिक रिपोर्ट में ओम्बुड्स पर्सन फॉर चिल्ड्रन ने व्यवहार संबंधी समस्याओं से जूझ रहे युवाओं का भी जिक्र किया। अनिता घोरा ने कहा, वे बच्चे जिन पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता, खासकर शेल्टर में और जिन्हें ब्राउन सिक्वाड में भी डाला गया है, उनके लिए उचित ढांचा चाहिए। सड़कों पर अभावग्रस्त बच्चों के साथ काम करने वालों ने आगे आकर बताया कि वे किस तरह के ढांचे चाहते हैं। ओम्बुड्स पर्सन के मुताबिक विशेष जरूरत वाले बच्चों के लिए उचित देख रेख की व्यवस्था आवश्यक है। खास जरूरत वाले 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों के लिए कानून में खामी है, उन्हें पता नहीं किधर जाएंगे। 3 साल से कम उम्र के लिए CCA हैं, 5 से अधिक साल के लिए सेना, लेकिन 3 से 5 साल के लिए पता नहीं कहाँ जाएंगे। अगले वर्ष के लिए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। साइबर हरासमेंट है, इसके ज्यादा से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जहाँ युवा इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं। ओम्बुड्स पर्सन दफ्तर चाहता है कि मंत्रालयों और अन्य संस्थानों द्वारा उसकी सिफारिशों को अमल में लाया जाए।
0: सन 2019 से होल्डन सेन स्कूल खास शिक्षा की ज़रूरत पड़ने वाले बच्चों का समर्थन करता है। कैथोबोन में 2 ऐसी संस्थाएं करीब 100 बच्चों का स्वागत करती हैं और पिसाक से वोकेशनल ट्रेनिंग तक बच्चों का साथ देती हैं। और अब विदेश की खबरें। कीव यूक्रेन में रूस ने एक बड़े पुल पर हमला किया। ये सबसे गंभीर मूलढांचा हमलों में से एक है। आज सुबह सवेरे इस घटना के कारण पुल पर बहुत ट्रैफिक पैदा हो गया। शहर के मेयर ने कहा कि इन हमलों से कीव नष्ट होता जा रहा है। और इसी के साथ पेश हैं कुछ दूसरी खबरें विधि मासीबुरन की रिपोर्ट में।
3: आसमान छूती गैस की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए दुनिया भर की औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं द्वारा उठाए गए हालिया कदम के तहत G7 के सदस्य देशों ने शुक्रवार को करोड़ों बैरल डीजल ईंधन और कच्चे तेल को जारी करने पर सहमति जताई। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों द्वारा आयोजित G7 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, यूरोप ने अभी

0: भी अपने भारी मात्रा में स्टॉक किए गए डीजल तेल को जारी करने पर सहमति व्यक्त की है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, ये प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। G7 के रणनीतिक भंडारों से 100 मिलियन बैरल तक कच्चे तेल और डीजल की आपूर्ति जारी करने की घोषणा के बाद कच्चे तेल और गैसोलीन की कीमतों में भारी गिरावट आई है। कमजोर अमरीकी डॉलर और अमरीका तथा ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही वार्ताओं के गतिरोध में फंसे रहने के कारण कच्चे तेल के नुकसान सीमित रहे, जिससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से फिर से नहीं खुल पाया है और वैश्विक तेल आपूर्ति तंग बनी हुई है। एक विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रतीत होते प्रयास में अपने को पायलट द्वारा चाकुओं से हमला किए गए भारतीय फ्लाई दुबई पायलट ने पहली बार अपनी इस विभत्स आपबीती के बारे में बात की है। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छर किसी तरह कॉकपिट का दरवाजा खोलने में कामयाब रही। इसकी वजह से अन्य यात्री कॉकपिट में प्रवेश कर पाए और सह पायलट को काबू में कर सके, जबकि एक अन्य यात्रा कर रहे पायलट ने विमान का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। अबुधाबी के अपने अस्पताल के बिस्तर से वीडियो कॉल के जरिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए स्मिथ मच्छर ने कहा, मुझे कई घाव हो चुके थे, मैं गिर गया था, मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। एक पल के लिए मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं नहीं उठा तो यात्रियों की जान चली जाएगी।
1: और अब करते हैं मौसम की बात। आम हालत, कुछ बादल स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं और मस्केरेंस के दक्षिण से दूर एक एंटी साइक्लोन विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से ठंड महसूस की जा रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात बादल घिराएंगे, पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटो तथा ऊंचे इलाकों में बारिश होगी। आज देर रात मौसम में सुधार होगा, कल सुबह मौसम सुहाना रहेगा, दिन के दौरान दक्षिण पूर्व में बादल घिराएंगे और रह रहकर पूर्व दक्षिण और ऊंचे इलाकों में बारिश होगी। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, 2.50 मीटर ऊंची नहरें उठेंगी दक्षिण वाले लगूनों में, इसी वजह से दूर समुद्र में ना जाने की सलाह है। तापमान सेंट्रल प्लेटू में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 23 से 25, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 5:49 पर सूरज उगेगा और शाम को 6:08 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें। अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी शिव नागिया की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। अब थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे।
1: Your news on NBC Play and NBC.mu.
0: सुजी स्ट्रीट वाली पीटो में 75 साल के 75 years old जनाब बशीर अहमद रजब अली, जनाब बशीर अहमद रजब अली जुबाई बशीर के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। जनाजा आज रात 7:30 बजे इनके बेटे नदीम रजब अली के घर BK-01 सुजी स्ट्रीट वाले पीटो से उठाकर दफनाने के लिए रिश्ते का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 7:30 PM। अली जैक रोड नोवेल फ्रांस में 78 साल के 78 years old श्री लक्ष्मी प्रसाद अलहुदो, श्री लक्ष्मी प्रसाद अलहुदो जो दानी लाल गुरु जी के नाम से ज्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल दोपहर बाद एक बजे के बेटे अमृत सिंह प्रसाद अलहुदो के घर अली जैक रोड नोवेल फ्रांस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रोजबेल की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। रामकिसुन लेन जेबिया रोड रोजबेल में 77 साल की 77 years old श्रीमती सांता कुमारी जिलुल, श्रीमती सांता कुमारी जिलुल जो तारा के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनकी बेटी सुबाहा रोशनी के घर रामकिसुन लेन जेबिया रोड रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। एवेन्यू डालिया बुआ पिन्यू डी टेरूज में 84 साल की 84 years old श्री

0: श्रीमती सरोजिनी रंगासामी, श्रीमती सरोजिनी रंगासामी जो मैडम पाया साबो के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 10 बजे इनके घर एवेन्यू डालिया वो अपनी यूनिट आगोश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वाले दे प्रत्र की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टमोरो 10 AM। ओले खुद नंबर एक वाकुआ में 71 साल की 71 years old श्रीमती देविका सिबुरत पैदाशी नाम सुचित जो सुदेवी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनके घर ओलेगुद नंबर एक वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्वामा मेल की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टमोरो 10 AM। ऋषि दयानंद रोड रिविया दे क्रेओल में 72 साल की 72 years old श्रीमती कमला देवी मोंगरा पैदाशी नाम बंधन जो शिवरानी के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल 11 बजे इनके पोते मंगा कृतिश कुमार के घर ऋषि दयानंद रोड रिविया दे क्रेओल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोवालों की शमशान भूमि दी जाई जाएगी। क्रिमेशन टमोरो 11 AM। लिबियातु वाकुआ में 75 साल के 75 years old श्री महादेव बापू जो बाबू के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े बारह बजे इनके घर लिबियातु वाकुआ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सुल्फी हिंदु की शमशान भूमि ली जाई जाएगी। क्रिमेशन टमोरो 12:30 PM। रॉयल रोड पे चिराफ्रे में 84 साल की 84 years old श्रीमती सत्यवती बंधु पैदाइशी नाम बारन जो सत्यवती के नाम से ज़्यादा जानी जाती थीं, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल एक बजे इनके घर रॉयल रोड पे चिराफ्रे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पे चिराफ्रे की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टमोरो 1 PM। शिमलागो नोटोदाम में 38 साल के 38 years old श्री बिनेश कुमार बसावन जो बेंजोले के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े नौ बजे इनकी माँ बिदेसी माला के घर शिमलागो नोटोदाम से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्रियोले की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रमेशन टमोरो 9 AM। शोक में दुबे परिवारों से हमें हमदर्दी हैं।
1: You're listening to RM2, Radio Masti.
2: RM2,
1: Radio Masti.
2: Feel the Masti.

0: listening to
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
1: Music tak tak tak.
0: RM2 Radio Masti.
2: Tune in for the best of music. It's all about fun music and unlimited musty. This is RM2 Radio Musty, guys. It's a warm welcome to everyone. Already 6:30 PM. यहाँ पर हम सभी का स्वागत तो करेंगे in the musical world. It's Bollywood टक टक टक और यहाँ पर है आपके साथ हंसनी और सुबह चार बजे से शाम के 4 बजे से हम यहाँ पर आपके साथ है. वैसे सुबह के वक्त पर इतने सारे शोज हुए हैं जी. हाँ बिल्कुल, दिन भर एंटरटेनमेंट का ये सफ़र जारी था हमारे ऑडियंस के साथ और अभी हंसनी के लिए बस ये सफ़र तय हम करने वाले हैं और वो भी आपके साथ. इट्स अ वार्म वेलकम. एंड यहाँ पर जितने भी हमारे लिसनर्स जुड़े हुए हैं, वेली होप दे आर डूइंग वेल, सब ठीक है ऑन द साइड. और जो हमारे तमिल भाई बहन है वो भी तो तैयार हो रही है. बस पूरी रात कोविलों में जो है बस भजन कीर्तन होने वाले हैं. सनसेट से लेकर सनराइज तक पूरी रात भजन कीर्तन के साथ प्रेयर्स होने वाले हैं. और गोविंद एंड प्रेयर्स के लिए जो हमारे तमिल भाई बहन बस व्रत धारण कर रही है, ये जो महीना है उन सब के लिए बहुत ही पावन है. और भगवान कृष्णा की आराधना में बस वो प्रार्थनाएं कर रही है और भगवान कृष्णा उनके लिए तो वेणुगोपाल भी बुलाते हैं. तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं गुड विशेस. ये जो पावन महीना है उसमें शुभकामनाएं हैं ताकि जो मन की मुराद है वो बस भगवान कृष्णा पूरी कर दे. यही हमारे गुड विशेस जो हम लेकर आए हैं सबके लिए. सो यहाँ पर गुड वाइब्स ऑल अराउंड, ये

तो है रेडियो का कमाल है, जहां पर भी साथ जारी होता है बस हम लेकर आते हैं ओनली द बेस्ट, ओनली द सुपर डुपर वाइब्स, ताकि जो मूड है आपका वो कुछ और मस्त हो जाए। तो जहां पर म्यूजिक है मस्त, वहां पर जो म्यूजिक है वो जबरदस्त हम लेकर ही आते हैं। दिस इज रेडियो मस्ती गाइज, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस अप टिल 7 PM।

जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका ये म्यूजिकल जर्नी बस जारी है और ये जो सफर होता है ना, बस खूबसूरत ही होता है। हर सूरज ऐसे दिल में नई खुशी भर देता है। बिल्कुल, कभी कोई धुन हमें हंसाती है तो कभी वही धुन पुरानी प्यारी यादों में ले जाती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? अच्छी बात यह है कि संगीत की कोई सीमा तो नहीं होती। अलग अलग सुर, अलग अलग ताल, फिर भी सब मिलकर एक सुंदर कहानी बनाते हैं। दिस इज द मैजिकल मोड ऑफ और यहाँ पर बिल्कुल हम आपका साथ जरूर दे जाते हैं। यो म्यूजिकल सफर जो कर बस जारी हम रखेंगे कंटिन्यूस अटिल 7 PM हमारे साथ ऑन रेडियो मस्ती RM2 जो हमेशा आपका साथ निभाता है। एंड वी हैव इट फॉर यू महन जी, हेलो एंड वेलकम इन द शो। वेल यू होप यू सब ठीक, मे बी हैविंग सम फ्लैशबैक सुवेनियर्स। तो चलिए ये गाना पेश है स्पेशली आपके लिए।

कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क की मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: म्यूजिक टक टकाटक
1: आरएम2 रेडियो मस्ती।

और यहाँ पर उनके आने से तो होने वाला है एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन ऑफ स्पोर्ट्स न्यूज एंड म्यूजिक. दैट विल बी आज का झंकार बीट्स कमिंग अप विद विकास रामधनी. जस्ट स्टे वेल कनेक्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ द शो जो होने वाला है आफ्टर 7 PM. और यहाँ पर बिल्कुल आपने सही सुना है जी, दिल को बहलाने वाले हमारे म्यूजिक, हमारे गाने जो चलते रहते हैं नॉन स्टॉप ऑन आवर RM2 रेडियो मस्ती. चलिए इसके साथ आर वेव गुड बाय. थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार इस शो को देने के लिए. अभी तो झंकार बीट्स कमिंग अप, मिलेंगे जल्द. तब तक के लिए प्लीज स्टे सेफ एंड डू एंजॉय विद योर फैमिली. टू हैव अ वंडरफुल टाइम.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: पधारो रेडियो मस्ती और एमटीयू की लहरों पे रात के 7:05 हुए हैं. यू आर ट्यून्ड टू रेडियो मस्ती और एमटीयू विद मी विकास रामधनी. झंकार बीच है ये प्रोग्राम. और परदेसी हो या फिर स्वदेशी, इंटरनेशनल बॉयज या फिर लोकल बॉयज और लोकल लड़कियां भी, सबका स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में. झंकार बीच 729 एवरी सैटरडे इवनिंग रेडियो मस्ती और एमटीयू पर. आज तो इस सप्ताह तो कमाल ही हो गया. लोकल स्तर पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट्स हैं, कमाल कर दिखा रहे हैं. अभी अभी जो इंटरनेशनल लेवल पर मैच खेले जा रहे हैं, आज रात बता दें कि इंग्लैंड का मुकाबला क्रोएशिया से है. क्रोएशिया की सरजमी पे ये यूएफए नेशंस लीग के अंतर्गत मैच खेला जाएगा. एंड फिलहाल इस समय भारत की फुटबॉल टीम का मुकाबला ब्राजीलियन लासिलेसाओ से हो रहा है. एक फ्रेंडली मैच है जो कई साल बाद खेला जा रहा है भारत के सरजमी पे. और इस समय खेल के हाफ टाइम तक ब्राजील लीडिंग बाय 2-0 अगेंस्ट इंडिया. गोल कर्टिसी ऑफ एस्तेवाओ 28वें मिनट पर और 42nd मिनट पर पेड्रो ऑन टारगेट. सो इट्स इंडिया 0-2. लाखों की संख्या में लोग ये मैच देख रहे हैं मैदान के अंदर और मैदान के बाहर भी, और टीवी पर तो करोड़ों की संख्या में. सो इंडिया 0-2 हाफ टाइम रिजल्ट. और इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में ही पराग्वे ने आज कोलंबिया को 1-0 से हराया. कुछ मैच खेले जा रहे हैं इस समय यूएफए नेशंस लीग में. और बता दें कि रात के 8 बजे 8 PM टुनाइट इट्स गोइंग टू बी क्रोएशिया वर्सेस इंग्लैंड. और लोकल बॉयज की बात हुई तो हमारे लोकल बॉयज क्लब एम ने भी कमाल कर दिखाया, जलवा दिखाया, अपना तेवर दिखाया. अभी कल ही शुक्रवार की रात जो है, कल रात क्लब एम ने श्रीलंका को 3-0 से हराया. एंड इट वाज अ ग्रेट मैच. एक सेकंड मैच खेला जाएगा अभी मंडे को एक बार फिर क्लब एम वर्सेस श्रीलंका. देखते रहिए और सुनते रहिए.
2: RM2 Radio Musti
1: Jhankar Beats.

0: Radio Musti.
1: Your life is not complete until you have a little Musti in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
0: Radio Musti.
2: You're listening to Jhankar Beats. हमारे साथ मेहुल विकास और नंबर वही है 5499-1294. Jhankar Beats, जहां हर धुन दिल को छूती है, दिल की धड़कनों को छूती है और हर खेल की कहानी जोश से भर देती है. Welcome, welcome to the world of sports and music.

0: RM2 Radio Musti.
1: दिल ने संदेह धड़कने लगा है क्योंकि आप जो आगे हैं ऑन 5499-1294-5499-1294 पे नमस्ते आपको भी एंड इस गीत के लिए थैंक यू. कौन सा गाना था वो? अच्छा, दिल इबादत के लिए. बहुत दिन बाद ये गाना आया है और अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा. और इसी प्रकार अच्छाई बांटते रहिए. Do good, be good, और सुनते रहिए Radio Musti RM2 every Saturday from 7 to 9. Radio Musti RM2, Jhankar Beats, Sports and Music Program. And this one wishing my husband Jitin a very happy birthday from wife Simla. Aapki beti hai Nishika aur beta Sahil and Ramanaik family of Trioli wishing Jitin a very, very happy birthday. Aapko जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. कीप सेंडिंग मैसेजेस ऑन 5499-1294-5499-1294 पे. सो आज रात 8 बजे जबरदस्त मुकाबला क्रोएशिया वर्सेस इंग्लैंड, जिसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है. एंड वी हैव सम न्यू फेसेस टोमा टुकेल के स्क्वाड में. एंड आई बिलीव वी हैव क्या स्कॉट एंड एंडरसन जो है, पिछली बार एलियट एंडरसन एंड एलेक्स स्कॉट आज साथ साथ खेलने वाले हैं. ये लाइनअप तैयार हो गई है. सो पिछली बार ये दोनों जब खेल पाए थे तो दैट वाज ड्यूरिंग द अंडर 21 यूरोपियन चैंपियनशिप इन स्लोवेकिया. और फिर सीनियर इंग्लैंड टीम के साथ ये दोनों मैदान पे उतर रहे हैं. एलियट एंडरसन एंड एलेक्स स्कॉट प्लेइंग टुगेदर टुनाइट. और बता दें कि आज एक और आज नहीं बल्कि अगले मंगलवार को यदि हैरी केन किंग केन यदि एक और मैच खेल पाया तो वो पीटर शिल्टन का रिकॉर्ड इक्वलाइज कर देगा. अब तक 41 ईयर ओल्ड की आयु तक पीटर शिल्टन द गोलकीपर प्लेड फॉर इंग्लैंड, वो तो वो पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि केन अभी केवल 33 साल का है. लेकिन नंबर ऑफ अपीयरेंसेस इंग्लैंड कैप्टन अब तक उसने 124 मैच खेले हैं और पीटर शिल्टन के 125. सो एक और मैच और मंगलवार को यदि वो खेल पाए और खेलना चाहिए भी तो वो पीटर शिल्टन का भी रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ पाएगा. सुनते रहिए
0: झंकार बीट्स RM2 रेडियो मस्ती
2: झंकार बीट्स.

जानते नहीं तो आपको बता दें कि रात 8 बजे इट्स गोइंग टू बी क्रोएशिया वर्सेस इंग्लैंड, 11:15 बजे 10:45 स्पेन वर्सेस चेक रिपब्लिक, एक मैच समाप्त हो गया है, फिनलैंड ने आज अल्बेनिया को 2-1 से हराया।

शाम ढल चुकी है रात भी आ चुकी है कि तुम्हारा प्यार अभी तक ढला नहीं है उनकी चाहत में दिल मजबूर हो गया दर्द देना उनका क्योंकि दस्तूर हो गया कसूर उनका नहीं हमारा ही था हमने चाहा ही इतना कि उनको गरूर हो गया।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: मन में आग नहीं लगी तो लग जाएगी. अभी इंडिया लूजिंग बाय 3-0 अगेंस्ट ब्राजील. फ्रेंडली मैच है और ब्राजील के लासेलिसाओ विद कार्लो एंसेलोटी और कई बड़े बड़े खिलाड़ी अभी मैदान पे उतरे हैं. एंड वी हैव द लाइक्स ऑफ एस्टेवाओ, पेड्रो, विनिसियस जूनियर, डानिलो सांटोस, एंड्रे सांटोस, गैब्रियल बोनटेम्पो, मातेउजिन्यो, मार्किन्योस, आर्थर डायस और डगलस सांटोस, सबके सब भारत की सरजमी पे हैं. इस समय मैच खेला जा रहा है जबकि भारत की ओर से सिंह सांधु आज गोलकीपर, अभिषेक सिंह, वार्गीज, अली मिश्रा, रॉल्टे, थापा, विलियम्स, समाद, कुरुनियान एंड मनवीर सिंह. प्रोबेबली ये जो मैच है लाखों की संख्या में अभी मैदान के अंदर और मैदान के बाहर और टीवी पर तो इतने सारे भारतीय जहाँ भी है दुनिया भर में वहाँ वहाँ से देख रहे हैं. सो इट्स हैपनिंग. ब्राज़ील लीडिंग 3-0 अगेंस्ट इंडिया. इंटरनेशनल फ्रेंडली मुकाबला है ये. खेल का ये 67वां मिनट, 67 मिनट बीइंग प्लेड और अभी पिक्चर बाकी है और बाकी जो मैच हैं. लेकिन अभी तो इंटरनेशनल मैच की बात हो रही है लेकिन लोकल मैच जो है कल फ्राइडे को

0: could do National Sports Complex major match khela gaya between Club M Mauritius ke rashtriya football team Club M Le Dudu versus Sri Lanka wo kamal ka match tha kai kai arse baad itne goal dekhne ka mauka mila aur the public was looking for it hamare jo football premi hai bar bar maidan pe utarte hain aur goal nahi dekh pate hain aur kal jo coach hai coach ko bhi hardik badhai deni padegi usne jaan laga di aur sabko sabse wo appeal kar raha tha ki you have to apni team ko badhawa dena chahiye encourage the team and aisa hi hua aur aisa bhi coach ko aisa bhi hona chahiye jaise ek head of department hota hai head of institution hota hai usko bhi pura lagan ke sath man laga kar so it's 3-0 for Club M goal courtesy of Stéphane de Robia William François and Aurélien François inhone 3-3 goal score kiye against Sri Lankan team aur kuch minuton ke liye match ko rokna bhi pada tha kyunki coach ne itni खुशी जताई इतना जश्न मनाया सेलिब्रेशन किया कि श्रीलंकन कोच को गुस्सा आया वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मैच कुछ मिनटों के लिए रोक गया था और लेकिन बाद में सब फिर से जब चालू हुआ तो फिर भी मैच 3-0 पर ही संपन्न हुआ एंड इट्स ए सेकंड मैच इज गोइंग टू बी प्लेड इसी मंडे को यानी कल परसों रात 7 बजे अगेन कुज्जो के नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्लब एम वर्सेस श्रीलंका देखते हैं कि सेकंड राउंड में क्या होगा लेकिन कहना पड़ेगा हैट्स ऑफ टू यू गाइस मॉरिशस को चाहिए थी एक ऐसी जीत 3-0 से एंड वी वांट मोर गोल्स
1: झलका बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती
1: झलका बीट्स
0: परदेशियों का स्वागत है स्वदेशियों का भी

0: शनिवार की शाम है तो मूड भी होना चाहिए थोड़ा सा म्यूजिकल थोड़ा सा स्पोर्टी
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
0: आपकी शाम आपकी रात्रि आपका रेडियो आपके पसंदीदा गाने और स्पोर्ट्स की हर बड़ी खबर सब कुछ एक ही जगह पे ओनली ऑन झंकार बीट्स हमारे साथ में हूं विकास और हूं आपके साथ रात के 9 तक ऑन 5499-1294-549-9124 पे कुछ मैसेज हैं दिस वन कमिंग फ्रॉम शनिवार आपको और सभी सुनने वालों को शुभ शनिवार मेस्मराइजिंग प्रोग्राम थैंक यू बेटी एंजॉइंग द प्रोग्राम वाइल कुकिंग और ये है बेटी पिछड़ा फैसे अगला गीत आपके किड्स आपके बच्चे हर्ष प्रीत एंड परमिता के लिए एंड बेस्ट ऑफ लक आपको भी सुनने के लिए और जुड़ने के लिए दिस वन डेडिकेटेड नेक्स्ट सॉन्ग फॉर नीटू ऑफ पालमा कथाबोन विशिंग हर लोड्स ऑफ हैप्पीनेस बहुत सारी खुशियाँ आशीर्वाद ब्लेसिंग्स लक एंड बेस्ट विशेज राजीव की ओर से फ्रॉम सेंट पियर नमस्ते आपको भी टू बेबी अरशद सेंडिंग बिग हग्स टू यू एंड बेस्ट थिंग दैट एवर हैपन टू मी यू आर ऑलवेज इन माई हार्ट ऐसा कह रही है रेबिका टू बेबी अरशद एक समय के लिए ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारे लिए तो नहीं है राइट बेबी अरशद के लिए फ्रॉम बेबी रेबिका और 5499-1294-549-9124 पे मैसेज भेजते रहिए सो आज रात 8 बजे अभी रात के 7:45 बज चुके हैं ओनली 15 मिनट्स लेफ्ट बिफोर द मैच स्टार्ट्स बिटवीन इंग्लैंड एंड क्रोएशिया सो इंग्लैंड के लिए वी हैव सम ग्रेट प्लेयर्स मैदान पे पिकफोर्ड वापस आ गया है गोल कीपिंग करने के लिए क्वांशा को जेरल क्वांशा को डिफेंस में रखा गया है राइट साइड कौनसा मार्क गेही एंड हॉल डिफेंस संभाल रहे हैं एंडरसन एंड स्कॉट दो जवान खिलाड़ी मिडफील्ड में है सो वी हैव बुकायो साका जूड बेलिंगम एंथोनी गार्डन एंड हैरी केन अटैक में होंगे इट्स अ गुड टीम पर देखना है कि आगे आगे होता है क्या लेकिन क्रोएशिया में भी वी हैव ए सर्टेन लुका मोड्रिच जो 41 ईयर ओल्ड का हो गया है एंड ही इज प्लेइंग टुडे टुनाइट लुका मोड्रिच कोवाचिच इवानोविच बाचुरीना मूसा पेरिसिच ग्वार्डियोल वुस्कोविच सानिनिच और लिवाकोविच ये सब के सब आज मैदान पे उतर रहे हैं रात 8 बजे बोलेगा नहीं इट्स गोइंग टू बी क्रोएशिया वर्सेस इंग्लैंड सुनते रहिए
2: RM2 Radio Musti

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: रात के 8 बजने वाले हैं इसलिए जल्दी जल्दी आपके मैसेज ऑन 5499-1294-549-9924 पे देन वी हैव अनदर आवर 8 to 9. यह प्रेमा का मैसेज फ्रॉम पुते दो कह रहे हैं कि लगता है ये गाना आपको बहुत पसंद है जब तक जहां मैं या फ्रॉम द फिल्म जीरो और आपको अच्छा लगता है क्योंकि लास्ट सैटरडे को आपने चलाया था एग्जैक्टली प्रेमा थैंक यू ये जताने के लिए और सुनने के लिए क्योंकि पहली बार गत सप्ताह जो है ये गाना हमारे इस रेडियो मस्ती पर आया था चुन चुन कर हमने ये लाया था सो एक सेकेंड टाइम तो बनता है ना सो थैंक यू जुड़ने के लिए और चुनने के लिए दिस वन फ्रॉम कनाडा हाई जानी फ्रॉम कनाडा लिसनिंग टू द प्रोग्राम एंड विशिंग ऑल लिसनर्स द वेरी बेस्ट और सुनने के लिए बहुत धन्यवाद जानी आपको भी और कह रहे कि आज द लीव्स चेंज कॉलर जैसे पत्ते रंग बदलते हैं एंड जेंटली फॉल गिरते हैं एकदम प्यार से ऑटम ऑटम मतलब हमारे यहाँ तो नहीं है लेकिन वहाँ पर है पतझड़ का मौसम जिसे कहते हैं जब पत्ते झड़ते हैं सो ऑटम रिमाइंड्स अस दैट चेंज कैन बी ब्यूटीफुल टू हाँ चेंज जो है स्वीकारना चाहिए यू आर राइट द क्रिस्प एयर गोल्डन ट्रीज एंड क्वाइट इवनिंग्स ब्रिंग्स ए ब्रिंग ए स्पेशल काइंड ऑफ वार्म्थ टू द हार्ट प्यार लाता है ना हाँ हियर इज द ब्यूटी ऑफ लेटिंग गो एम्ब्रेसिंग न्यू बिगिनिंग्स एंड एंजॉयिंग द सिंपल मोमेंट्स ऑफ द सीजन कह रही है जानी फ्रॉम कनाडा टू एवरीवन लिसनिंग मे योर लाइफ बी फिल्ड विद वार्म्थ पीस एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज थैंक यू वहाँ से जुड़ने के लिए और कनाडा को हाई हेलो उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम दुनिया भर के जिस किसी भी कोने से आप हमें सुन रहे हैं आपका स्वागत है हमारे RM2 रिज मस्ती झंकार बीच में लेकिन उम्मीद छोड़नी नहीं चाहिए

0: प्यार करते रहिए रात के 8 बज चुके हैं
1: झंकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती
1: झंकार बीट्स

0: कुछ रिश्ते भी पतझड़ जैसे होते हैं, खामोशी से आते हैं, बहुत कुछ अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन जाते जाते दिल में खूबसूरत यादें छोड़ जाते हैं।
1: And gentlemen, you are listening to Jhumka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
0: और यादें याद आती हैं, बातें भूल जाती हैं, और आपको भुलाने चाहिए हर शनिवार की रात 7 to 9 on Radio Musti RM2, Jhumkar Beats. स्पोर्ट्स और मस्ती भरा प्रोग्राम। और अभी के लिए बता दें कि इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया मैच शुरू हो चुका है, खेल का ये तीसरा मिनट। एंड एल्सवेयर वी हैव बेलारूस वर्सेस सैन मारिनो, एस्टोनिया ने एक गोल स्कोर भी कर लिया है अगेंस्ट लक्जमबर्ग, आइसलैंड 0 बुल्गेरिया 0, और ब्राजील ने फाइनली इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में इंडिया को 4-0 से परास्त किया। सो इट्स इंडिया 0 ब्राजील 4, एस्टेवाओ पेड्रो एंड सैमुएल लिनो का एक डबल फॉर ब्राजील, ग्रेट गोइंग ब्राजीलियन ला सेलिसाओ। और इंडिया को अपना मैच फिर से सुधारना है और अच्छा फुटबॉल खेलना है, और होपफुली सम डे इंडियन टीम वर्ल्ड कप में हो सकती है। और इंडिया की बात हुई तो इट्स ए मिक्स रिव्यू, फुटबॉल में उनकी हार हुई 4-0 से, लेकिन क्रिकेट में दे आर डूइंग रियली वेल। आज दिन के दौरान एशियन गेम्स के फाइनल में उन्होंने इंडिया बीट पाकिस्तान बाय 19 रन्स, भारतीय टीम की जीत हुई 19 रनों से टू विन गोल्ड बैक टू बैक एट द एशियन गेम्स। ये T20 मुकाबला था जिसमें भारतीय टीम ने 6 विकेट के नुकसान पर 211 रन बनाए 211, और जवाब के तौर पर पाकिस्तान की पूरी टीम 20 ओवर में 192 पर ही ढेर हो गई विद 6

विकेट्स डाउन। और अभी वो तो ये तो टी ट्वेंटी मुकाबले हैं जिसमें टी ट्वेंटी के खिलाड़ी खेल रहे थे, और अभी के लिए एक वनडे मुकाबला खेला जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट इंडीज। ये भी एक ज़बरदस्त मैच चल रहा है। सो भारतीय टीम ने अपनी पारी में 50 ओवर में 351 रन बना लिए विद 7 विकेट्स डाउन, और जवाब के तौर पर इस समय वेस्ट इंडीज अच्छा खेल रही है विद 3 विकेट्स डाउन 225 रनों पर खेल रही है और केवल 33 ओवरों में इतने सारे रन बन चुके हैं। सो एवरीथिंग इज पॉसिबल इस मैच में, वे 351 तक आ सकते हैं बिकॉज दे हैव प्लेंटी ऑफ विकेट्स और प्लेंटी ऑफ रन्स भी। अभी वेस्ट इंडीज नीड 127 रन्स 127 इन 100 balls to win जो उनकी पहुंच के अंदर है। सो दिस वन गोइंग फॉर वंदना, दयाना, क्लोडिया, एनबी, हबीबा, रिधिमा, विशाल, मेडी एंड ज्ञानी। हाई कलीग्स,

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Changar Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: Changar Beats 729 every Saturday or 2 ghante. दो घंटों का सफर, ढेर सारी धुने, म्यूजिक, स्पोर्ट्स की गर्मा गर्म बातें और आपकी कंपनी, इससे खूबसूरत सातवीं की शाम और क्या हो सकती है। थैंक यू जुड़ने और चुनने के लिए। यू कैन स्टिल टेक्स्ट मी ऑन 5499-1294-5499-1294 पे। दो मैसेज हैं इनको, ये है अनीता का मैसेज फ्रॉम फ्लैक, एंजॉइंग नाइस सॉन्ग्स। थैंक यू अनीता चुनने के लिए। और मीला जी का ये मैसेज है फ्रॉम फ्लैक, एंड हैविंग डिनर डेट विद हस्बैंड। ओह दैट्स ग्रेट, ये सबसे बड़ी बात है, सबसे खुशी की बात है, पति और पत्नी एक साथ मिलकर आज डिनर डेट पर जा रही है। नेक्स्ट सॉन्ग टू हस्बैंड दुर्वेश फ्रॉम वाइफ आशना, आप दोनों के लिए डेफिनेटली ये अगला गीत हम चलाएंगे, एंड यू एंजॉइंग दिस सॉन्ग्स, थैंक यू इसके लिए। सो कहते हैं कि ये जो पतझड़ का मौसम होता है ना, एक मोहब्बत भी मौसम जैसी ही है, और कभी बारिश बनकर आती है तो कभी धूप बनकर मुस्कुराती है, और कभी पतझड़ बनकर, जब पत्ते झड़ते हैं तो वो बनकर हमें किसी की कमी का एहसास करा जाती है। लेकिन गिरते हुए पत्तों को देखकर उदास मत होना चाहिए, हर गिरता पत्ता एक नई शुरुआत का वादा करता है, और शायद प्यार भी यही है, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। इंग्लैंड का अंत नहीं हुआ है, इंग्लैंड थर्ड पोजीशन पर आया था वर्ल्ड कप में, एंड फिलहाल उसकी जीत हो रही है 2-0 से। सो इट्स क्रोएशिया 0, गर्मा गर्म खबरें, इंग्लैंड 2, अनदर गोल बाय जूड बेलिंगम, हैरी केन 8वें मिनट पर, जूड बेलिंगम 21वें मिनट पर। सो इट्स क्रोएशिया 0, इंग्लैंड 2 ऑन रेडियो मस्ती और M2 झंकृत करने के लिए, ये रहा आपके लिए।
1: RM2, Radio Musti.
0: Changar Beats.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunka Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: शनिवार रात्रि है इसलिए मूड तो थोड़ा बनना है और बनाना भी है. सो इट्स एग्जैक्टली 8:30 PM ऑन रेडियो मस्ती और M2 झंकार बीट्स. हमारे साथ में हूँ विकास और एवरी सैटरडे 7 to 9 झंकार बीट्स स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक. स्पोर्ट्स है, खबरें हैं, धुन है, म्यूजिक है और आप हैं, हम हैं और हम हैं तो क्या गम है, आप हैं तो हम हैं और हम हैं तो क्या गम है. सो UEFA नेशंस लीग में इंग्लैंड लीडिंग बाय 2-0 अगेंस्ट क्रोएशिया. गोल कर्टिसी ऑफ हैरी केन 8वें मिनट पर, जूड बेलिंगहम 21वें मिनट पर, लीडिंग बाय 2-0. इंग्लैंड डूइंग ग्रेट. रात 10:45 पौने 11 बजे आज ही इसी ग्रुप में स्पेन का मुकाबला चेक रिपब्लिक से है. याद रहे कि इंग्लैंड की हार हुई थी अगेंस्ट स्पेन पहले मैच में, देन चेक रिपब्लिक को इसने हराया, अब क्रोएशिया को हरा रहा है. सो दे आर डूइंग वेल, लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है, सफर लंबा है पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है. बाकी जो मैच हैं आज रात खेले जाएंगे, नॉर्थ मैसेडोनिया वर्सेस स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड का मुकाबला आज रात स्लोवेनिया से, एंड ग्रुप एक में फिनलैंड ने आज हरा दिया अल्बेनिया को 2-1 से, बेलारूस 0 सान मैरिनो 0. खेल का ये 31वां मिनट चल रहा है. एंड ग्रुप 4 में एस्टोनिया लीडिंग बाय 1-0 अगेंस्ट लक्जमबर्ग. इसी में आइसलैंड इस समय बुल्गेरिया के साथ मैच ड्रॉ कर रहा है 0-0. और इंटरनेशनल फ्रेंडलीज में आज पराग्वे ने कोलंबिया को 1-0 से हराया. तो ब्राजील की जीत हुई आज इंडिया के इसकी सरजमी पे, इंडिया 0-4. फुटबॉल यूनियन ऑफ रशिया की जीत हो रही इस समय हाफ टाइम 1-0 अगेंस्ट नमीबिया. और कल सुबह बता दें कि कनाडा का मुकाबला पेरू से है, आइवरी कोस्ट वर्सेस कैमरून एंड ट्यूनिशिया वर्सेस माली वाला मैच कैंसिल कर दिया गया. चूंकि UEFA नेशंस लीग की बात हो रही तो बता दें कि कल भी जबरदस्त मैच खेले गए, खासतौर पर फ्रांस और इटली की ओर से. फ्रांस के स्टाद डिफ्रांस में ये मैच खेला गया. जिदान का ये पहला मैच था स्टाद डिफ्रांस में अपने ही देश में विद हिज टीम, क्योंकि वो नया कोच है. और मैच ड्रॉ गया 1-1 फ्रांस की ओर से माइकल ओलिजे, एंड इधर से अलेसान्ड्रो बास्टोनी का इक्वलाइजर फॉर इटली. इट वाज अ ग्रेट मैच. और इसी ग्रुप में कल बेल्जियम ने टर्की को 3-0 से हराया, एक डबल बाय केविन डेब्रून, एंड रोमेलो लुकाकू आल्सो ऑन टारगेट.

0: Guy Beats.
1: RM2 Radio Musty.
0: Chunk Guy Beats.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junker Beats.
2: RM2, Radio Musty.
3: राइट, क्रिकेट की बात करें आज क्या बोलते हैं उसको, एशियन गेम्स, इंडियन टीम T20 में जीत गई. दे बीट पाकिस्तान बाय 19 रन्स और बैक टू बैक ये एशियन गेम्स भारत जीत गया है. लेकिन इस समय जो वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, 50 ओवर्स का ये मैच है और उसमें भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध पूरे 50 ओवर में 351 रन बनाए विद 7 विकेट्स डाउन. और इस समय वेस्ट इंडीज काफ़ी उसका खेल तगड़ा चल रहा है, 271 for 3, 3 विकेट उनके गिर चुके हैं. वेस्ट इंडीज में अभी होप दे रहा है. एंड कौन सा होप है? शाई होप, ही इज द कैप्टन एंड विकेट कीपर ऑफ वेस्ट इंडीज टीम. 111 रन बना चुका है 118 गेंदों में विद 10 फोर्स और एक छक्का भी उसने जड़ा है. सो शाई होप लीडिंग वेस्ट इंडीज 271 for 3, 39.5 ओवर्स, यानी अभी भी 10.1 ओवर्स बाकी हैं विद 7 विकेट्स रिमेनिंग. एंड वेस्ट इंडीज नीड 81 रन्स टू विन फ्रॉम 10 ओवर्स. संभव है पर तगड़ा भी है. अब इंडियन टीम को कस कर खेलना चाहिए, उनकी जो टीम जो है ना घेराव उनको अच्छा करना चाहिए ताकि और रन बना ना पाए. सो दिस इज़ फॉर क्रिकेट. बात करेंगे फॉर्मूला वन मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की भी, जिसमें आज लेटेस्ट बता दें कि कल संडे को बहरीन ग्रैंड प्री रेस लगने वाली है और आज के पोल पोजीशन के लिए क्वालिफाइंग रेस के लिए मैक्स वेरस्टैपेन की जीत हुई. इस सीज़न उसकी ये पहली जीत है पोल पोजीशन के लिए और कल वो रेस शुरू करेगा. लेकिन काफ़ी दूर है वो मैक्स वेरस्टैपेन अभी जनरल स्टैंडिंग में, क्योंकि इसमें फर्स्ट पोजीशन पे है मर्सिडीज का किमी एंटोनेली विद 302, 302 अंक लिए. जॉर्ज रसेल वो भी मर्सिडीज का ही है, 236, यानी कि इन दोनों के बीच अभी 66 अंकों का अंतर है. जबकि फेरारी का लेविस हैमिल्टन अभी तीसरे स्थान पर है विद 199 पॉइंट्स.
0: RM2 रेडियो मस्ती.

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: रेडियो मस्ती ऑल द वे।
3: जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: रेडियो मस्ती, द लेटेस्ट न्यूज एंड द ग्रेटेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Junga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: इंग्लैंड का स्क्वाड इंग्लैंड के खिलाड़ी पता

0: समाप्त हुआ ही नहीं है. सो गॉर्डन का एक गोल रहा, एक थर्ड गोल एंड ए फोर्थ गोल बाय, चौथा गोल रहा बुकायो साका की ओर से. 39 पर गॉर्डन, 45 पर बुकायो साका, इससे पहले जूड बेलिंगम एंड देन वी हैड हैरी केन का एक पहला गोल. सो इट्स टॉप हैपनिंग फॉर इंग्लैंड. टोमास टुकेल का ये मैच जो है, probably it's a statement of intent, naya irada, naya intent. Croatia 0, England 4. Abhi first half bhi pura nahi hua hai, so picture abhi baki hai. Elsewhere, baki jagahon pe, Belarus still 0, San Marino 0, half time. Estonia leading by 1-0 against Luxembourg, Iceland bhi 1, Bulgaria 0. Ye match aaj khele ja rahe hain. Bata de ki kal bhi kuch mahatvapurna mukable rakhe gaye hain. Kal Greece ka mukabla Germany se, Jurgen Klopp ka जर्मन टीम कुछ खास नहीं कर रही है. एक मैच ड्रॉ करने के बाद एक मैच वो हार भी गया है. सो दे हैव टू विन नाउ. इसी में नेदरलैंड्स का मुकाबला कल सर्बिया से होगा. अमंग द अदर मैचेस, पोर्चुगल का मुकाबला कल नॉर्वे से है और पोर्चुगल में से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टीम को छोड़कर चला गया. अभी खबर ये भी है कि उसका कोच पीछे पीछे गया प्लेन तक भी, लेकिन वो वापस आया नहीं. देखते हैं आगे आगे होता है क्या. कल ही वेल्स का मुकाबला डेनमार्क से होगा. एंड देन we'll be talking about tennis. Tennis में भी आजकल China Open खेला जा रहा है. So बता दें आपको, कोको गाव की जीत हुई आज 7-6, 6-4 और 6-2 से against Camila Osorio. क्योंकि वक्त इशारा कर रहे हैं कि आपको हम ये खबर देकर ही जाएं. बेलिंदा बेंचिच, आंद्रे रुब्लेव, दानिल मेडवेदेव की जीत हुई against Jan Lena Ostroff 6-4 और 6-3 से. और ब्रिटेन की सुनाई करताल ने आज चाइना की Xingyu Wang को 6-3 और 6-2 से परास्त किया.
1: झलकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती.
1: झलकार बीट्स
0: स्पेशल रिक्वेस्ट है कनाडा से फॉर जानी एंड फ्रेंड्स. ट्राइंग द फॉल, जो मौसम है उसके लिए एक गाना है, स्टिल ट्राइंग. थैंक यू जुड़ने के लिए और चुनने के लिए.

लॉस ऑफ द रोड, एक तरफ सुरों की बारिश, दूसरी ओर स्पोर्ट्स का तूफान और इंग्लैंड का प्रहार, दे ऑल लीडिंग बाय 4-0। हाँ, गाना चलता रहेगा, दो घंटे का सफर समाप्त, 7 to 9 आज की रात याद रखिए, क्योंकि झंकार बीट्स में हम सिर्फ म्यूजिक नहीं बजाते, हम माहौल बनाते हैं। तो थैंक यू जुड़ने और चुनने के लिए, फिर मिलेंगे अगले शनिवार की रात 7 to 9, लेकिन कल सुबह 7:30 AM शार्प विद मोर न्यूज व्यूज एंड रिव्यूज। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सबाल खैर, मिलते रहिए और सुनते रहिए।

guys, it's Saturday, so no stress, no worries, बस म्यूजिक मस्ती और लेट नाइट ग्रूव्स। वीकेंड का असली मजा तब है ना जब म्यूजिक हो फुल ऑन। तो चलिए इस खूबसूरत सी रात को बॉलीवुड के इनर्जेटिक बीट्स के साथ और भी स्पेशल बनाते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू डेडिकेट द नेक्स्ट सॉन्ग स्पेशली टू ऑल ऑफ डियर एंड

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: वैसे सैटरडे वाला मूड जब सेट होता है ना दोस्तों, तो मूड एकदम पार्टी वाला हो जाता है और गाने भी ऐसे धमाकेदार होना चाहिए, तभी तो चुन चुन कर लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो रेडी हो जाइए बॉलीवुड के फेवरेट डांस नंबर्स के साथ ग्रूव करने के लिए, स्पेशली ऑन आर एन टू रेडियो मस्ती, योर ओन अपना रेडियो स्टेशन।

वैसे वीकेंड की एनर्जी को लो मत होने दीजिए। लेट नाइट ग्रूव्स पर म्यूजिक है एनर्जेटिक, मूड है हैप्पी हैप्पी वाला और वाइब्स है एकदम बॉलीवुड वाला। आज की रात सिर्फ चिल नहीं, थोड़ा डांस भी होना चाहिए। सो वॉल्यूम अप कीजिए और बॉलीवुड की बीट्स को फील कीजिए और बस आप अपनी लाइफ को दिल से एंजॉय कीजिए हमारे साथ इन योर लेट नाइट ग्रूव्स ऑन रेडियो मस्ती।

0: baby.
1: Late Night Grooves.
2: RM2 Radio Musti.
3: लेट नाइट ग्रुप्स में ना दोस्तों हमेशा प्लेलिस्ट जो है ना एकदम धमाकेदार होते हैं. वैसे जो भी कर रहे हो इस वक्त म्यूजिक को साथ रखिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि वीकेंड की सारी थकान को गुड बाय बोलने का वक्त आ गया है. अरे सैटरडे नाइट ही मिलता है सिर्फ पार्टी करने के लिए, और हम तो कहेंगे टेंशन वेंशन को मारो गोली और बस अगले जो पैपी सॉन्ग लेकर आए हैं ना आपके लिए ग्रूव कर लीजिए इसके ऊपर.

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: The good vibes are here and late night grooves पर vibe होगी full on Bollywood. जी हाँ दोस्तों, तो energetic हो, super entertaining होनी चाहिए, जैसे बिल्कुल एकदम हम लेकर आए हैं आपके लिए. Weekend का second night energy double होनी चाहिए. तो Bollywood के beats के साथ let's make tonight memorable.

0: हमें तो पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया था।
1: मुझे भी तो तुम दोनों से पहली नजर में प्यार हो गया था। I said, what gorgeous sexy men. साथ में गुंडे मगर ख्वाब बड़े बड़े।
2: कयामत कयामत कयामत।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: आज रात ना बोरिंग बिल्कुल नहीं चलेगा दोस्त. डोंट बी इन अ बोरिंग मूड. लेट नाइट ग्रूव्स पर बजेंगे पैपी बॉलीवुड सॉन्ग्स जो आपको ग्रूव करने पर मजबूर कर देंगे. सैटरडे नाइट बॉलीवुड बीट्स परफेक्ट वाइब. तो वॉल्यूम अप पर रखिए ना, स्माइल बनाइए रखिए और लेट नाइट ग्रूव्स के साथ एंजॉय करते रहिए. सो द नेक्स्ट वन द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक स्पेशली फॉर यू ऑन रेडियो मस्ती.

गाने जब ऐसे बजते हैं ना दोस्त ऑन रेडियो मस्ती, तो मेरी बात मानो। जी हाँ दोस्तों, आपका ये जो मूड है ना एकदम झकास होना चाहिए। तो बॉलीवुड के इन खूबसूरत गानों के साथ आप डांस करते रहना, वीकेंड का मूड एकदम सेट है हमारे साथ। तो बस ऐसे ही एंजॉय करते रहना। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी इन लाइफ। जिंदगी में और हमें क्या चाहिए? गुड म्यूजिक, गुड कंपनी एंड सम लवली टाइम अपनों के साथ।

0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: थी दीवानी सी एक लड़के पे वो मरती थी नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी कुछ कहना था शायद उसको जाने किससे डरती थी जब भी मिलती थी मुझसे पूछा करती थी प्यार कैसे होता है ये प्यार कैसे होता है और मैं सिर्फ यही कह पाता था

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Masti.
2: वैसे ना रेडियो मस्ती मैं तो इतना आपको सजेस्ट करूंगी कि आज की रात मस्ती के नाम, बिल्कुल आज की रात मस्ती के नाम बॉलीवुड के सुपरहिट गानों के साथ सैटरडे नाइट को बनाते हैं और भी स्पेशल। वैसे आई डोंट नो आप लोग कहां से हमारा साथ दे रहे हो सकता है यू आर द बीच राइट नाउ हैविंग सम फन विद योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। अगर ऐसी बात है तो ये अगला गाना किनिशा की तरफ से आपके नाम इन योर लेट नाइट ग्रूव्स।

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: ऐसे देखा जाए तो सैटरडे नाइट ना थोड़ा फिल्मी होना चाहिए, थोड़ा क्रेजी भी और बहुत सारा म्यूजिकल भी होना चाहिए. सो देरी किस बात की, वी आर हियर ना टू जस्ट मेक यू एंजॉय द गुड म्यूजिक एंड योर लाइफ. सो स्टे ट्यून्ड ऑन योर नंबर वन रेडियो स्टेशन. रात लंबी हो सकती है, वीकेंड ऑन है और बॉलीवुड बीट्स रेडी है टू डांस फ्लोर. चाहे रूम हो या कार हो, ग्रूव तो बनता है मेरे दोस्त. ये अगला गाना किने की तरफ से आके

0: है।
1: चलिए जी मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, लेट नाइट ग्रूव्स पर आ गया है बॉलीवुड का नेक्स्ट धमाकेदार ट्रैक। कुछ गाने सिर्फ हम सुनाने के लिए सुनाते नहीं है, हम चाहते हैं कि आप उसको फील करें, आप डांस करें, आप एंजॉय करें हमारे साथ। सीधा मूड बना देते हैं ना ऐसे गाने, और आज रात ऐसा ही कुछ हम लेकर आए हैं गानों का सिलसिला आपके लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स।
2: लेट नाइट ग्रूव्स
3: RM2 रेडियो मस्ती।

थैंक यू जी दिल की गहराई से हमारा साथ देने के लिए ऑन रेडियो मस्जिद में गिनी शॉन द माइक जो साथ दे रहे हैं विद दिस ब्यूटीफुल धमाकेदार गानों का ये सिलसिला जो चल रहा है आपके और हमारे बीच में। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए टू दोस जो मॉरिशस के बाहर हमें सुन रहे हैं, हम तो बस इतना कहना चाहेंगे कीप ऑन एंजॉइंग द गुड म्यूजिक एंड कीप ऑन स्टेइंग कनेक्टेड टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन। हियर वी गो, दिस वन गोज आउट टू यू।

0: Late Night Grooves.
1: RM2 Radio Musti.
2: For those who are driving right now, हम तो बस इतना कहना चाहेंगे, drive carefully. जी हाँ दोस्तों, आराम से गाड़ी चलाना, धीरे धीरे, हौले हौले, वैसे आप पहुंच ही जाओगे. Party mood में होना तो कोई बात नहीं, हम लेकर आए हैं ऐसा खूबसूरत playlist just for you on this Saturday night that you are going to enjoy. You are going to have a blast. So just enjoy each and every song and to all drivers जो साथ दे रहे हैं. This one straight away from my heart to yours, my dear.

वैसे गानों में स्वाग अगर ना हो तो बात नहीं बनती है. आई नो दैट. आज रात की प्लेलिस्ट में है थोड़ी मस्ती और ढेर सारा स्वैग और बहुत सारा बॉलीवुड. टू कनेक्टेड रहे लेट नाइट ग्रूव्स के साथ ऑन रेडियो मस्ती एंड इट्स मेगी निशा गिविंग यू वन ऑफ द बेस्ट कंपनी विद सच ब्यूटीफुल एंड धमाकेदार गाने जो तड़का मार के सुना रही हूँ आज. पार्टी करने के मूड में हो तो कीजिए ना हमारे साथ रेडियो मस्ती फैमिली के साथ.

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: वैसे मेरे दोस्त, क्या आप रेडी हो थोड़ा सा नाचने के लिए, गाने के लिए और चिल करने के लिए विद मी गिनिशा? सो लेट नाइट ग्रूव्स इज राइट हियर विद योर बॉलीवुड डोज. सैटरडे नाइट पर दिल भी कहता है ना, आज तो फुल एंजॉय करनी है, तो कीजिए ना. तो चलिए म्यूजिक के साथ शुरू करते हैं आपका ये नेक्स्ट डांस मूव.

चलिए जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गणेशा टू से गुडबाय टू यू. आपने हमारा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. कीप ऑन एंजॉयिंग द गुड म्यूजिक, द बेस्ट मिक्स ऑफ म्यूजिक ऑन रेडियो मस्ती एंड एंजॉय योर सैटरडे नाइट. टेक केयर, बाय बाय.

0: शेखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
1: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
0: उसे बताया क्यों नहीं?
1: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

0: कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे।
1: लड़की बड़ी अनजानी है।
2: Radio Musti, all the way.
3: जब तक टाइगर मरा नहीं, तब तक टाइगर हारा नहीं।
2: Radio Musti, the latest news and the greatest mix of music.

0: रेडियो मस्ती, फील द मस्ती।
1: रेडियो मस्ती।